मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 47 सेकंड्स हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड।
1: विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ के स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आराधना में। आइए करते हैं आगाज नितिन मुकेश के स्वर में इस भक्ति रचना से, क्योंकि प्रातःकालीन ईश वंदन मन को असीम उत्साह, उमंग और स्फूर्ति से भर देता है। तो आइए हम भी करते हैं ईश वंदन इस भक्ति रचना के माध्यम से।

शक्ति शब्दों में व्यक्त होती है, कभी प्रार्थना में और कभी संगीत के शुरू में ढलकर सीधे हृदय तक पहुंचती है। और कृष्ण का नाम लेते तो मन में प्रेम, करुणा और माधुर्य का भाव जाग उठता है। मुरली की वह धुन तान आज भी भक्तों की अपनी ओर खींचते हैं। तो आइए सुनते हैं अगला भजन कृष्ण की मुरली से।

जिस तरह प्यासा पपीहा स्वाति की नक्षत्र की एक बूंद की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह मन भी कभी कभी मधुर एहसास पाने के लिए आस लगाए रहता है और इस भक्ति पाने के लिए आतुर रहता है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: श्रोताओं, विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम भक्ति संगीत का आराधना।

ईश्वर निराकार है, उनके विविध रूपों को हम पूजते हैं, भजते हैं। चाहे हम उन्हें किसी भी रूप में पूजें, भजें, वो तो एक हैं।

आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची लगन, भक्ति और सच्ची श्रद्धा की, तभी तो ईश्वर की कृपा संभव है।

0: कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अथर्ववेद के भूमि सूक्त से पाठ।
1: ओम सत्य।

न कृणोतु सत्यवृद्धि न्याय व्यवहार क्षात्र तेज दक्षता तपस्या ज्ञान और यज्ञ ये आठ गुण पृथ्वी अर्थात मातृभूमि को धारण करते हैं। वह मातृभूमि पृथ्वी हमारे लिए भूत भविष्य वर्तमान अवस्था की पालन करने वाली है, वह हमारे लिए विस्तृत स्थान निर्मित करे। ओम।

राज्यानाम नाहा। जिस मातृभूमि के मानवों के अंदर उच्चता नीचता तथा समता के विषय में बहुत ही निर्वैरता है और जो नाना प्रकार के वीर्यों से युक्त औषधियों को धारण पोषण करती है, वह हमारी मातृभूमि हमारी कीर्ति की साधन होवे। ओम यस्याम समुद्रौ तवा सिंधुरापो यस्यामन्नं गृष्टयः संभवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्सानो भूमि पूर्वपेये ददातु। जिसमें समुद्र नदियां तथा अनेक जलाशय हैं, जहां कृषक कृषि से अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न करते हैं, जिस पर अनेक प्राणी आनंद पूर्वक जीवन धारण करते हैं, वह मातृभूमि हमको अनेक प्रकार के पेय एवं खाद्य पदार्थ प्रदान करे। ओम यस्याश्चतस्र प्रदेश प्रदिव्या यस्यामन्नं गृष्टयः संभवुः या विभर्ति बहुधा प्राण देजत्सानो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु। जिस मातृभूमि की चारों दिशाओं में विविध खेतियां हैं, जिसमें अन्न को उत्पन्न करती हैं और उसमें जो भूमि घूमने वाले प्राणी मात्र को बहुत प्रकार से पुष्ट करती हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें गायों से दूध और कृषि से अन्न प्रदान करे। ओम यस्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्याम देवा असुरा नव्यवर्तयन् गवाम अश्वानाम वयसश्च विष्टा भगं वरज पृथ्वी नो ददातु। जिस मातृभूमि में हमारे प्राचीन पूर्वजों ने विविध कर्तव्य किए थे और जिसमें देवों ने असुरों को पराजित किया था तथा जो गायों अश्वों तथा पक्षियों का विशेष निवास स्थान है, वह मातृभूमि हमारे ऐश्वर्य तथा तेज को प्रदान करे। ओम विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्य भक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरम विव्रति भूमिरग्निमिंद्र ऋषभद्रविणे नो ददातु। सबको पोषण करने वाली रत्नों की खान, सबका आधार जिसके अंदर सुवर्ण है, प्राणियों का निवास कराने वाली, सब मनुष्य रूप अग्नि का धारण पोषण करने वाली और इंद्र से जिस पर वृष्टि होती है, ऐसी मातृभूमि हमें धन धान्य के बीच में रखे। ओम याम रक्षन्त्यस्वपना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथ्वीम अप्रमादं सानो मधुप्रियं दुहामतो उक्षतु वर्चसा। सब कुछ देने वाली जिस विस्तृत मातृभूमि की रक्षा आलस्य प्रमाद रहित ज्ञानी शूरवीर देव सदृश जन करते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें मीठे मीठे पदार्थ प्रदान करे तथा तेज और बल को बढ़ावे। ओम यार्णवे धिसलिलमग्रासीद्यां मायाभिरन्वचरन् मनीष।

0: शब्द में। प्रारंभ में जो समुद्र में जल के ऊपर थी, बुद्धिमान जन बुद्धि और कुशलता आदि से जिसकी सेवा करते आए हैं, जिस पृथ्वी का हृदय आकाश में सत्य से आवृत होने से अमृत रूप है, वह हमारी मातृभूमि हमारे राष्ट्र में तेज और बल पराक्रम की अभिवृद्धि करे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इस कार्यक्रम में आपने सुना अथर्ववेद के भूमि सूक्त से पाठ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई आज सुने कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता, इस विषय पर प्रोफेसर अमिताभ को।
1: पंचों देखा, खेती किसानी में युग बदला, समय बदला, तो नई नई तकनीक भी आए। और खेती किसानी में भाई देखा, यंत्रीकरण, हम जब तकनीक आए तो यंत्रीकरण के भी नई नई चीज आए कि नया नया यंत्र से आज हम लोग खेती किसानी के ओका उपयोग करते ही, उसे लाभ लेते ही। लेकिन अब आज के दौर में ओकर और कैसे और बेहतर प्रयोग में ले आ सके और उसे ज़्यादा मुनाफा कमा सके, आज यही सब के जानकारी दे के बदे प्रोफेसर अमिताभ कर भैया कार्यक्रम में आए बाटन। आप आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में अवकाश प्राप्त शिक्षक रहा है। डॉक्टर साहब, आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे।
2: धन्यवाद।
1: बात ये विषय आवत है, जैसे खेती में यंत्रीकरण ओके आवश्यकता, सबसे पहले हमारे पंच भैया हरे की ये बताऊं कि यंत्रीकरण के अर्थ का।
2: सभी किसान भाइयों को नमस्ते, नमस्कार। कृषि कार्यों को सुचारू रूप से प्रतिपादित करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अब आवश्यक हो गया है, जिसमें कम समय लगता है और हमारी मेहनत की बचत भी होती है और मानव के साथ साथ पशुओं, अगर पशु हैं आपके पास, उसके श्रम की भी बचत होती है, उनको भी आराम मिलता है। तो कृषि यंत्रीकरण से खेती में उत्पादन, उत्पादकता और लाभ बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि इसकी बदौलत कृषि कार्यों में समय से हो जाते हैं, जैसे आपका कटाई है, मड़ाई है, सब समय से हो जाता है। तो ये कृषि यंत्र जैसे हैं, ट्रैक्टर है, पानी के पंप है, हार्वेस्टर, तमाम तरह के कृषि यंत्र हैं जिससे आप लाभ या कमा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे खेती में हम यंत्रीकरण उपयोग में लाए, ऐसे किस हद तक और कितना लाभ बांटे?
2: हाँ, देखिए ऐसा है ना कि आप एक, आपको उदाहरण पीछे हम चलते हैं, आज से 70 साल पहले कि हम लोगों की जनसंख्या थी 30 करोड़ थी, आज हम लोग 140 करोड़ हैं। तो तब भी हम लोग भोजन करा सकते थे और आज भी सबको भोजन करा रहे हैं, कोई भूखा नहीं है
1: जी।
2: तो ये तब संभव हुआ है जबकि हमारे कृषि यंत्रों में या तकनीक में बदलाव आया है और ज़्यादा हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास और जमीन भी कम हो गई है, ऐसा नहीं है कि जमीन बड़ी है। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है ना कि 4 गुना 4.5 गुना आपकी जो है वो आबादी हो गई और जोत भी कम हो गई, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उत्पादन ले रहे हैं और सब लोग भोजन भी कर रहे हैं। ये केवल कृषि यंत्रों की तकनीक से ही संभव हो पाया है। कृषि मशीनों जैसे विशेष तौर से बुआई है, दवा का छिड़काव है, और जो कितनी दवा डालेंगे सही मात्रा में और उसका सही उपयोग, फिर कटाई मड़ाई भंडारण सब आसान हो गया है। उसमें एक से एक अच्छी मशीनें आ गई हैं और इसमें बीज, दवा, रसायन, उर्वरक और सिंचाई, जल में हानि भी कम होती है, नुकसान भी कम होता है और प्रति एकड़ उपयोग भी उसकी बढ़ जाती है, यानी कि आप जैसे दवा डाल रहे हैं तो उसकी उपयोगिता सही सही हो जाती है। फसल के प्रति इकाई उत्पादन में लागत में भी कमी आती है, मशीन प्रचालन की लागत में भी कमी आती है और साथ में आय भी प्राप्त होती है। यंत्रीकरण से फसल और उसके अन्य

0: उत्पादों जैसे भूसा है उसकी क्वालिटी में सुधार हुआ है
1: जी,
0: तो उत्पाद और छत हमारी हानि भी कम होती है इसकी।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आजकल तकनीक और आगे आ चुकी बात, कहा जाता कि भाई अब ड्रोन से भी खेतों में जो अपन
0: हाँ
1: फसल
0: हाँ
1: पे दवा के छिड़काव हो सके,
0: जी जी जी
1: तो एक साथ साथ जितना भी यंत्र हैं,
0: हाँ
1: पंच भैयारे जो खासकर गांव में अपने जो युवा
0: हाँ
1: किसान
0: जी
1: हैं
0: जी जी
1: उनके लिए इस सब में कैसे ही रोजगार के भी साधन बन सकते हैं, एक बारे में जानकारी।
0: नहीं नहीं बहुत अच्छा कह रहे हैं। देखिए, यंत्रीकरण ने हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, हमारी घर की जो इकोनॉमी है, उसको 3 गुना तक, पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने 3 गुना तक बढ़ा लिया है, क्योंकि आधुनिक ट्रैक्टर चालित हल और यंत्र देशी हल की तुलना में और दूसरे यंत्र भी 2 से 3 गुना अधिक कारगर हैं, क्योंकि बड़े यंत्र हैं और उनकी क्षमता भी अच्छी है। शक्तिशाली मशीनरियों द्वारा कृषि उत्पादकता में 30% की अधिक वृद्धि, उससे ज़्यादा वृद्धि हुई है। कृषि यंत्रों के प्रयोग से हमारे किसान प्रति वर्ष कई फसल उगाने में सक्षम है। मान लिया, जैसे आप पहले एक फसल होते थे तो 2 भी फसल ले रहे हैं, साल में 3 फसल भी ले रहे हैं, बहुत लोग तो 4 भी ले रहे हैं। जैसी ऐसी उनकी उनको तकनीकी ज्ञान है, अनुभव है, उस हिसाब से
1: जी।
0: सब लोग नहीं। और खेती में युवाओं का आकर्षण बढ़ता जा रहा है और यह मात्र आजीविका के बजाय एक कमर्शियल गतिविधि के रूप में विकसित हो रही है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि तकनीक के बात होती बात है,
0: जी
1: तो ऐसी जैसे कि अब कहते थे ना, पहले के मशीन में और अब के मशीन में अंतर आ चुका
0: जी
1: है,
0: आ गया है।
1: तो ऐसी कौन कौन सी मशीन है जिनके लागत भी कम है और बेहतर तरीके से काम कर पाते।
0: देखिए, आपने एक दूसरी तरफ हमको विषय को मोड़ दिया है। देखिए, पहले तो खाली हाथ से ही लोग बैल से खेती करते थे, लेकिन आज के परिवेश में बैल भी लगभग नदारद हो गए हैं, बैल दिखाई नहीं पड़ते हैं, बहुत कम है। कहीं आपको दूर दराज में चले जाएं गांव में तो वहाँ मिलेंगे, लेकिन वैसे ट्रैक्टर ही चल रहा है। और ट्रैक्टर में भी पहले हमारे यहाँ बस 25 हॉर्स पावर और 35 हॉर्स पावर दुइया रहत रहें, लेकिन अब छोटे, बहुत छोटे ट्रैक्टर्स भी आ गए हैं
1: जी।
0: हाँ, 12 हॉर्स पावर के, 15 हॉर्स पावर के, 18 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स हैं और कई कंपनियाँ हैं जो बना रही हैं। बीच में यहाँ पर संस्थानों में इसकी चर्चा हुई थी, लोगों ने, हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने लाए भी थे, लेकिन उस समय उस पर उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। प्रचार प्रसार न होने की वजह से वो उस समय उतना आगे नहीं चल पाए, लेकिन पावर टिलर हैं, पावर टिलर से और छोटे ट्रैक्टर जो अब आ गए हैं, उनसे हम लोगों को किसानों की छोटे छोटे खेत में भी काम करने की जो मतलब प्रयास हैं वो आगे हो गए हैं। और हम लोग छोटे खेत में भी ट्रैक्टर को घुमा के उसमें आप जुताई कर लेते हैं, बुवाई कर लेते हैं,
1: जहाँ डॉक्टर साहब छोटी जोत,
0: हाँ छोटी जोत है, बड़ी जोत के लिए बड़े ट्रैक्टर्स हैं, 50 हॉर्स पावर के, 70 हॉर्स पावर के हैं। अब जो नए कृषि यंत्र हैं वो आपको बहुत लाभकारी हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम बात की जाए कृषि यंत्रीकरण के बात करें,
0: जी जी जी,
1: अगर भाई युवा हमें रोजगार के अवसर दे,
0: जी जी जी,
1: तो कैसे इससे जुड़ सकते हैं और रोजगार के रूप में अपने आप के स्थापित कर सकते हैं?
0: जी देखिए, अन्य साधनों की तुलना में आज के समय अन्य जो संसाधन है जिसमें कि हमको आय मिलती है, कृषि यंत्रीकरण में बहुत लाभ है और कहीं ज़्यादा इसमें आप युवा जुड़ सकते हैं और जुड़ भी रहे हैं। यहाँ तक कि विदेश से भी युवा आके यहाँ पर अपनी खेती और अपने पूरे फार्म को उन्होंने अच्छी तरह से उसको मैनेज करने का व्यवस्था किया हुआ है। तो इसमें प्रदेश सरकार द्वारा भी यंत्रीकरण के लिए वित्तीय सहायता और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ भी है, मध्य प्रदेश में, हर जगह, अपने उत्तर प्रदेश में ही है। कस्टम हायरिंग में आपने एक यंत्र खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया है, और ट्रैक्टर के साथ आपका रोटावेटर है या जीरो टिल मशीन है, इन सब चीज़ों को लगा के आप किराए पर चलाइए
1: जी।
0: और आप बहुत, आपको जानकारी नहीं है तो जो ड्राइवर है वो जानता है, वो अपना
1: जी,
0: आपको
1: जी,
0: जो है फायदा मिलेगा उसका
1: जी,
0: और प्रतिदिन आपको उसका मिलेगा। बताएं
1: तो मतलब काहे का मतलब कि अगर खुद नहीं जानते हैं तो ओके भाई भाई एक प्रशिक्षित व्यक्ति रख लें
0: जी,
1: और प्रशिक्षित व्यक्ति के माध्यम से
0: हाँ,
1: जहाँ भी छोटी जोत हो
0: हाँ, हाँ,
1: उसका किराए पे कह के 4 पैसा के अपन आमदनी कर सकते
0: हैं। और इसके बाद एक और बात और भी है, कृषि विज्ञान केंद्र जो है हमारे हर जिले में 1 या 2 कृषि, जैसे इलाहाबाद में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, 2 कृषि विज्ञान केंद्र, जौनपुर में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है, सुल्तानपुर में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है। तो ये जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके पास जाके आप उनको सही सलाह लेके आप काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हाँ, विकासखंड में भी

0: ब्लॉक वगैरह में भी आके आप काम कर सकते हैं, लेकिन कृषि वैज्ञानिक जो है वो आपको किसानों को सही सलाह देते हैं और उन पर जाना चाहिए।
1: कुल
0: वो
1: मिला के पहले जानकारी ले जरूरी बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: निश्चित बा डॉक्टर साहब इतनी बढ़िया जानकारी दी है कि अगर कृषि यंत्रीकरण तो खेती के साथ साथ रोजगार भी इसमें जुड़ा बात है।
0: जी
1: अगर पंच भैया रे एका समझी है और एका अपनई है तो निश्चित बाकी 4 पैसा के और आमदनी हुई।
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में आए, इतनी बढ़िया जानकारी दें, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे प्रोफेसर अमिताभ से दुर्गेश मिश्रा की बातचीत। बातचीत का विषय था कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल त्रिपाठी की वार्ता आज हम आपको सुनवा रहे हैं, नशे की लत का होम्योपैथिक समाधान।
1: आजकल विशेष रूप से युवाओं में ड्रग एडिक्शन या नशे की आदत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। नई पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। नशीले पदार्थ क्या होते हैं? नशीले पदार्थ जो वो कहलाए जाते हैं जो मस्तिष्क पर असर डालते हैं, जिसकी वजह से सोचने समझने और उसके व्यवहार को प्रभावित कर देती है। आजकल जो पदार्थ ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं उनमें अल्कोहल या शराब, निकोटिन या तंबाकू, खैनी, हुक्का और नए जमाने के मादक पदार्थ हैं जैसे मैरिजुआना, कोकीन, LSD एट्सेट्रा प्रयोग में की जाती है। ये पदार्थ थोड़ी देर के लिए उत्तेजना पैदा करते हैं। पहले माना जाता था कि लोगों की विल पावर जिनकी कमज़ोर होती है, जो अपने ऊपर जल्दी नियंत्रण खो देते हैं, वो नशे के आदि होते हैं। पर अब नई जो रिसर्च आ रही हैं उनमें ये माना जाता है कि जब नशा करते हैं तो ब्रेन के टेम्पोरल भाग में, मस्तिष्क के टेम्पोरल भाग में एक रिवार्ड सेंटर होता है जो ज़्यादा डोपामाइन या एंडोर्फिन और सेनाटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करता है। ये लगभग 10 गुना तक ज़्यादा रिलीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति बार बार इस एहसास को पाने के लिए और ज़्यादा नशा करता है। धीरे धीरे ये मात्रा उसकी नशे की बढ़ती जाती है। नशे का क्या कारण माना जाता है? यूजली माना जाता है कि तनाव होना, घर में अकेलेपन का एहसास होना, घर का वातावरण ठीक ना होना, दोस्तों के प्रभाव में आना और उन्हें ना कर पाना। अगर वो कहते हैं, दबाव डालते हैं, तो जनरली लोग ना नहीं कर पाते, इस वजह से नशा करते हैं। जिज्ञासा वर, अगर उनको जानकारी नहीं है उस नशे की, तो उसको टेस्ट करने के कि क्या होता है, इसके लिए वो नशा करते हैं। नशे का प्रभाव, नशे की वजह से काम नहीं कर पाना, ध्यान देने में दिक्कत होती है और फैमिली में इससे टेंशन हो जाता है, मनमुटाव होने लगता है। ज़्यादा नशे के सेवन से लीवर खराब हो जाते हैं, लीवर सिरोसिस तक हो जाती है बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से। टुबैको से मुंह में कैंसर और सब म्यूकस फाइब्रोसिस होने का खतरा रहता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस बाद में कैंसर में बदल जाती है। नशा न मिलने पर आदमी को बहुत गुस्सा आता है, नींद नहीं आती, कब्जियत होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। क्या इसके इलाज के लिए कि काउंसलिंग करनी चाहिए कि वो नशे के बारे में जाने, उसे उसका नुकसान फ़ायदा समझे, जिससे वो छोड़ दे। सोशल, सामाजिक और फैमिली परिवार का सपोर्ट देना चाहिए। होम्योपैथी में ये जानकारी केवल इसके बारे में बताने के लिए है। अगर दवा लेने के पहले किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। जो दवा यूज़ करी जाती है उसमें सबसे पहली दवा है सिफलिनम। जब परिवारों में कई पीढ़ियों में शराब का सेवन किया जाता है, लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के शराब पीने के आदि हों, तो उसमें सिफलिनम बहुत अच्छा काम करती है। विड्राल सिम्टम में अगर नशे की वजह से हाथ पैर कांप रहे हों तो जिंकम में दी जाती है, और एगेरिकस में भी हाथ पैर कांप

0: अपने के सिम्टम में वो भी दी जाती है। कैलेडियम में जब तम्बाकू की बहुत ज़रूरत लगती है, व्यक्ति तम्बाकू के बिना नहीं रह पाता, हार्ट में दिक्कत महसूस होती है, नींद नहीं आती है, पल्स तेज चलने लगती है, उस दशा में कैलेडियम दी जाती है। प्लंटेगो में डिप्रेशन होता है, पेशेंट को घबराहट होती है, अवसाद की स्थिति में होता है, साथ में दांत में दर्द होता है, नींद नहीं आने पर प्लंटेगो क्यों दी जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल की काफ़ी अच्छी दवा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड 3 पार्ट अल्कोहल में मिला के पीने से लंबे समय तक अगर पेशेंट को दिया जाए तो उसमें तम्बाकू की इच्छा कम हो जाती है। इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और दूसरी दवा है सल्फर। सल्फर में व्यक्ति को जो तकलीफ़ होती है वो अल्कोहल लेने पर बढ़ जाती है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी की वार्ता, नशे की लत का होम्योपैथिक समाधान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात 10 बजे सुनाएंगे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ समय होगा सुबह 7 बजे। फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा सुबह 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर पंडित डीके दातार का वायलिन वादन और दोपहर 12:15 पर पंडित अनोखे लाल का तबला वादन सुनिएगा। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज जो होगा हर रोज की तरह सुबह 8:45 पर प्रस्तुति होगी अभय कांत तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर कल्याणी मुखर्जी से और शाम 7:45 पर रमा सेन से गीत और भजन का आनंद लीजिएगा। फिल्म संगीत सुनिएगा सुबह 9 बजे, 10:30 पर, दोपहर 12:30 पर, शाम 7:30 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में सुबह 10:05 पर कलाकार होंगे हरविंद कुमार यादव, वत्सला मनोहर देवधर और दोपहर 2:30 पर कलाकार होंगे बीना रानी, राजा राम यादव, सूर्यप्रकाश पटेल और साथी। सुनिएगा इन सबसे लोकगीत। शाम 5 बजे बाल गोपाल कार्यक्रम में ग्रामीण बच्चे सुनेंगे समर प्रताप सिंह की कहानी

युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी होगा। समय होगा रोज की तरह शाम 5:15। शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, रात 8 बजे सुनिएगा अपने पत्रों के उत्तर कार्यक्रम चिट्ठी आई है में। वाचन स्वर होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। और रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशां।

0: अभी आपने सुना हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये 8.7% त्रैमासिक वृद्धिः भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शयति। सः उक्तवान् यत् भारतेन नीति सम्बद्ध गतिरोधात् नीति सम्बद्ध गतिशीलतां प्रति दीर्घा यात्रा कृता। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे सभां संबोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् विश्वं भारतं तीव्रगत्या वर्धमानां प्रमुखां अर्थव्यवस्थां भवितुं पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनोपलब्धीनां पूर्वकालीनैः संघर्षैः सह तुलनां कुर्वता उक्तं यत् आतंकवादः पराजितः अस्ति, अथ च सशस्त्रबलानि स्वभूमावेव शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मू कश्मीरतः पूर्वोत्तर भारत पर्यन्तं शान्तिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने ते हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: निरंतर क्रियमाणानाम आलोचनानाम प्रत्युत्तर रूपेण प्रधानमंत्री सुदृढार्थिक तथ्यांकान प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् स्मार्टफोन इत्येतस्य निर्यातः अधुना 5.2 लाख करोड़ रुपयाधिकः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यनेन महाविद्यालयेन विगतेषु वर्षेषु शैक्षणिकोत्कृष्टतायाः क्षेत्रे विशिष्टा प्रतिष्ठा प्राप्ता अस्ति। असौ SRCC महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रान् अति विशिष्टान् वर्णयन् तान् ओजीज इति विशिष्टाधुनिकोपाधिना सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली अपि SRCC महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रः आसीत्। असौ एतदपि कथितवान् यत् अस्य महाविद्यालयस्य पूर्व छात्राः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं विशिष्टं चिह्नं स्थापितवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् शतवर्षीयम् इदं महत्वपूर्णं चरणं महाविद्यालयस्य तथा राष्ट्रस्य शिक्षाक्षेत्रस्य च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अस्ति। असौ संस्थापकं श्रीरामं श्रद्धया स्मृत्वा तस्य स्थायिदृष्टिं प्रति सम्माननं प्रकटितवान्। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया ह्यः डॉ. दिनेश शर्मा इत्येषः अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण नियुक्तः। राष्ट्रपति भवनेन प्रसारिते एकस्मिन् विज्ञप्तौ एतत् संसूचितमासीत्। डॉ. शर्मा 17,2000 अक्टूबर मासात् अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण कार्यं कुर्वन्तं सेवानिवृत्तं एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशीम् अनुसरिष्यति। डॉ. शर्मा सम्प्रति उत्तर प्रदेशतः राज्यसभा सांसदः अस्ति। असौ पूर्वं राज्यस्य उपमुख्यमंत्री पदमपि अलंकृतवान्। भारत नेपालयोः उद्धार दलानि चिलिमे सुरंगे उद्धार कार्यं निरन्तरं कुर्वन्ति। नेपालस्थितः भारतस्य राजदूतः नवीन श्रीवास्तवः ह्यः उक्तवान् यत् उद्धारकार्यं सुकरं कर्तुं समीपस्थस्य स्याब्रुबेसी प्रदेशात् सुरंगस्य प्रवेशद्वारपर्यन्तं सम्पर्कमार्गस्य निर्माणकार्यमपि प्रचलति। भारतर्तो विज्ञानविभागेन संसूचित

0: शतम यत् श्वः यावत् उत्तर पूर्वीयेषु राज्येषु उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम बिहारोत्तर प्रदेशोत्तराखंड पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा पूर्व राजस्थान दिल्ली मध्य प्रदेशेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 7-0 पराजितम् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

माया नगरी के राजा शीलनिधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा।

अभी आपने आनंद लिया श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का। स्वर था कविता कृष्णमूर्ति का और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का।

आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन।

पहला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, गीत गाता चल फिल्म से, जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी के स्वर हैं। रविंद्र जैन ने गीत और संगीत दिया है।

और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है हमारे अगले भजन को सुनने का। तो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं केदारनाथ फिल्म से ये भजन। अमित त्रिवेदी के स्वर हैं और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है। अमित त्रिवेदी का संगीत है।

0: समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के 5 शिक्षकों सहित देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को किया आह्वान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा आज। राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगा परीक्षा का आयोजन। और प्रदेश की कई नदियां उफान पर, 24 जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों सहित देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले प्रदेश के शिक्षकों में गाजियाबाद की रेणु त्रिपाठी, कौशाम्बी की शालिनी कुशवाहा और बलिया के डॉ. इफ्तिकार खान शामिल रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस श्रेणी में BHU के प्रोफेसर आशुतोष मोहन और IIT कानपुर के प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
0: राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने पर बलिया के डॉक्टर इफ्तिकार खान ने कहा कि पुरस्कार मिलने के बाद छात्रों को और बेहतर मार्गदर्शन देने की ऊर्जा मिली है।
2: मैंने नवाचार शिक्षा पे ज्यादा बल दिया, न कि कॉपी कराने पे, और पुरस्कार मिलने से बहुत खुशी हो रही है। लेकिन साथ ही अभी कहेंगे, पुरस्कार मिलने के बाद और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। प्रधानमंत्री ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
3: जो टीचर टैलेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन को हमने जोड़ा, ये केवल TTT तक सीमित नहीं था। इसमें शिक्षक का सम्मान है, इसमें विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। और इसी कार्य को ध्यान में रखकर हम लोगों ने विद्यालयों में वे संसाधन उपलब्ध करवाए, जिन संसाधनों का अभाव दशकों से हमारा ये शिक्षक समुदाय महसूस करता था। आपने देखा होगा 2017 में हमारे शिक्षा मित्रों का मानदेय था मात्र 3,000 रुपये, आज मिलता है 18,000 रुपये। अनुदेशकों का मानदेय अब 17,000 रुपया हुआ, लेकिन साथ साथ 5,00,000 का कैशलेस की स्वास्थ्य की सुविधा भी उन्हें दी गई है।
0: राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त इन शिक्षकों को आजीवन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में प्रतिवर्ष 4,000 किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति की सीमा भी 2 वर्ष बढ़ जाएगी। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान उप राज्यपाल DK जोशी का स्थान लेंगे। उप राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के बाद आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि वह मानते हैं कि हर जिम्मेदारी बड़ी होती है और प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास उनके ऊपर जताया है वह उसे पूरा करेंगे।

0: मैं समझता हूँ कि एक हर जिम्मेदारी बड़ी होती है। अब जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है। हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम।
1: भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ अरुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 आज दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा लखनऊ समेत राज्य के 6 जिलों में होगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 25, मेरठ में 33, कानपुर में 28 और गोरखपुर में 44 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 19 विभिन्न विषयों के व्याख्याता पदों के लिए होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों को केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण वर्तमान में 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फरुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री आज मंदाकिनी नदी से आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए चित्रकूट जाएंगे। वहां वह बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद करने के बाद जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार इस आपदे में पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है। बारिश और बाढ़ के कारण जनहानि, पशुहानि और मकानों को हुई क्षति का आकलन कर मुआवजे का वितरण किया जा रहा है।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मैं स्वयं यहां पर आया हूं वाराणसी में इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए। यहां पर बचाव के लिए 48 नाव, एनडीआरएफ, पीएसी और जल पुलिस की टीम भी 24 घंटे उन क्षेत्रों में सक्रिय की गई है। बाढ़ आएगी तो बीमारी भी आएगी, उसके बचाव के लिए मेडिकल के शिविर लगाए जा रहे हैं। जिनके पास आयुष्मान के कार्ड नहीं है वहां उन्हें आयुष्मान के कार्ड भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और फ्री में दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
1: उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों में पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीन विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के भगवती देई पहाड़ी में कल स्टोन क्रशर में ब्लास्ट के दौरान एक कमरा ढह गया, जिसमें दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वाले सभी 4 मजदूर सोनभद्र जिले के रहने वाले थे। वहां के जिलाधिकारी ने दुर्घटना के कारण की जानकारी के लिए सुरक्षा मानकों की जांच के निर्देश दिए हैं। उधर कौशाम्बी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र के घोगपुर गांव में कल यमुना नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो जाने की खबर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 3 बच्चों के शव बरामद कर लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता के निर्देश दिए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के 5 शिक्षकों सहित देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों का किया आह्वान।

0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा आज, राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगी परीक्षा का आयोजन। और प्रदेश की कई नदियां उफान पर, 24 जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित DK दातार का वायलिन वादन। राग है अहिर भैरव। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। और आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नयन घोष। तो लीजिए सुनिए पंडित DK दातार का वायलिन पर बजाया राग अहिर भैरव।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी में तैयार वाद्य वृंद रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात। रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आए

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक

0: अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
3: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
4: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
5: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने

0: खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये टी20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां टी20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला टी20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। कॉल्स अपॉन यंग इंडियंस टू बिल्ड ग्लोबल कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड लीगल फर्म्स केपेबल ऑफ लीडिंग द वर्ल्ड। बीजेपी राज्यसभा एमपी दिनेश शर्मा अपॉइंट।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान भारतीयों से दुनिया की क़यादत करने के काबिल आलमी कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, मालियाती और कानूनी फर्म्स कायम करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सर्द साला तकरीबात से खिताब किया।

0: बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार जजायर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए की खसूसी अदालत ने साल 2013 के छत्तीसगढ़ की झीराम वादी कतलेआम केस में 10 माओ नवाजों को कसूरवार करार दिया है। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स समिट मुनाकिद होगा। इस दो रोजा समिट में 500 से ज्यादा इदारा जाति सरमायाकार, वुजराए खजाना और कारोबारी रहनुमा शिरकत करेंगे। और खवातीन क्रिकेट के टी20 एशिया कप के दुबई में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवान भारतीयों पर जोर दिया है कि वो पिछली नस्लों से भी बड़े ख्वाब देखें और आलमी मियार की ऐसी मुशावरती, अकाउंटिंग, मालियाती और कानूनी फर्म्स कायम करें जो दुनिया की क्यादत करने की सलाहियत रखती हों। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारतीय अफराद दुनिया की सरकर्दा कंपनियों की क्यादत कर रहे हैं तो फिर भारतीयों की कायम करदा कंपनियां दुनिया की क्यादत क्यों नहीं कर सकती। वजीर आजम कल शाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC की सर्दसाला तकरीबा से खिताब कर रहे थे।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: जनाब मोदी ने कहा कि आलमी सतह पर गैर यकीनी की सूरत हाल के दरमियान भारत की 7.8% की सैमाही शरह तरक्की इसकी इक्तसादी मजबूती की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि भारत ने पॉलिसी मफलूज होने की सूरत हाल से तेज और फाल पॉलिसी तक एक तवील सफर तय किया है। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बनते हुए देख रही है। जनाब मोदी ने इत्तला दी के स्मार्टफोन की बरामदात अब 2.5 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है, जबकि घरेलू दिफाई साजो सामान की पैदावार तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की अब तक की आला तरीन सतह तक पहुंच चुकी है।
1: देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
0: वजीर आजम ने कहा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान तलबा की कई नस्ल को सीखने, तरक्की करने और माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के मौके फराहम किए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि कॉलेज ने गुज़िश्ता बरसों में तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना नुमाया मकाम बनाया है। वजीर आजम ने कहा कि साबिक वजीर खजाना अरुण जेटली भी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के फारिग तहसील थे। उन्होंने कहा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के फारिग तहसील तलबा ने फन और सकाफत से लेकर सियासत तक हर शोबे में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की है। जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाए। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: वजीर आजम मोदी ने कॉलेज और मुल्क के तालीमी शोबे दोनों के 100 साल मुकम्मल होने के संग मील की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कॉलेज के बानी श्रीराम को खिराज अकीदत पेश किया और उनके देरपा विजन के सामने सर तस्लीम खम किया। वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने अपनी तकरीर में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की गुज़िश्ता बरसों के दौरान अपने आला मेयार को बरकरार रखने के लिए उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज भारत वजीर आजम मोदी की क्यादत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में हुनरमंद इंसानी वसाइल की जरूरत है। वजीर तालीम ने इसे मुल्क की नौजवान आबादी के लिए एक मौका करार दिया। बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट दिनेश शर्मा का अंडमान और निकोबार जजायर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर तकरर किया गया है। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल डी के जोशी की जगह लेंगे जो 8 अक्टूबर 2017 से अंडमान और निकोबार जजायर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के फराइज अंजाम दे रहे थे। 62 साल डॉक्टर शर्मा इससे पहले उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला भी रह चुके हैं। उनकी राज्यसभा की मुद्दतकार इस साल 25 नवंबर को खत्म होनी थी। राष्ट्रपति भवन की जानिब से कल जारी बयान में कहा गया कि डॉक्टर शर्मा के तकरर का इतलाक उनके जरिए

0: संभालने की तारीख से होगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कौमी जांच एजेंसी एनआईए की खसूसी अदालत ने जीरामवादी नक्सली हमले में सभी 10 मुलजिमीन को मुख्तलिफ दफात के तहत कसूरवार करार दिया है। इस मामले में कुल 11 मुलजिमीन के खिलाफ केस चलाया गया था, जिसमें से एक मुलजिम की दौरान समाअत मौत हो गई। अदालत ने 2 खवातीन समेत सभी 10 मुलजिमीन को 29 लोगों को कत्ल करने और दीगर 15 अफराद को कत्ल करने की कोशिश का कसूरवार करार दिया। अदालत ने सजा की मुद्दत का फैसला 16 सितंबर के लिए महफूज कर लिया है। मई 2013 में माओ नवाजों ने झीराम वादी में कांग्रेस रहनुमाओं के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही गोलीबारी में 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने इस मामले की तफ्तीश की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को हो रहे ब्रिक्स समिट के तनाजुर में 500 से ज्यादा इदारा जाती सरमायाकार, वुजराए खजाना और कारोबारी रहनुमा आई ब्रिक्स समिट के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। ये 2 रोजा समिट 21 ब्रिक्स रुकन रियासतों और साझेदार मुल्कों के खुद मुख्तार सरमाए को काबिल एतबार बुनियादी ढांचे, तवानाई और डिजिटल सलाहियत प्रोजेक्टों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। खुद मुख्तार फंड्स, पेंशनर फंड्स और आई ब्रिक्स समिट में शिरकत कर रही प्राइवेट कंपनियां मिलकर 1 खरब अमरीकी डॉलर की हिस्सेदारी रखती हैं। इस दौरान ब्रिक्स मईशतों में सरहद पार सरमायाकारी, डॉलर के अलावा दीगर करेंसियों में तस्फीये और अदायगी निजाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये समिट ऐसे अहम वक्त पर मुनक्किद हो रहा है जब ब्रिक्स मईशतें तिजारत के तरीक़ेकार को बदलने, अमरीकी महसूलात के दबाव और डॉलर में अदायगी की ज्यादा लागत से मुताबिकत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। भारत साल 2026 की ब्रिक्स सदारत के तहत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वीं ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह कल रात 3 रोजा दौरे पर गोवा पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वो मगरबी इलाकाई काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। आज वो वजारत दाखिला की एक मीटिंग की सदारत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और बीजेपी के नए रियासती दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: जनाब अमित शाह आज अपनी मसरूफियत का आगाज गोवा से मुतालिक अहम उमूर का जायजा लेने की मीटिंग के साथ करेंगे। वो बीजेपी के नए तामीर करदा रियासती दफ्तर अटल भवन के इफ्तिताह से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनाब शाह आज पार्टी की रियासती कोर कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। उनकी कल की मसरूफियात में मगरबी इलाकाई काउंसिल की मीटिंग और गोवा पुलिस को सदर का पुलिस कलर पेश किया जाना शामिल है। पंजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: मुनशिया से मुतालिक इंजिबाती इदारों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने नई दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर तैयार की जाने वाली और गलत लेबल वाली अद्वियात की तैयारी और तकसीम के खिलाफ मरबूत कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गलत लेबल वाली और जाली अद्वियात की तैयारी और तकसीम से मुतालिक मुजरिमाना सरगर्मियों की निशानदेही के लिए मुसलसल निगरानी कर रही है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: जब भी किसी मुजरमाना हरकत या सरगर्मी से मुतालिक कोई इतला सामने आती है तो दवाओं के मेयारात को कंट्रोल करने की मरकजी तंजीम CDSCO, दिल्ली पुलिस और दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करती है। इस मुसलसल निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रवां साल अप्रैल में दिल्ली में बगैर लाइसेंस के एक अहाते से गलत लेबल वाली गैर मियारी रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक मकतूब के जरिए भारत के दवाओं के कंट्रोलर जनरल DCGI ने तमाम रियासती ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वो अपने मुआयना करने वाले अमले को अलर्ट करें और मस्कूरा दवा की गलत लेबल वाली वैक्सीन की खेप की नकल हरकत, तकसीम और दस्तियाबी पर सख्त नजर रखें। DCGI ने यह भी तस्दीक की है कि मुतल्लिका खेप का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे मुल्क को बरामद नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिक्स और सरकारी तिब्बी मराकज में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों के जरिए फराहम की जाती है। इस मामले के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने मजमूई तौर पर 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। नई दिल्ली से निकिता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: हुकूमत ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गर्दिश कर रहे वीडियो में किए गए उस दावे को मुस्तरद किया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक्वामी हवाई

0: का रनवे बारिश के पानी में डूबा हुआ है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को फर्जी करार देते हुए कहा कि यह वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब दिल्ली हवाई अड्डे पर शदीद बारिश हुई थी और हवाई जहाजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच टाइगर रिजर्व में कैद में परवरिश पाने वाले गिद्धों को दोबारा जंगल में छोड़ने के लिए भारत के सबसे कामयाब मकामात के तौर पर सामने आए हैं, जहां इन गिद्धों की बका की हौसला अफजा शरह रिकॉर्ड की गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के मुताबिक दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के दरमियान दोनों टाइगर रिजर्व में मजमूई तौर पर 29 गिद्ध छोड़े गए, जिनमें से 78% तक के जिंदा रहने की शरह रिकॉर्ड की गई। BNHS ने कहा कि कामयाबी इस बात को साबित करती है कि परिंदों को छोड़ने के लिए बनाए गए मखसूस इहातों को शिकार और इंसानी मुदाखलत से महफूज टाइगर के मस्कन में मुंतकिल करना मुअस्सर साबित हो सकता है। ये नतायज भारत में गिद्धों की कम होती हुई आबादी के तहफ़ की जारी कोशिशों के लिए हौसला अफजा हैं। मुंबई से माधुरी पांगे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार, मशरकी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, अंदरूनी कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मगरबी बंगाल और सिक्किम में दिन भर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। खवातीन क्रिकेट के एशिया कप T20 मैच में कल दुबई में भारतीय टीम ने एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इससे पहले पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर्स और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई, जो कि बैन अल-अक़वामी T20 मैचों का अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत की जानिब से नौजवान स्पिन गेंदबाजों श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने सिर्फ 8 ओवर्स और 4 गेंदों में जीत का निशाना हासिल कर लिया। इस दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर 18 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। इससे पहले पाकिस्तान ने मजबूत शुरुआत की और बिना विकेट खोए 27 रन बनाए, ताहम महज अगले 9 रन के दौरान 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट हो गए और भारतीय स्पिन गेंदबाजों की मैच पर पकड़ मजबूत हो गई। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
2: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने योम असातज़ा के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोज़नामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, असातज़ा बच्चों को निसाबी तालीम के साथ साथ जिंदगी के अकदार भी सिखाएं और उनको सिर्फ निसाबी मालूमात तक महदूद न रखें, बल्कि उनमें मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और दीगर मुस्बत अकदार को भी फ़रोग दें। रोज़नामा प्रताप ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने योम असातज़ा के मौके पर दिल्ली में मुनाकिदा तकरीब में मुल्क भर के बेहतरीन असातज़ा को कौमी अवार्ड से नवाजा। सदर ने कहा कि स्कूल की तालीम पूरे तालीमी निज़ाम की बुनियाद है। रोज़नामा इनकलाब ने एक और अहम सुर्खी लगाई है, अक़वामे मुत्तहिदा में नए आलमी नक्शे की करारदाद मंजूर।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान भारतीयों से दुनिया की क़यादत करने के काबिल आलमी कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, मालियाती और कानूनी फर्म्स कायम करने की अपील की। वज़ीर आज़म ने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सदसाला तकरीबात से खिताब किया। बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार जजायर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA की खसूसी अदालत ने साल 2013 के छत्तीसगढ़ की जीराम वादी कतलेआम केस में 10 माओनवाजों को कसूरवार करार दिया है। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को IBRICS समिट मुनाकिद होगा। इस 2 रोजा समिट में 500 से ज्यादा इदारा जाती सरमायाकार, वज़राए खजाना और कारोबारी रहनुमा शिरकत करेंगे। और खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप के दुबई में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 MHz पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR में ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे अपना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

स्टार्ट स्मॉल, रोज केवल 10 मिनट। क्यों कहा मैंने ये आपको बताने वाले हैं अगले 15 मिनट में। नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं कमरा छोटा हो तो कोई बात नहीं, अगर उसमें किताबें हों तो दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। जरा कल्पना कीजिए, एक शांत कमरा, खिड़की से आती हल्की सी धूप, हाथों में एक किताब और किताब का एक पन्ना। खुलते ही हम पहुंच जाते हैं कभी इतिहास के किसी युग में, कभी किसी अनजाने देश में, और कभी किसी महान व्यक्तित्व के जीवन में, और कभी अपनी ही कल्पनाओं की उस दुनिया में जहां कोई सीमा नहीं होती। किताबें केवल कागज़ के पन्ने नहीं है दोस्तों, बुक्स आर साइलेंट टीचर्स, फेथफुल फ्रेंड्स एंड विंडोज टू द वर्ल्ड। और श्रोताओं, इसी पुस्तक प्रेम तथा पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए 6 सितंबर को नेशनल रीड अ बुक डे यानी पुस्तक पठन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बहुत सरल है, अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकालिए और एक अच्छी किताब पढ़िए। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार इस दिवस की शुरुआत का सटीक इतिहास तो हम आपको नहीं बता सकते श्रोताओं, क्योंकि ये स्पष्ट ही नहीं है, लेकिन इससे लगभग 1.5 दशक से अधिक समय से पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर के रूप में मनाया जाता रहा है। हमारे भारतीय संस्कारों में तो ज्ञान को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया गया है,

हमारे यहाँ कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनया दाति पात्रताम, पात्रत्वाधन मापनोति धनाधर्मम ततः सुखम। अर्थात विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता अंततः जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग खोलती है। तो फिर सवाल उठता है, आज के डिजिटल युग में किताब पढ़ना इतना आवश्यक क्यों है? आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, वीडियोस हैं, पॉडकास्ट हैं और कुछ ही सेकंड में दुनिया की कोई भी जानकारी हमारी स्क्रीन पर आ सकती है। फिर सवाल उठता है, किताब ही क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशंस या जानकारी हमें मिलती है, लेकिन रीडिंग हमें विचार करना सिखाती है। मोबाइल हमें उत्तर दे सकता है, लेकिन किताब हमें प्रश्न पूछना सिखाती है। किताब हमें केवल ये नहीं बताती कि दुनिया कैसी है, वो हमें ये सोचने पर मजबूर

और श्रोताओं, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं लेकर आपका कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। और आज हम विश्व पुस्तक पाठन दिवस मना रहे हैं, तो आपको बता दें कि हमारे समाज पे जो इसका प्रभाव पड़ता है उसके भी बारे में अगर हम कुछ चर्चा कर लें तो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा और बहुत सारे उन लोगों को संदेश जाएगा जो लोग अपना बहुत सारा वक्त सोशल मीडिया पर बिताते हैं और कहीं ना कहीं आज किताबें उनके जीवन से बाहर हो चुकी हैं। तो एक पढ़ने वाले समाज की जब हम बात करते हैं तो वो अधिक शिक्षित समाज होता है, लेकिन और साथ ही साथ बहुत ही जागरूक, संवेदनशील और विचारशील भी बन जाता है अगर वो पढ़ता है किताबें रोज़। तो जब हम साहित्य की बात करते हैं तो हम अलग अलग लोगों के जीवन और अनुभवों को समझते हैं। इतिहास पढ़ते हैं तो अतीत सीखते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं तो जिज्ञासा विकसित होती है, जीवनियाँ पढ़ते हैं तो संघर्ष और सफलता की वास्तविक कहानियाँ हमारे सामने आती हैं। किताबें हमें पूर्वाग्रहों से बाहर निकलकर दूसरे दृष्टिकोण को समझने में मदद करती हैं। और इसीलिए श्रोताओं, कहा भी गया है, अ रीडर लिव्स थाउजेंड्स लाइव्स बिफोर ही डाइज। सो एक पाठक अपने जीवन में केवल अपना अनुभव नहीं जीता बल्कि किताबों के माध्यम से अनेक जीवनों को महसूस करता है।

बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए भी किताबें बहुत ज़रूरी हैं, और क्यों ज़रूरी हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप इससे अपनी वोकैबलरी बहुत अच्छी कर सकते हैं। वोकैबलरी यानी शब्द भंडार, वर्ड पार। और आप सभी को ये पता होगा कि अगर हमारी डिक्शनरी में वर्ड पार बहुत अच्छा है, समृद्ध है, तो बोलने में, लिखने में हर तरीके से हमें ये मददगार साबित हो सकता है। आपकी इमेजिनेशन बहुत मज़बूत हो जाती है, क्रिएटिव हो जाते हैं आप, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, और आपके विचारों में कहीं ना कहीं बहुत गहराई आती है। तो किताबों को अपना मित्र बनाइए श्रोताओं, कहानी पढ़िए, कविता पढ़िए, जीवनी पढ़िए, विज्ञान की किताब पढ़िए, अपने पसंद की विषय पर पुस्तक आप पढ़िए, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पढ़ने को परीक्षा की मजबूरी नहीं, आनंद की आदत बनाइए। आज एक बच्चा किताब खोलता है तो केवल एक कहानी नहीं पढ़ता, वो अपनी कल्पना की खिड़की खोलता है, वो नए शब्द सीखता है, नए विचारों से मिलता है, धीरे धीरे अपनी सोच की दुनिया को इतना बड़ा करता है कि बस संसार तो बस अपना है। लेकिन शुरुआत कैसे करें? कई लोग कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, तो मेरा जवाब होगा आप रोज़ 2 घंटे पढ़ने की बाध्यता मत ले आइए, लेकिन स्टार्ट स्मॉल, रोज़ केवल 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। और यही मैंने शुरुआत की थी कार्यक्रम शुरू करने से पहले, यानी छोटी छोटी शुरुआत बहुत ज़रूरी है। आज 10 पन्ने, कल 5 पन्ने, परसों 1 छोटी कहानी, और धीरे धीरे यही 10 मिनट आपकी आदत बन जाएंगे।

तो श्रोताओं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलिए, किताबों के माध्यम से तमसो मा ज्योतिर्गमय। और सच पूछे तो अच्छी किताबें यही तो करती हैं कि अंधकार से आप प्रकाश की ओर जाते हैं। इस 6 सितंबर को केवल रीड अ बुक डे ना मनाएं, बल्कि इसे रीड अ बुक, शेयर अ बुक, स्टार्ट अ बुक डे बना दें। क्योंकि पुस्तकें पढ़ेंगे तो विचार जागेंगे, विचार जागेंगे तो प्रश्न उठेंगे, और प्रश्न उठेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। याद रखिए श्रोताओं, आज की किताब कल का विचार है, और आज का विचार ही कल के भारत का आधार है। इसी संदेश के साथ मैं मोना पांडे आपसे इस कार्यक्रम समापन की इजाजत चाहूंगी। किताब उठाइए और एक पन्ना जरूर पलटिए।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन EIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और अब समय हो चला है फिल्म संगीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं पहला गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं दम लगा के हैशा फिल्म का गाना पपोन के स्वर में, और वरुण ग्रोवर ने इसे लिखा है, अनु मलिक का संगीत है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को है और अब समय हो चला है सामयिक चर्चा सुनने का। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रदेश में इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच इस संक्रामक बीमारी से बचाव और लखनऊ के अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं के बारे में लखनऊ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: लखनऊ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के साथ अन्य संक्रामक बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के विषय में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह सर। सर, आकाशवाणी लखनऊ में आपका बहुत बहुत

0: स्वागत है
1: धन्यवाद आपका।
0: सर, जनपद में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ दिनों पहले ही इसको लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी संबंध में जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें सरकारी अस्पतालों में जांच, उपचार और दवाओं को लेकर के क्या व्यवस्था की गई?
1: पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वाइन फ्लू है क्या। ये कॉमन फ्लू इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। इस इन्फ्लुएंजा ए टाइप इसका कॉजेटिव वायरस है, जो आरएनए वायरस। ये 2009 में इसको वायरस का नाम स्वाइन फ्लू पड़ा। पहले इसको आरएनए इन्फ्लुएंजा ए वायरस बोला जाता था। इसका स्ट्रेन H1N1 है। इस समय 2009 के बाद से ये वायरस पैंडेमिक हो गया है। ये वायरस हमेशा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन हर आदमी को इससे घबराने या चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बुजुर्ग हैं या 5 साल से छोटे बच्चे हैं या जिनको गंभीर बीमारियों से पीड़ित या HIV इन्फेक्शन है या लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे ट्रीटमेंट वो चल रहे हैं या आर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, किन्हीं भी कारणों से उनकी इम्यूनिटी लो है, उन लोगों को विशेष प्रिकॉशन एहतियात लेने की जरूरत है। ऐसे लोगों को सलाह मैं ये देना चाहूँगा जो अति गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको अपनी जो पहले से दवाएं चल रही हैं उन दवाओं को यथावत अपने डॉक्टर की सलाह पे लेते रहेंगे। और अगर उनको सर्दी जुखाम जैसा कुछ लक्षण लग रहा है तो अपने उन्हीं डॉक्टर से या किसी सरकारी अस्पताल में चिकित्सक से सलाह लेंगे। सरकारी अस्पतालों में इनकी जांचें और दवाएं बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क हैं। लखनऊ में 10 जिला स्तरीय चिकित्सालय हैं और हमारी CSCs हैं 20, वहाँ पे इनकी जांच की और दवाओं की भी व्यवस्था है। तो हम अपने नगर वासियों से और जनपद वासियों से ये अपेक्षा करते हैं सही जगह सही सलाह लें और सही उपचार करें।
0: सर, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर स्वाइन फ्लू के मामलों में अचानक तेजी आती तो उसको लेकर के क्या बैकअप प्लान तैयार किया गया?
1: हमारे यहाँ लखनऊ में जनवरी से अब तक लगभग 119 मामले आए हैं, जनवरी से लेके अब तक। तो अचानक तेजी कहना उचित नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल बरसात के मौसम में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन बढ़ते हैं, तो उसी क्रम में इन्फ्लुएंजा भी इस समय जो H1N1 है उसी रूप में है। इस समय का जो स्वाइन फ्लू या H1N1 या इन्फ्लुएंजा ए, ये तीनों नाम उसी के हैं, फैला हुआ है, एक कॉमन फ्लू जैसा ही है। इससे बिल्कुल भी घबराने या डरने की बात नहीं है। अगर इनको लक्षणों के भारत सरकार ने दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी की है उसमें इस बीमारी के लक्षणों के आधार पे कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2 एंड कैटेगरी C। इसमें कैटेगरी ए एंड B1 में किसी भी तरह का कोई दवा केवल पैरासीटामॉल एंड बी कम्प्लेक्स के अलावा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। B2 कैटेगरी में एसल्टामीन या लेना है 75 mg या अकॉर्डिंग टू द वेट अन्य दवाओं के साथ। कैटेगरी सी में, कैटेगरी सी उनको बोला जाता है जिनको सांस की दिक्कत है, बहुत उल्टी हो रही है, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेबल नहीं है, बेचैनी हो रही है, ऐसे मरीजों को भर्ती किया जाता है। अभी तक हमारे लखनऊ में कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से ही लोग भर्ती हुए हैं, क्योंकि अगर पहले से इम्यूनिटी लो है, लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनमें छोटा सा बीमारी या वायरस भी बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम अपने नगर वासियों और जनपद वासियों से उम्मीद करते हैं, विशेषकर जो श्रेणी मैंने बताया हूँ जो रिस्क जोन में हैं, और उनको पहले से जो भी एहतियात या दवाएं उनकी चल रही हैं उसमें कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से सलाह मशविरा जरूर करें। इस समय लापरवाही खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं दवा नियमित ले रहे हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रोफाइल, हार्ट की जांचें सब हमारा नॉर्मल है, तो H1N1 पॉजिटिव होने के बाद भी भगवान की इच्छा से सब ठीक होगा, कोई गलत अनहोनी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है।
0: सर, जैसा कि आपने बताया कि स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये फ्लू वायरस की बीमारी

0: इसी से मिलती जुलती बीमारी कोरोना भी थी। क्या पुष्टि हुई है कि कोरोना के भी कुछ मरीज पाए गए हैं, या दोनों में कैसे अंतर कोई कर सकता है?
1: जैसा मैंने अब बताया कि ये 2009 में आउटब्रेक हुआ था, उसमें बहुत तेजी से फैला था, नया वायरस था उस समय, तो उसी तरह से पैंडेमिक हो गया, इस समय हमारे वातावरण में रह रहा है। उसी तरह से कोरोना 2021 में आया था, उस समय भी कोरोना की दो स्ट्रेन पहले से ही पैंडेमिक थी, 3 सालों में हर साल वो कोरोना का स्ट्रेन बदला। उसी तरह इस समय भी कोरोना के कुछ स्ट्रेन हमारे इन्वायरमेंट में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो वाला 2021 वाला कोरोना हो गया। तो इसमें भी प्रिकॉशन वही ही लेने हैं जो हम H1N1 के लिए ले रहे हैं, जो हम इन्फ्लुएंजा के लिए ले रहे हैं, प्रिकॉशन वही है। अभी हम प्रिकॉशन से पे हम बात करेंगे क्या करें क्या ना करें, लेकिन अभी प्रिकॉशन कोरोना भी है तो बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
0: सर, नए और संभावित मामलों को लेकर के स्वाइन फ्लू के या कोरोना के अस्पतालों में क्या अग्रिम व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ऑक्सीजन की, बेड की, दवाओं की?
1: हमारे यहाँ लखनऊ में 10 जिला चिकित्सालयों में और मेडिकल कॉलेज KGMU, SGPGI, RML में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। कुल मिला के लखनऊ में अभी लगभग 60 बेड आरक्षित है। वहाँ पर जांच भी हो रही है और दवाएं भी हैं। हमारे जिला स्तरीय चिकित्सालयों की बात करें तो हमारे 12 बेड सिविल हॉस्पिटल श्यामा प्रसाद मुखर्जी में और 8 बेड बलरामपुर हॉस्पिटल में, 10 बेड लोक बंधु में, 6 बेड RLB में और करीब 8 बेड RSM में। तो बेड आरक्षित किए हुए हैं, लेकिन भर्ती उन्हीं को किया जाएगा जो कैटेगरी सी में आएंगे और उन्हीं मरीजों का H1N1 जांच कराना, बाकी अन्य जो उससे लोअर कैटेगरी हैं उनको अन्य बीमारियों के चलते तो भर्ती हम कर सकते हैं, लेकिन H1N1 के चलते भर्ती नहीं करें।
0: सर, बारिश का मौसम है, जल भराव की भी समस्याएं कुछ हो रही हैं, इस बीच में जो है डेंगू के भी मामले बढ़ते हैं जैसे और साल की तरह साल होते हैं, उसको लेकर क्या योजना है? और अभी सरकार ने टीके की बात की थी डेंगू की, उसकी उपलब्धता क्या है इसके बारे में?
1: बरसात के मौसम में जैसा कि हम लोग बात किए हैं अभी, मच्छर भी बहुत तेजी से फैलते हैं, जहाँ भी जल भराव रहेगा वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलेगा ही फैलेगा। लेकिन हम लोग भाग्यशाली रहे हैं, पिछले वर्ष जो था उसके विगत वर्षों की तुलना में काफ़ी कम डेंगू के केसेज, जो चिकनगुनिया के केसेज हुए वहाँ पे। इस साल भी हम अभी तक डेंगू के केसेज बहुत ज़्यादा नहीं हैं, पिछले साल की तुलना में करीब करीब लगभग बराबर, थोड़ा सा 2-4 केस बढ़े हुए हैं, लेकिन डेंगू के लिए भी हम लोगों ने जिला चिकित्सालयों में बेड आरक्षित किए गए हैं। अगर कोई ऐसा गंभीर बीमारी से पीड़ित आएगा तो भर्ती किया जाएगा। तो डेंगू का भी इलाज यही है कि लोग समय से अवेयर रहें, सही जगह इलाज कराएं। लखनऊ में 10 जिला स्तरीय चिकित्सालय हैं, तो उन चिकित्सालयों का लाभ उठाएं।
0: सर, जो केंद्र सरकार ने टीके की बात की थी क्यूडेंगा डेंगू को लेकर, उसकी क्या उपलब्धता है, क्या मतलब वो लखनऊ में उपलब्ध हो गया है?
1: केंद्र सरकार ने जो डेंगू के टीके की बात किया है वो अभी पब्लिक के लिए अभी रोल आउट नहीं, रोल आउट होगा तो हम लोग जरूर लगाए।
0: सर, लखनऊ में बड़ी संख्या में दूसरे जिलों से गंभीर मरीज आते हैं इलाज करके, ऐसे मरीजों की जो है बढ़ती हुई संख्या को देख करके अस्पतालों में जो जांच बेड या आपातकालीन सेवाओं की सुविधाएं हैं उसको लेकर क्या तैयारी की गई?
1: लखनऊ इधर अगल बगल के कम से कम 25 जिलों से मरीज आते हैं, यहाँ पर प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल संस्थान है, जैसे SGPGI में तो दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं, KGMU में भी दूसरे प्रदेशों से भी, अपने कम कम आधा प्रदेश KGMU में आता है, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उनके वो बीमारियों के हिसाब से हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो हैं, चिकित्सालय जो हैं, सतर्क अलर्ट मोड में ट्रीटमेंट उनके यथोचित किया जाता है।
0: सर, सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों के बीच भी संक्रामक रोगों की निगरानी या मरीजों की जानकारी साझा करने के लिए कोई व्यवस्था या सेटअप तैयार किया गया है?
1: हमारे यहाँ पूरे प्रदेश भर में जो भी संक्रामक रोग हैं उनके बीमारियों को एक रूपता और समन्वय और मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बनाया गया है UDSP। जितने भी सरकारी चिकित्सालय या पैथोलॉजी हैं, किसी के यहाँ अगर संक्रामक रोगों से संबंधित कोई जांच पॉजिटिव आता है तो UDSP पोर्टल पे अपलोड करना कंपलसरी है। तो उस पे अपलोड करता है तो हम लोगों को रिपोर्ट डेली मिल जाती है कि कितने और कहाँ पर

0: डेंगू, स्वाइन फ्लू या अन्य संक्रामक बीमारियों के मामलों की निगरानी के लिए सर्विलांस सिस्टम को कितना मजबूत किया गया और संदिग्ध मामलों की सूचना विभाग तक कैसे पहुंचती?
1: इस बारे में जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ फीवर के या संक्रामक रोगों के जितने भी बीमारियां हैं, अगर कोई उसमें पॉजिटिव आता है तो जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस अफसर है हमारे यहाँ और UDSP पोर्टल है, उस पे जो भी अगर कोई संक्रामक रोग से ग्रसित पाया जाता है तो उस टीम जाती है, उसको निवारक कार्रवाई की जाती है वहाँ पे।
0: सर, लखनऊ की जनता को मौसमी और संक्रामक बीमारियों के बचाव के लिए आप क्या प्रमुख सावधानियां और क्या सलाह देंगे और कैसे लक्षण उपन्ने पर उनको तैयार रहना चाहिए कि हमें अब जांच करा लेनी चाहिए? और
1: अभी सबसे पहले तो इन्फ्लुएंजा ए, H1N1 / स्वाइन फ्लू से बचाव के तरीके पे मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ। जो हम लोग 4 साल पहले कोरोना के समय जो प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे थे, जैसे कफ एटिकेट, खांसते और छींकते समय मुंह पे कपड़ा लगाना, वो हमने आदत सीखा था, फिर से उसको हमें आदत में लाना है। सोशल डिस्टेंसिंग, एक हाथ का डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अगर फ्लू के सिम्टम हैं तो ना जाएं, शेक हैंड ना करें, गुनगुना चीज खाएं और पिएं। अगर फ्लू के सिम्टम हैं तो 3-4 दिन 5 दिन घर में रहें या जो गंभीर पीड़ित लोग हैं उनसे डिस्टेंसिंग बना के रखें, जिससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो उनको। और डेंगू के लिए हम कहना चाहेंगे, हमें अपने जनपद वासियों को अपने अगल बगल घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। ना पानी इकट्ठा होगा, ना मच्छर पैदा होगा, ना तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होगा। तो हम लोग सभी जनपदवासी ये प्रण कर लें कि अपने घर में और घर के बाहर पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे तो हम लोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बिल्कुल बचे रहेंगे।
0: आम जनता दोनों में जैसे अगर किसी को होता तो वो अंतर कैसे कर पाए फ्लू के सिम्टम और डेंगू के सिम्टम, तो वो कैसे बचाव उससे करें और तुरंत जांच कराएं?
1: डेंगू के सिम्टम होंगे हाई ग्रेड फीवर होगा और जोड़ों में मसल्स में पेन होगा, रिट्रोबल्बर आँख के पीछे दर्द होगा, उसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को। और कॉमन फ्लू में इतना सीवियरिटी फीवर की नहीं होती है, कॉमन फ्लू में गले में खराश, हल्का बुखार और उल्टी मिचली भी आ सकती है, जो कि डेंगू में नहीं होगा।
0: आखिर में सवाल यह है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की क्या प्राथमिकताएं हैं और आगामी महीनों में जो तैयारियां हैं उसके बारे में, कुछ उपलब्धियों के बारे में?
1: अभी हमारे जो लखनऊ में हम लोग अपने हेल्थ सिस्टम को पूरा अलर्ट मोड में रखा हुआ है। अभी H1N1, डेंगू सबके लिए हम लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। हमारे यहाँ हर CSC पे डेंगू का जांच होने के लिए वहाँ पे कार्ड टेस्ट हो जाएगा, सस्पेक्ट हो जाएंगे, फिर कन्फर्मेटरी के लिए एलाइजा टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज और जिला स्तरीय पे उसकी जांचें होती हैं। H1N1 के लिए हम वो लोग वहाँ पे थ्रोट स्वैब लेके VTM से मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे रियल टाइम PCR उसका कन्फर्मेटरी जांच है। H1N1 का रियल टाइम PCR ही कन्फर्मेटरी जांच है, वो हमारे मेडिकल कॉलेज SGPGI और रामन लोहिया में कंफर्म होते हैं, वहाँ पे हम लोग भेजते हैं। बाकी हमारी जो डेंगू के लिए और H1N1 के लिए दवाएं हर जिला चिकित्सालयों में और हर जगह उपलब्ध।
0: आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय दे।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना, प्रदेश में इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच इस संक्रामक बीमारी से बचाव और लखनऊ के अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं के बारे में लखनऊ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: आकाशवाणी के
4: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। बस थोड़ी देर में लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, पेश है उर्दू कार्यक्रम, पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
5: समय नादाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं कल्याणी मुखर्जी। आप सुनेंगे इनके स्वर में गीत।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में फिर लीजिए सुनिए कल्याणी मुखर्जी के स्वर में एक और गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार थी कल्याणी मुखर्जी। आपने सुने इनके स्वर में गीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया के शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं।

0: अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉ शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉ शर्मा ने कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के एक अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज तड़के उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया था। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1344 हो गई है। इस घटना में 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अब भी लापता है। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। नोवाकोट जिले में 10 दिनों तक कीचड़ और मलबे के नीचे दबी एक 60 वर्षीय महिला को बचा लिया गया। मृतकों की पहचान के लिए कई मामलों में डीएनए परीक्षण का सहारा लिया जा रहा है। महिला क्रिकेट में दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। यह मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां टी20 मैच था। वो पुरुष या महिला क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान है। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के ही हे जी टिंग और रेंग जियांगजू की जोड़ी से होगा। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अर्जियन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया था। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, कर्नाटक के भीतरी हिस्सों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के कलाकार हैं हरविंद कुमार और साथी वत्सला मनोहर देवधर। इन के स्वर में आप सुनेंगे लोकगीत। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे देवी गीत जय हो अम्बे, और अब आप सुनेंगे दादरा अभिमन कैले ललनवा वत्सला मनोहर देवधर।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में अभी आप सुन रहे थे हरविंद कुमार और साथियों के स्वर में लोक गीत। पहले आपने सुना था देवी गीत और फिर दादरा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वत्सला मनोहर देवधर के स्वर में लोक गीत। पहले सुनते हैं देवी गीत।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। और श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

मोहब्बत क्या है? एक एहसास जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, और शायद इसीलिए हम अपनी भावनाओं को संगीत का रूप देते हैं। तो लीजिए सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में परदेस फिल्म का गाना, जिसमें गीत दिया है आनंद बख्शी साहब ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

कहते हैं प्रेम में मनुहार भी होता है और इंतजार भी। रूठना मनाना तो प्रेम का अभिन्न हिस्सा है। इसी मासूम मनुहार और निश्चल प्रेम को अपने शब्दों में पिरोया है जावेद अख्तर ने, और आरटी बर्मन की मधुर धुन पर इसे अपनी भावपूर्ण आवाज दी है कुमार सानू ने। तो आइए सुनते हैं 1942 अ लव स्टोरी का यह बेहद खूबसूरत गीत।

हादसा तो होगी ही बात। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं और हमें लगता है कि हम ये कभी ना भूल पाएं।

तो हमारी ज़िंदगी में कई लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने ख़ास होते हैं कि हमारी ज़िंदगी ही बदल देते हैं। और ऐसे ही एहसास को लेकर आया है हमारा अगला नगमा।

0: याद आते हैं जिंदगी के वो गुजरे ज़माने। अच्छी लगती थी जेठ की दोपहरी, बरसात की रिमझिम और वो शीतलहरी। लेकिन आज गम का आलम इस कदर है जिंदगी में, मुझको अच्छी लगती है सिर्फ अपनी आँखों की बरसातें।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

कुछ कहना था तुमसे, कुछ सुनना था तुमसे, बस वही बात, वो पहली मुलाकात, वो पल अनजाना था, शायद कोई फसाना था, शायद पल अनजाना था, कुछ कहना है तुमसे, कुछ सुनना है।

सफ़र चाहे शहर की मेट्रो का हो या ज़िंदगी का, कुछ मुलाकातें हमेशा यादगार बन जाती हैं। कभी भीड़ के बीच कोई अपना मिल जाता है तो कभी एक छोटी सी मुलाकात दिल में बड़ी सी कहानी छोड़ जाती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अगली उद्घोषणा के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों
1: बच्चों
0: जय
1: जय हिंद।
0: हिंद। तो भाई आप सुन रहे हैं ना अपना प्यारा कार्यक्रम बाल संग। आप सभी का स्वागत है और आशा है कि आप सब अपने रेडियो सेट को ट्यून करके उसके पास बैठे होंगे, है ना
1: बिल्कुल
0: गुंजन दीदी।
1: बिल्कुल।
0: तो भाई बच्चे सोच रहे होंगे कि जब दीदी लोग आती हैं तो कुछ अच्छी चीजें लेकर आती
1: और
0: हैं,
1: क्या भाई, हम
0: आती है ना।
1: दीदियां हैं तो हमें तो अच्छी
0: हाँ
1: अच्छी चीज लानी ही पड़ेंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आज हम बात करेंगे विज्ञान की एक ऐसी दिलचस्प घटना की जिसे सुनकर आपको शायद थोड़ा आश्चर्य हो।
1: क्या?
0: वो है प्लेसिबो प्रभाव।
1: ये क्या
0: हाँ
1: है दीदी?
0: समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं,
1: नहीं।
0: इसीलिए तो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा ये कठिन है
1: हाँ
0: और थोड़ा सा लगता है कि अरे ये इतना भरकम सा कौन सा शब्द है। तो भाई आप जो है डरिए नहीं, घबराइए नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक ऐसी गोली दी जाए, यानी ऐसी दवा दी जाए जिसमें बीमारी का इलाज करने वाली कोई सक्रिय दवा ना हो, है ना
1: अच्छा
0: गुंजन दीदी।
1: हाँ
0: फिर भी वो व्यक्ति कुछ समय बाद कहता है, अब मुझे पहले

0: इसे बेहतर महसूस हो रहा है।
1: हो
0: हाँ, या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपको प्यार से कहता है, भाई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तो मन थोड़ा हल्का और अच्छा लगने लगता है।
1: वाकई में दीदी ऐसा
0: हाँ
1: होता है,
0: हाँ
1: पर ऐसा क्यों होता है?
0: भाई, ऐसा होता है बच्चों और गुंजन दीदी कि प्लेसिबो प्रभाव की कहानी है एक।
1: अच्छा।
0: हाँ, प्लेसिबो नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन व्यक्ति को जब इसका इलाज होने लगता है, उपचार मिलने की उम्मीद होने लगती है और विश्वास हो जाता है, तो उसके अनुभव में भी बदलाव महसूस होने लगता है।
1: अच्छा, यानी
0: हाँ
1: कि ध्यान रहे, इसका
0: हाँ
1: मतलब ये नहीं है कि केवल विश्वास से ही हर बीमारी ठीक हो सकती
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: बिल्कुल हाँ
1: यह मुख्य रूप से व्यक्ति के लक्षणों और अनुभव को प्रभावित कर सकता है,
0: बिल्कुल
1: जैसे दर्द या बेचैनी की अनुभूति। इसी
0: हाँ
1: बदलाव को कहा जाता है प्लेसिबो प्रभाव।
0: हाँ तो समझे ना आप सब, भाई प्लेसिबो का अर्थ है ऐसा उपचार या ऐसा पदार्थ, यानी ऐसी मेडिसिन जिसमें बीमारी पर सीधे असर करने वाला सक्रिय कोई दवा ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जो आपको परेशान कर दे और आपका इलाज भी हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: यानी कहने का पूरा मतलब यही है कि संतुष्टि होने वाली बात है।
1: हाँ, मतलब ऐसा प्यार या ऐसा स्नेह
0: हाँ,
1: जो दवा की तरह काम कर
0: काम
1: जाए,
0: कर
1: है ना?
0: जाता है बिल्कुल। अब कभी कभी ये भी होता है कि व्यक्ति जब विश्वास कर लेता है और कि उसे उपचार मिल रहा है, तो उसके दिमाग और शरीर की प्रतिक्रिया में बदलाव आना शुरू हो जाता
1: शुरू हो
0: है।
1: जाता है।
0: और
1: लेकिन फिर
0: हाँ
1: देखिए, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि
0: हाँ
1: इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विश्वास से ही हर बीमारी ठीक हो
0: बिल्कुल
1: जाती है।
0: बिल्कुल
1: अब आप बच्चों सोच रहे होंगे कि भाई प्लेसिबो काम कैसे करता है।
0: हाँ हाँ
1: देखो, हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से लगातार संदेशों का आदान
0: आदान
1: प्रदान
0: प्रदान करता
1: करते
0: है
1: रहते हैं, है ना?
0: बिल्कुल हाँ
1: जैसे हमें कहीं कुछ तकलीफ हुई तो तुरंत हमारा ब्रेन कहता है कि देखो
0: हाँ
1: वहां तुम्हें चींटी काटी या
0: हाँ
1: देखो वहां तुम्हें चोट लगी,
0: चोट लगी
1: है ना? तो जब किसी व्यक्ति को उम्मीद होती है कि उपचार से उसे राहत मिलेगी,
0: हाँ
1: तो मस्तिष्क उस उम्मीद के अनुसार कुछ ऐसी
0: हाँ
1: प्रतिक्रियाएं करता
0: करने मतलब
1: है
0: काम
1: ना?
0: करने लगता है कुछ,
1: हाँ।
0: है ना। और दूसरी देखो, एक मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताती हूँ गुंजन,
1: हाँ
0: अपनी
1: बिल्कुल।
0: दादी की। ठीक
1: अच्छा।
0: है,
1: हाँ।
0: हमारी दादी जो थी वो बीमार नहीं थी, एकदम अच्छी तरीके से स्वस्थ थी, लेकिन एज जानते हो अपने आप में एक बीमारी होती है।
1: जी।
0: तो हमेशा ये कहें कि मुझे भूख नहीं लगती, मेरा मन अच्छा नहीं रहता, और जबकि उनकी डाइट बहुत अच्छी थी,
1: खाती थी
0: खाती थी हाँ टाइम से, अपना
1: टाइमली। हाँ।
0: सुबह जो नाश्ता भी करती थी, दोपहर का खाना खाएं, फिर उसके बाद शाम की चाय लें, उसके बाद रात का खाना खाएं, और उसके साथ साथ दूध भी लेती थी। और एक उन्होंने जो है वो ताकत की एक जो ताकत का एक
1: मल्टीविटामिन्स
0: हाँ
1: जो।
0: विटामिन जो वाला
1: हाँ।
0: एक पाउडर पापा जी से मंगवा रखा था, उसको भी घोल के पीती, लेकिन उनको तब भी कमजोरी रहती थी
1: हाँ।
0: हमेशा, कि मतलब उनका ये रहता था ना, जैसे बच्चे होते
1: उनको
0: ना
1: हाँ
0: अटेंशन अपनी तरफ रखना
1: हाँ
0: चाहते हैं, वैसे बूढ़ों का भी यही होता है कि मेरी तरफ सबका अटेंशन
1: अटेंशन
0: रहे।
1: रहे।
0: और जबकि हम लोग सब लोग जो उनके जितने भी ग्रैंड चाइल्ड थे, सब उनके आगे पीछे घूमते ही रहते थे। बहुत बहुत प्यारी सी थी और मैं तो ज्यादा ही उनसे लगती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी छोटी बहन है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ
0: और उसने सोचा कि दादी का कोई ना कोई इलाज होना चाहिए। रोज जब
1: हाँ
0: पापा शाम को ऑफिस से लौट के आते हैं
1: हाँ
0: तो रोज इनको रहता कि भैया मेरी तबीयत खराब है, मेरी मेरा ये है। तो उसने क्या किया कि शरबत की एक बॉटल
1: अच्छा।
0: रखी थी और एक विटामिन का बॉटल था, तो खत्म हो चुकी थी उसमें से जो सिरप खत्म हो चुका था, तो उसने क्या किया वो शरबत को उसमें डाल दिया
1: डाल दिया।
0: और थोड़ा
1: अच्छा।
0: पानी मिला दिया, और मिला के पूरी बॉटल भर के ले गई। अब
1: हाँ।
0: देखो बचपना है, ले गई उनके पास और कहती है दादी ये देखिए मैं आपके लिए, पापा आपके लिए ये
1: लाए
0: लेके
1: सी
0: आए हैं।
1: अप्लाई
0: हाँ, और नियम से इस तो बड़ी खुश हो गई, बोली
1: अब मैं
0: अच्छा
1: ठीक हो
0: हाँ। तो
1: जाऊंगी।
0: बोली कि कैसे पीना है,
1: हाँ।
0: तो उसने कहा कि भाई सुबह 2 ढक्कन आप खाना खाने के बाद पीजिए और रात में खाना खाने के बाद। और सच बताएं गुंजन, उस दिन से उनका ये कहना बंद हो गया कि मेरी तबीयत खराब है,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जानते हो जब
1: एक
0: दिमाग संतुष्ट हो
1: साइकोलॉजिकल
0: गया,
1: हो जाता
0: हाँ
1: है कि अब
0: संतुष्ट
1: मैं
0: हो
1: ठीक
0: गया
1: हूं या मुझे मेरा
0: बिल्कुल
1: ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरा
0: हाँ
1: उपचार हो रहा
0: हाँ
1: है।
0: तो बच्चों आप एक छोटी छोटी बातों से ये समझिए कि आप जब कोई परेशानी में होते हैं और कोई अपना कह देता घबराओ नहीं, चिंता मत
1: तो
0: करो,
1: बहुत
0: है ना,
1: सुकून मिलता
0: बहुत
1: है।
0: सुकून मिलता
1: आधी
0: है।
1: बीमारी तो ऐसे ही चली जाती है
0: हाँ, क्योंकि जानते हो आप
1: ना?
0: भरोसा करने लगते हो, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है वो चीज़ डेवलप होने लगती है, उससे आप जो प्रभावित होने लगते हैं, तो यही होता है आपका प्लेसिबो
1: प्रभाव
0: प्रभाव।
1: बिल्कुल। देखिए ना, इसी तरह जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट कराने, तो जो हम डॉक्टर पे जो हमारा भरोसा रहता है उपचार को लेकर के, तो वो हमारा आधा तो उनके पास जाते हैं कि अब हम ठीक हो जाएंगे,
0: बिल्कुल
1: हमें
0: हाँ
1: डॉक्टर मिल गए हैं अच्छे,
0: हाँ
1: हमें दवाइयाँ अच्छी मिल जाएंगी,
0: हाँ हाँ
1: आधी बीमारी हमारी गई। तो
0: बिल्कुल
1: वाकई में जो एक मानसिक रूप से संबल दिया जाता है,
0: हाँ
1: बस उसी को कहते हैं प्लेसिबो प्रभाव, है ना?
0: बिल्कुल। तो

0: भाई प्लेसिबो प्रभाव ये भी कह रहा है कि हम लोगों को भी कुछ मानसिक संतुष्टि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी
1: हाँ भाई, गीत
0: चाहिए।
1: संगीत अपने आप में एक सुकून भरी दवा
0: सुकून होता
1: है
0: है,
1: ना।
0: तो बच्चों को भी सुनवा देते हैं क्योंकि उन्हें इंतजार होगा एक गीत का, है ना। तो चलो सुनते हैं।

0: तो भाई बहुत प्यारा गीत सुनवाया गुंजन, और फिर हम आ जाते हैं अपने ही टॉपिक पे, यानी
1: हाँ,
0: प्लेसिबल प्रभाव पे।
1: प्रभाव।
0: हाँ, तो भाई बच्चों देखो, प्लेसिबल प्रभाव हमें एक बहुत सुंदर बातचीत बताता है, वैज्ञानिक बात सिखाता है कि हमारे विचार, हमारी उम्मीद और हमारा शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। विज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि उम्मीद और सही चिकित्सा दोनों की अपनी अपनी जगह है ना।
1: जी
0: इसलिए अगर कभी आप बीमार हों तो सकारात्मक सोच जरूर रखें, सही सलाह और उपचार के लिए अपने मम्मी पापा और या अभिभावक या डॉक्टर की मदद जरूर ले लें,
1: जरूर लें,
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: और आज की विज्ञान पहेली क्या है गुंजन दीदी?
1: बिल्कुल, एक
0: हाँ
1: छोटी सी पहेली हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए,
0: हाँ हाँ
1: सुनना ध्यान से, है ना।
0: हाँ
1: मैं
0: हाँ
1: शरीर में दिखाई नहीं देता,
0: अच्छा
1: लेकिन शरीर के अनुभव को
0: हाँ
1: प्रभावित कर सकता हूँ।
0: हाँ हाँ
1: बताओ बताओ बताओ, फिर से बोलो।
0: फिर से
1: मैं
0: हाँ
1: शरीर में दिखाई नहीं देता,
0: हाँ

0: लेकिन शरीर के अनुभव को प्रभावित कर सकता हूँ। उम्मीद और विश्वास से मेरा संबंध है, तो बताओ मैं कौन हूँ?
1: बच्चों आप समझ रहे हैं ना, मैं तो समझ गई और मैं बताने जा रही हूँ। गुंजन अच्छा, दीदी जो अभी हम सब बात कर रहे हैं ना, प्लेसिबो प्रभाव की, और क्या, तो बच्चे भी समझ गए होंगे इस पहेली को, है ना?
0: हाँ, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, आज की विज्ञान की पोटली में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना प्लेसिबो प्रभाव क्या है, उम्मीद और मस्तिष्क का क्या संबंध है,
1: बिल्कुल,
0: और क्यों वैज्ञानिक शोध में प्लेसिबो इतना इम्पोर्टेंट होता है ना। तो हमेशा याद रखिए, उम्मीद जो अभी दीदी ने कहा ना कि सकारात्मक सोच, तो वही उम्मीद मन को सहारा देती है, विज्ञान हमें सही
1: रास्ता सिखाता
0: है
1: और समझदारी हमें सही फैसला लेना
0: सिखाती है।
1: तो इसी वैज्ञानिक सोच के साथ आप सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और विज्ञान से दोस्ती करते रहिए। भाई हमारा दिमाग और शरीर अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, उम्मीद, विश्वास और सकारात्मक वातावरण हमारे अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। विज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। तो बच्चों, अच्छी उम्मीद मन को सहारा दे सकती है, लेकिन सही इलाज का कोई
0: ऑप्शन नहीं है, है ना, विकल्प नहीं
1: तो
0: है।
1: भाई आप ये सारी बातें सोचिए, समझिए, आपके अंदर ये जानने की इच्छा होनी चाहिए कि हमारे विज्ञान ने हमको क्या क्या
0: दिया है,
1: है ना। और अपने बड़ों से पूछिए, अपने स्कूल में जाके अपने टीचर्स से डिस्कस कीजिए, और उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में जब आप बैठिए तो अपने फ्रेंड से भी ऐसी ही बातचीत कीजिए, तो देखिए कितनी जानकारी आपको मिल जाएगी।
0: देखिए, जितनी आपके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होगी ना, उतना ही अन्वेषण होंगे, अन्वेषण मतलब उतनी ही खोज होगी। अच्छा दीदी, ये जो जिज्ञासा है, जो कितने सारे सवाल पूछते हैं ना बच्चे, मैम ये क्या है, सर ये क्या है ना, तो कभी कभी तो हमें भी बच्चों से सीखने को मिल जाता है कि
1: बहुत
0: भाई ये तो हमने
1: मिलता
0: सोचा ही नहीं।
1: सही कह रही
0: हो, तो कभी कभी छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो जाता है ना। अच्छा, हमारी जितने सारी जो हमारे क्वेश्चन है, भाई मैं तो बहुत सवाल करती थी, तो मेरे जो टीचर थे ना, वो बहुत प्यार से मुझे समझाते थे। आज वो नहीं है, आज मैं इस लेवल पे जो भी हूँ, तो आज मैं उन्हीं की बदौलत
1: हूँ।
0: आज मेरे वही आदर्श है कि आज जितना मैं समझ पा रही हूँ और मैं जो दूसरों बच्चों को जो ज्ञान दे पा रही हूँ, कहीं ना कहीं उन्हीं से मैं प्रेरित हूँ।
1: बिल्कुल। अब भाई देखो, कहते ही हैं कि जीवन में रास्ते बहुत होते हैं,
0: जी
1: है ना, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। और गुरु भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही प्रकाश लेकर आते हैं। अब भाई गुरु चाहे किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे आप स्कूल के टाइम में टीचर हैं आपके, है ना, इस और उसके बाद फिर आप दूसरे से भी सीख सकते हो, आपके आसपास भी ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे आप छोटी छोटी बातों को सीख जाते हो, तो गुरु हर जगह मिल जाता है ना। तो भाई देखो, अब जब गुरु की ही बात ही हो रही है, तो हमारे जो है स्टूडियो में एक वार्ता है, और बच्चों के विशेष अनुरोध पे हम सब ने ये लिया है कि गुरु बिन ज्ञान न होत, और ये वार्ताकार हैं श्री कैलाश मिश्रा भैया, तो चलिए सुनते हैं।
2: प्यारे बच्चों, तुमने महान संत और हिंदी के कवि कबीर का नाम जरूर सुना होगा। बाबा कबीर का एक बहुत चर्चित दोहा है, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोबिंद दियो बताए। बच्चों कबीर कहते हैं कि यदि भगवान और गुरु दोनों एक साथ मिल जाएं, तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। कबीर का मानना है कि गुरु का महत्व मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक होता है। बच्चों जो हमें ज्ञान दे, सिखाए, शिक्षित करे, वो हमारा गुरु है। तुमने इतिहास में जाने कितने महापुरुषों के नाम पढ़े सुने होंगे, जिनके योग्य गुरुओं ने उन्हें इस तरह शिक्षित किया कि वे साधारण से असाधारण हो गए। तुम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानते ही हो, उन्हें सम्राट बनाने के पीछे उनके गुरु चाणक्य का हाथ था। अर्जुन और द्रोणाचार्य के विषय में भला कौन नहीं जानता? द्रोणाचार्य न होते बच्चों, तो तुम ही बताओ अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन बनाता? स्वामी विवेकानंद की विद्वत्ता की धाक पूरी दुनिया मानती है, तुम्हें पता ही है। नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद बनाने वाले उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ही थे। शिवाजी महाराज अपने जीवन का सारा श्रेय अपने समर्थ गुरु रामदास को देते थे। बच्चों, महान गुरुओं और उनके महान शिष्यों की कहानियों से हमारे इतिहास पुराण भरे हुए हैं। बच्चों, गर्मियों में तुमने मिट्टी के घड़े या सुराही का पानी जरूर पिया होगा। तुम्हें पता है, इन्हें बनाने वाला कारीगर जब कच्ची मिट्टी से सांचे गढ़ता है, तो एक हाथ घड़े के अंदर डालकर भीतर से सहारा देते हुए बाहर से

लकड़ी के हथौड़े की चोट मारता है और इस तरह उसे एक खूबसूरत आकर्षक रूप देता है। गुरु का काम भी ठीक इसी कुंभकार की तरह का होता है। गुरु को अपने शिष्य के गुणों को निखारने के लिए उसके साथ कठोरता का व्यवहार भी करना पड़ता है। कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ संभार दे बाहर बाहे चोट। बच्चों, जिस तरह एक पिता अपनी संतान के हित की चिंता करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास करता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को शिष्य का आध्यात्मिक पिता माना गया है। शायद तुम्हें पता हो, द्रोणाचार्य के अपने सगे बेटे अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा अपने पिता से इस बात को लेकर हमेशा थोड़ा नाराज रहे कि उन्होंने अपना श्रेष्ठतम ज्ञान अर्जुन को दिया, अपने खुद के बेटे को नहीं। बच्चों, ये सच बात है। गुरु द्रोण ने जो विद्या अर्जुन को सिखाई वो अश्वत्थामा को नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अर्जुन अश्वत्थामा से अधिक योग्य थे। सच्चा गुरु काबिलियत देखता है, संबंध नहीं। बच्चों, तुम अगर अर्जुन को जानते हो, गुरु द्रोण को जानते हो, तो एकलव्य का नाम भी तुमने जरूर सुना होगा। जब कौरवों और पांडवों की उम्र पढ़ने लायक हो गई तो इनके दादा भीष्म ने इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए अपने जमाने के सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य को अपने राज्य हस्तिनापुर में बुलवाया और उनसे सभी राजकुमारों का गुरु भार ग्रहण करने की प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने सभी भाइयों को शिक्षा देनी प्रारंभ की। इन सभी में अर्जुन सबसे अधिक योग्य थे। वे गुरु की बताई हर एक बात पूरे मनोयोग से सुनते थे और उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। धीरे धीरे अर्जुन गुरु द्रोण को इतने प्रिय हो गए कि एक दिन उन्होंने अर्जुन से वादा किया कि वो उसको दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज बनाएंगे। बच्चों, इसी बीच हस्तिनापुर के आसपास के ही किसी गांव में एकलव्य नाम का एक गरीब लड़का भी रहता था। उसे भी तीरंदाजी सीखने का बहुत अधिक शौक था। उसने जब लोगों से द्रोणाचार्य के विषय में सुना तो एक दिन वह भी द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि उसे भी धनुर्विद्या का ज्ञान दें, उसको भी अपना शिष्य बना लें। परंतु बच्चों, द्रोणाचार्य तो राजा के बच्चों के गुरु बन चुके थे। उस जमाने का यह नियम था कि गुरु राजा के राज्य में रहकर दूसरे किसी को भी अपना शिष्य नहीं बना सकता था। गुरु द्रोण के पास से वापस आ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना, उनकी मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और रोज रोज उसी गुरु मूर्ति को प्रणाम कर उन्हीं के सामने धनुष बाण लेकर अभ्यास करने लगा। और बच्चों, तुम्हें यह जानकर शायद अचंभा होगा कि गुरु की उसी माटी की मूर्ति के सामने अभ्यास करके एकलव्य बहुत कुशल धनुर्धर बना, अर्जुन से भी अधिक कुशल, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर। बच्चों, ये है गुरु की महिमा। गुरु भले माटी का हो, किंतु अपने शिष्य को छू कर सोना बना देता है। मनुष्य की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है। माँ बच्चे को केवल जन्म ही नहीं देती, बल्कि उसे इस दुनिया में रहने के लायक भी बनाती है। तुम्हें यदि अपने छुटपन की बातें याद होंगी तो यह भी याद होगा कि किस तरह माँ ने तुम्हें उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना पीना सिखाया था। जिस तरह बचपन में माँ हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, हमारी जरूरत के वक्त हमेशा हमारे पास, हमारे साथ होती है, ठीक किसी तरह बड़े हो जाने पर हमारे गुरु हमें राह दिखाते हैं, हमारी कठिनाइयों को हल करते हैं, हमारी कमियों को दूर करते हैं और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। बच्चों, जिस प्रकार कोई संगतराश बेडौल अनाकर्षक पत्थर को काट छांट कर एक खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है, उसी प्रकार गुरु भी हमारे अंदर की सारी कमियों को निकाल कर हमें महत्वपूर्ण और चारित्रिक रूप से सुंदर बना देते हैं। बच्चों, हम जिस किसी से भी कुछ सीखते हैं वो हमारा गुरु है। हम सूरज से समय का अनुशासन सीखते हैं, धरती हमें सहना सिखाती है, कोयल से हम मीठा बोलना सीखते हैं। लघुकाय प्राणी चींटी को तुम कभी ध्यान से देखो, निरंतर अथक परिश्रम करके कभी न थकने का गुरु मंत्र चींटी हमें देती है, तो ये भी हमारी गुरु ठहरी। बादल हमें दूसरों के लिए अपना सब कुछ लुटा देने के सुख को महसूस कराते हैं। नदियां अपने कलरों से मानो हमें यह सिखाते हुए चलती है कि जीवन चलने का नाम। प्रकृति के ये सारे तत्व हमारे गुरु हैं। प्यारे बच्चों, जीवन के विकास के लिए सिर्फ ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है। अब देखो ना, आजकल दुनिया भर की तमाम जानकारियां, ढेरों ढेर ज्ञान इंटरनेट के माध्यम से तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। संभव है तुम्हें लगे कि अब तो सारा ज्ञान हम यहीं से पा लेंगे, तो भला गुरु की क्या जरूरत। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल मत सोचना।
ऐसे में तो गुरु की जरूरत और उसकी महत्ता और बढ़ जाती है।

0: इस बिखरे हुए ज्ञान के ढेर में सब मोती ही मोती नहीं, कांच के टुकड़े भी शामिल हैं। गुरु हमें मोती और कांच में फर्क करने का विवेक देते हैं। गुरु हमें सही और गलत को पहचानने की समझ भर नहीं देते, बल्कि उस सही रास्ते में खुद चलकर हमारे लिए प्रेरणा भी बनते हैं। सच्चा ज्ञान तो बच्चों वो है जो हमारे चरित्र में उतर कर घुल जाए, जो हमारे व्यवहार में दिखे। अगर हमारा ज्ञान, हमारी विद्या हमारे आचरण में नहीं दिखते तो वो ज्ञान सिर्फ एक बोझ है। गुरु हमें सिखाते हैं कि ज्ञान की गठरी को सिर पर लाद कर नहीं चलना, उसे बांटते चलना है, दीप से दीप जलाते चलना है। सच्चा और समर्थ गुरु हमारी माटी को मूर्त के रूप में ढालकर हमें कुछ का कुछ बना देता है। विद्यार्थी में अगर सीखने की ललक हो तो गुरु वरदराज को पाणिन बना सकते हैं। अब तुम सोचोगे, ये वरदराज और पाणिनी कौन है? संक्षेप में तुम्हें यह किस्सा सुनाता हूँ। पाणिनी संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान आचार्य हैं। संस्कृत भाषा के व्याकरण को भली भांति व्यवस्थित करने का श्रेय पाणिनी को जाता है। तुम ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाओगे बच्चों कि इन्हीं पाणिनी का नाम बचपन में वरदराज था। वरद का अर्थ होता है बैल। तुम्हें पता ही होगा, बैल जड़ और मूर्ख मनुष्य को कहा जाता है। पाणिनी बचपन में इतने जड़मति और मंद बुद्धि थे कि गांव वाले उन्हें वरदराज यानी मूर्खों का राजा कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। वरदराज के पिता ने तमाम कोशिशें की कि उनका बेटा कुछ सीख सके, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। वरदराज की मूर्खता से दुखी और परेशान उनके पिता ने एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया। वरदराज बेसहारा यहां वहां भटकने लगे। तभी संयोग से उनकी भेंट गुरु उपवर्ष से हो जाती है। वरदराज की दीनहीन दशा से उपवर्ष को बहुत करुणा आती है उन पर, और वो वरदराज को अपने आश्रम में ले जाते हैं और उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। बाद की कहानी तुम्हें पता ही है कि यही वरदराज दुनिया के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य पाणिनी बनते हैं। बच्चों, शिष्य के समर्पण को अगर गुरु का सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कोई भी वरदराज पाणिनी हो सकता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें तुम मिसाइल मैन के नाम से जानते हो, पूरी दुनिया जिनकी प्रतिभा का लोहा मानती है, वही अब्दुल कलाम अपनी सारी सफलताओं का क्रेडिट अपने गुरु, अपने साइंस टीचर श्री शिव सुब्रमण्यम को देते हैं। अब्दुल कलाम भावुकता और कृतज्ञता के साथ अपने संस्मरणों में अपने गुरु को याद करते हैं। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि उनके गुरु श्री सुब्रमण्यम उनसे कहा करते थे कि वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। जब भी तुम दुनिया की बुरी चीजों का सामना करने के लिए खड़े हो जाओगे तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी रुकावटें तुम्हारे रास्ते पर होंगी। तुम्हें उन रुकावटों से जूझना होगा। गुरु हमें ज्ञान ही नहीं देता, गुरु हमें जूझने की ताकत भी देता है। गुरु हमें वो शक्ति देता है जिससे हम ये हिम्मत कर सकें कि किसी से डरना नहीं है। अब तक तुम समझ चुके होगे बच्चों कि शायद गुरु की इसी महिमा के कारण ही हमारे ऋषियों ने कहा है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसी बात को और साधारण शब्दों में समझाते हुए महात्मा कबीर कहते हैं कि हमारा गुरु इतना महान है कि उसकी महिमा को, उसके गुणों को, उसके किए गए उपकार को हम किसी भी भांति शब्दों में कहकर प्रकट नहीं कर सकते। कबीर का एक चर्चित दोहा तुम्हें सुनाकर अपनी बात खत्म करूं। सब समुद्र की मसी करो, लेखन सब बनराय, सब धरती कागद करो, गुरु गुण लिखा न जाए।
1: तो भाई, सबने सुना कि हमारे जो गुरु होते हैं वो हमारे बहुत बड़े वेलविशर होते हैं और हमें बहुत अच्छी राह बताते हैं, नई सीख दिखाते हैं। तो हर बच्चों को अपने बड़ों का, जिस चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप दूसरे की जो है इज्जत करेंगे, आप दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी वैसा ही मिलेगा, है ना बच्चों? तो भाई देखो, इतनी अच्छी वार्ता थी कि बिन गुरु ज्ञान ना हो था, और इस वार्ताकार थे कैलाश मिश्र भैया। तो आपके विशेष अनुरोध पे हमने ये कार्यक्रम आपको सुनवाया। और अब बात है कि जब जीवन में कुछ कर गुजरने की बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं गुंजन दीदी, कि हम उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत से लोग जो डर जाते हैं तो फिर वो पीछे हटने लगते हैं, और वही जो लाइफ की आपकी वीकनेस शो करने लगती है।

0: है कि आप जो है अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आप जीवन को अच्छी तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। हमेशा आप अपने मन को एक अंदर से इतना स्ट्रांग
1: स्ट्रांग
0: रखिए,
1: बनाइए,
0: स्ट्रांग बनाइए कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो,
1: पार कर
0: आप
1: लीजिए।
0: उसको पार कर सकते हैं। और ऐसे ही कार्यक्रम में भी है, बहुत सारी बातें हम बच्चों आपको बताते हैं, हमेशा ही कहते हैं कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा
1: बना
0: बना
1: रहना
0: रहना
1: चाहिए।
0: चाहिए, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। और इतनी सारी बातें हो गई, और हमारी एक जो नए मेहमान हमारे बीच में बैठी हुई हैं वो बहुत इंतज़ार कर रही हैं अपनी बारी का, बहुत देर से सोच रही, कह रही मेरी बारी नहीं आ रही,
1: नहीं
0: मेरी
1: आ
0: बारी
1: रही।
0: नहीं आ रही। तो भाई ये नन्हे
1: हाँ
0: जो मेहमान से बातचीत कर ली जाए गुंजन दीदी,
1: हाँ
0: तो पूछ
1: बिल्कुल।
0: लीजिए इनका क्या नाम है।
1: तो
0: हाँ,
1: बोलो प्यारी गुड़िया, आपका नाम क्या है?
0: आपका नाम क्या
2: मेरा
0: है?
2: नाम दीक्षिता मिश्रा है।
0: क्या नाम है?
2: दीक्षिता मिश्रा,
0: दिशिता मिश्रा। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो आप?
2: थर्ड सी।
1: थर्ड
0: थर्ड
1: सी।
0: सी में पढ़ते हो। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है दिशिता?
2: डांस करना, म्यूजिक प्ले करना।
0: अच्छा, डांस करना और म्यूजिक प्ले करना। ओके, गाना नहीं पसंद है ना? अच्छा ठीक है भाई। और आपको स्टडी पसंद है?
2: थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा। तो भाई थोड़ा थोड़ा से काम थोड़ी ना बनेगा, आपको ज्यादा ज्यादा मन लगाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में, तभी तो आप कुछ कर पाओगे, है ना? एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है ना हर चीज के लिए। तो अच्छा ये बताओ कि आपको थोड़ा थोड़ा पसंद है, थोड़ा थोड़ा में कौन सा सब्जेक्ट पसंद है?
2: मैथ्स।
0: मैथ्स। देखिए
1: मैं ये तो बड़ा बड़ा हो गया,
0: ये
1: थोड़ा
0: तो
1: थोड़ा
0: बड़ा
1: कहाँ हुआ।
0: चलो भाई बहुत अच्छी बात है, मैथ्स आपको पसंद है, तो आप स्टडी में और भी अच्छा हार्ड वर्क करिए और मेहनत कीजिए। आज आप अपने नए साथी के लिए क्या लेकर आए हैं, क्या सुनाएंगे आज हमको आप?
2: शिव कैलाश के वासी।
0: शिव कैलाश के वासी भाई, तो इनके पास कैशियो है और वो इस पे प्ले करेंगे, तो कुछ गाओगी कि बस ऐसे ही प्ले करोगे? आप
2: गाऊंगा।
0: गा के करोगे? ओके चलो।

0: बहुत सुंदर,
1: बहुत
0: बहुत सुंदर
1: सुंदर।
0: दिशिता, बहुत प्यारा
1: हाँ
0: भजन था।
1: तो भाई
0: थैंक यू।
1: दिशिता ने इतना अच्छा प्ले किया, तो दिशिता को एक सॉन्ग भी तो सुनवाना बनता है कि नहीं बनता है?
0: क्यों नहीं,
1: तो चलो सुनवा देते हैं।

0: अब तो गीत हम लोगों ने सुन लिया है ना, अब क्या किया जाए
1: गुंजन? अरे क्या किया जाए, अभी हमारी बिटिया रानी बैठी है दिशिता, है ना,
0: तो उनसे फिर सुन लिया जाए क्या कुछ?
1: बिल्कुल, अभी तो मन कहाँ भरा है।
0: तो चलो दिशिता, अब क्या सुना रहे हो हम सबको?
2: किसी की मुस्कुराहटों पे।
0: अच्छा, किसी की मुस्कुराहटों पे, तो चलो शुरू हो जाओ।

0: जी ना, इसी
1: का नाम है। बहुत अच्छा प्ले किया दिशता ने। और दिशता खूब और प्रैक्टिस करो, एकदम फ्लो में बजाओ, ऐसी हम सबकी क्या है आशा है और शुभकामना भी है। ठीक है
2: का?
1: और भाई अब तो देखो सेगमेंट हमारा शब्द ज्ञान का है
0: जी,
1: है ना। तो गुंजन शब्द ज्ञान है हिंदी में अन्य मनस्क, है ना। और अन्य मनस्क का अर्थ होता है बिना मन का कोई काम करना, जबरदस्ती कोई प्रेशराइज करके काम करवाए। मन नहीं है फिर भी
0: मम्मा ने कहा है पढ़ना है, और मन नहीं है लेकिन किताब खोले
1: तो बिना मन के काम करना है।
0: बिल्कुल भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए काम की सफलता तो आधी उसी पे निर्भर हो जाती है जब आप मन से उसमें लग जाते हैं, है ना। तो कोई भी कार्य करिए मन से करिए, नहीं मन है थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, लेकिन करिए पूरे ध्यान से।
1: और दूसरा क्या है? अब
0: दूसरा है ऑब्लिगेटरी।
1: अच्छा,
0: इसका मतलब होता है कि आवश्यक करना ही पड़ेगा, यानी कि एग्जाम्स आ गए हैं अब तो आपको मन लगाना ही पड़ेगा।
1: अब ये नहीं चलेगा कि मन नहीं लग रहा है,
0: कोई ब्रेक नहीं लेना है। अगर आपको एक सीढ़ी एक पायदान ऊपर चढ़ना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो आपको मन लगाना पड़ेगा।
1: तो भाई देखो शब्द ज्ञान भी हो गया और हमारे कार्यक्रम में इतनी अच्छी बातचीत भी हो गई, है ना। हमारे बीच में जो नए साथी आए थे उन्होंने भी कितना अच्छा प्ले किया उन्होंने। तो अब जो है और भी कुछ बनता है,
0: जैसे कि
1: एक प्यारा सा गीत बनता है कि नहीं,
0: मैं समझ गई थी।
1: तो चलो सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो भाई प्यारा सा गीत भी हो गया और हमारी घड़ी कह रही है हमें घर चलने के लिए, है ना। तो अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।

0: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप 1 के मुकाबले में भारत ने

0: As He Chi Thing and Ren Xiang Hu in the final today at approximately 1:50 p.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: प्रस्तुत है जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम हम दिल्ली से रिले करेंगे रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में यानी 12:15 पर सुनिएगा पंडित अनोखेलाल का तबला वादन। 12:30 फिल्म संगीत, 1:15 पर आपके अनुरोध पर तैयार किया गया कार्यक्रम हेलो अनुरोध प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। 2:30 का समय होगा लोकगीत कार्यक्रम का, जिसमें आज कलाकार होंगी बीना रानी श्रीवास्तव, राजा राम यादव और साथी, और सूर्यप्रकाश पटेल और साथी। सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम करेंगे बाल गोपाल कार्यक्रम से शाम 5:00, जिसमें आज का आकर्षण होगा समर प्रताप की कहानी। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह 5:15 पर होगा। 6:30 ग्रामीण भाई सुनेंगे कार्यक्रम पंचायत घर, जिसमें लोकभाषा कविता पाठ का प्रसारण किया जाएगा। साथ ही आनंद लीजिएगा विकास श्रीवास्तव के गाए लोकगीतों का। 7:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में रमा सेन की गाई गजलें हम आपको सुनवाएंगे। चिट्ठी आई है ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:00, प्रतिभागी नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। रात 8:15 पर चित्रपट संगीत, 8:30 आज इतवार है ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे सूरज कपूर की लिखी झलकी हाय स्वीटी हाय डार्लिंग, प्रस्तुति विनोद रस्तोगी की होगी। इसके अलावा रात 9:30 फिल्मी गीतों पर आधारित गजलों का कार्यक्रम कहकशां प्रसारित किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बहुत

0: ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको आज सुनवाने जा रहे हैं पंडित अनोखे लाल का 3 ताल में तबला वादन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आपने सुना पंडित अनोखे लाल का तीन ताल में तबला वादन। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इसमें आज हम आपको सुना रहे हैं फिल्म फकीरा का गाना, जिसके बोल लिखे हैं रविंद्र जैन ने और संगीत भी रविंद्र जैन का है। आवाज़ें हैं, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

अब सुनते हैं फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज़ है किशोर कुमार की।

लीजिए अब सुनते हैं सेहरा फिल्म का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है रामलाल ने और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

लीजिए अब सुनते हैं फिल्म दादा का गाना, जिसमें बोल लिखे हैं कुलवंत जैन ने, आवाज़ है यशुदास की और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

0: लीजिए अब सुनते हैं यादगार फिल्म का गाना। बोल लिखे हैं इंदीवर ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और आवाज है लता मंगेशकर की।
1: चला उस

मोहम्मद रफ़ीकी, गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज़ें नंदा की भी हैं। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है।

0: तूफान सॉर्डेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर समंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Lalema Aneja Dang. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at the Delhi University yesterday evening.
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: Mr. Modi said, India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said, India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said, the world is watching India become the fastest growing major economy. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma has been appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral D.K. Joshi, retired, who took over as the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands on October 8, 2017. Dr. Sharma, 62, earlier served as Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. His Rajya Sabha term was to end on November the 25th. A Rashtrapati Bhavan communique issued late last night said that Dr. Sharma's appointment will come into effect from the date he assumes charge of his office. Well, more than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS Summit on the sidelines of BRICS Summit in New Delhi on 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. As BRICS Chair 2026, India will be hosting the 18th BRICS summit on September 12th and 13th at Bharat Mandapam in New Delhi. In Nepal, the death toll from the devastating flash flood stands at 1,340.

0: While around 5,000 people, including nearly 590 foreign nationals, remain missing. More than 13,100 people have been rescued so far. A 60-year-old woman was rescued alive after being trapped under mud and debris for 10 days in Nuwakot district. Authorities are facing difficulties in identifying the deceased, with DNA testing being used in several cases. The naval force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed that it carried out strikes against three oil tankers traveling through what it described as an unauthorized route in the strategic Strait of Hormuz, as well as three vessels allegedly affiliated with the United States. The development came after the United States reportedly struck three Iranian oil tankers in the Persian Gulf and the Sea of Oman. In Egypt, television presenter Sara Khalifa and 11 others have been sentenced to death by hanging after being convicted of drug trafficking. A court found them guilty of running a criminal gang that imported raw materials to manufacture and sell illegal drugs while also possessing unlawful firearms. Khalifa, who had hosted a crime-focused TV show called Mission Impossible, has denied all allegations and claimed she only saw the narcotics when authorities forced her to pose for photos with them. In badminton, India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty have entered the China Masters final for the third time. The world number 5 pair defeated Malaysia's Nur Muhammad Azrin Ayub and Tan Wee Keong 21-15, 18-21, 21-11 in the semi-final. And that's the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने आज चित्रकूट पहुंचे। वजीर आला ने सबसे पहले सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर रामघाट हल्के का मुआयना कर मंदाकिनी नदी के सैलाब से हुए तबाही का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अफसरान से राहत और रसानी के कामों की जानकारी हासिल की। वजीर आला सैलाब से मुतासर कुनबों से मजाकिरात भी करेंगे। इसके बाद राहत कैंपों में मुतासरा कुनबों से मुलाकात कर रामायण मेला अहाते में राहती अशिया तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सैलाब से मुतासर तकरीबन 800 कुनबों को राहत अशिया भी दिए जाने के साथ ही सैलाब से बेघर होने वाले कुनबों को रिहाइश के लिए जमीन अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट और राहती रकम भी मुहैया की जाएगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार जजायर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वो रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा इस वक्त उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के रुकन हैं। वो रियासत के नायब वजीर आला भी रह चुके हैं। उनकी राज्यसभा की मुद्दत 25 नवम्बर को खत्म होने वाली थी। राष्ट्रपति भवन की रिलीज में कहा गया है कि डॉक्टर शर्मा की तकर्री उनके चार्ज संभालने की तारीख से होगी। आकाशवाणी के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी पूरी के साथ निभाएंगे।
2: मैं समझता हूँ कि ये एक हर जिम्मेदारी बड़ी होती है। अब जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है। हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम।
1: उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग एग्जामिनेशन 2025 आज दो शिफ्टों में मुनक़िद हो रहा है। ये इम्तिहान रियासत के 6 जिला में हो रहा है। इम्तिहान के लिए प्रयागराज में 25, मेरठ में 33, कानपुर में 28 और गोरखपुर में 44 मराकज कायम किए गए हैं। लखनऊ के 52 मराकज पर हो रहे इम्तिहान में 22,996 उम्मीदवार शरीक हो रहे हैं। इम्तिहान को मुनसिफाना और पुरमन तरीके से मुनक़िद करने के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ पुलिस ने इम्तिहान को मुनसिफाना और पुरमन तरीके से मुनक़िद करने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। इम्तिहान के दौरान दोनों शिफ्टों में कुल 520 पुलिस एहलकार तैनात हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार के मुताबिक ये इम्तिहान सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक पहली शिफ्ट में लिया गया। अब दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। شدید بارش اور بیراجوں سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے ریاست کے 24 اضلاع اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں. ریاست میں کئی دریا اب بھی بہ رہے ہیں. بدایوں، غازی پور اور بلیا میں گنگا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے. فاروق آباد میں گنگا خطرے کے نشان کے قریب ہے. لکھیم پور کھیری اور بارہ بنکی میں دریائے شاردا اور ایودھیا اور ترتی پار بلیا میں دریائے گھاگھرا بھی خطرے کے نشان کے

0: कमजोर कर चुकी है। चित्रकूट के राजापुर में दरियाए जमुना के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। वजीर आला आज चित्रकूट का दौरे पर हैं ताकि मंदाकिनी नदी की वजह से सैलाब का जायजा ले सकें। वहां वो सैलाब से मुतासिर लोगों से बातचीत करेंगे और जरूरतमंद खानदानों में इमदादी सामान तकसीम करेंगे। इस दौरान वजीर आला ने सैलाब रिलीफ कैंप का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और इमदादी सामान तकसीम किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें इस आफत में मुतासरीन के साथ खड़ी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया तमाम हसास इलाकों में इमदादी काम जारी रखे हुए हैं। बारिश और सैलाब से होने वाले जानी नुकसान, मवेशियों और मकानात के नुकसान का तखमीना लगाकर मुआवजा तकसीम किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए। यहाँ पर बचाव के लिए 48 नाव एनडीआरएफ पीएसी और जल पुलिस की टीम भी 24 घंटे उन क्षेत्रों में सक्रिय की गई है। बाढ़ आएगी तो बीमारी भी आएगी, उसके बचाव के लिए मेडिकल के शिविर लगाए जा रहे हैं। जिनके पास आयुष्मान के कार्ड नहीं है वहाँ

0: श्रोता सुन रहे हैं हेलो अनुरोध कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और इस कार्यक्रम में अपने फरमाइशी गानों को सुनने के लिए हमारे पास है नंबर, इनको नोट कर लीजिए। पहला नंबर है 0532-242-3649, 0532-242-3649, और दूसरा नंबर है 0532-297-0462। नंबर एक बार फिर से 0532-297-0462। और इस कार्यक्रम में आपको अगर रिकॉर्डिंग करानी हो तो समय है 10:30 बजे से 11 बजे तक, मंगलवार से शनिवार तक। तो चलते हैं अपने कॉलर की तरफ। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पटेकर, पोस्ट ग्राम जल मिजा, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के लोग।
0: जी गुलाब जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: एक है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
0: अच्छा जी, ये तो पति पत्नी और वो फिल्म का गाना है, संजीव कुमार और विद्या सिन्हा के ऊपर फिल्म आया गया था
1: जी।
0: तो आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए हम सुनवाते हैं ये गीत।
2: ओ ठंडे ठंडे पानी।

0: इस समय श्रोता सुन रहे हैं हेलो अनुरोध कार्यक्रम। ये कार्यक्रम मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन सकते हैं। समय रहता है प्रत्येक रविवार दिन में 1:15। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: हाँ नमस्ते मैडम, संगम नगरी प्रयागराज हौलिया झूसी से महेंद्र नाथ कुशवाहा बात कर रहे हैं।
0: जी महेंद्र जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: प्रेम रोग का गाना सुनना मैडम, मेरी किस्मत में तू नहीं है शायद मैं रखे तेरा इंतजार करता हूँ।
0: बहुत सुपर हिट फिल्म रही, गाना भी बहुत हिट था प्रेम रोग फिल्म का जिसकी आपने फरमाइश की है, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी,
1: मेरा नाम नितेश आर्या है।
0: जी नितेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हाँ बहुत ही अच्छा, आप आवाज सुनते तो और भी अच्छे हो जाते।
0: अच्छा अच्छा, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सुनकरा में आलू
0: जी,
1: अब गाने बोने दोस्त दोस्ते हो जाते।
0: तो चलिए आपकी पसंद का आरजू फिल्म का ये गीत। हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
1: जी जी, आकाश भाई जो फोन इन कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम से बहुत लोगों से मिलने जुलने भी हो जाते हैं इस माध्यम से।
0: जी जी,
1: जैसे रजन प्रतापगढ़ से और हंडिया प्रयागराज से प्रेम चांदी।
0: जी जी
1: जी, ये सब बहुत अच्छे श्रोता आते हैं और जब के मतलब बोल रहे थे बहुत अच्छा लगता है सुनकर सभी लोगों से जब दिखा दे।
0: जी बिल्कुल, आपकी देखिए एक बिना मिले ही एक दोस्ती हो गई, आप लोगों की मित्रता हो गई।
1: जी जी, आकाश बड़ी जो
0: जी हाँ, श्रोताओं से जुड़ने का और श्रोताओं को जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा मंच है ये। तो आइए सुनते हैं आरजू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: प्रभाकर तिवारी, रसूलपुर गुलरहा, रसूली बाजार, पोस्ट रामनगर, भोजपुर, जनपद प्रतापगढ़ से प्रभाकर तिवारी बोल रहे हैं मैडम
0: जी। प्रभाकर जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैडम जी, फिल्म का नाम है मेला
0: जी।
1: गीत के बोल है, मेला दिलों को आता है एक पास।
0: टाइटल सॉन्ग सुना है आपने?
1: हाँ मैडम जी, हमारे यहाँ रानीगंज अजगरा का मेला लगने वाला है।
0: अच्छा अच्छा, इसीलिए आप ये गीत सुनना
1: चाहते हैं। हाँ मैडम जी, ऋषि पंचमी को है, 15 तारीख को।
0: अच्छा अच्छा,
1: बहुत बड़ा मेला लगता है रानीगंज अजगरा में।
0: अच्छा जी, तो चलिए प्रभाकर जी, आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं मेला फिल्म का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर
0: जी। विकास जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम जी शोले पिक्चर का गाना है
0: जी,
1: ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे।
0: अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के ऊपर फिल्म आया हुआ ये गाना, बहुत ही सुपर हिट फिल्म रही है शोले
1: जी। और हमारे कुछ श्रोता है मैडम जी।
0: जी जी,
1: ये राजेंद्र जी है प्रतापगढ़ कुंडा से, और प्रेमचंद यादव जी हैं हंडिया प्रयागराज, ये सब बहुत अच्छे श्रोता है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही हमें याद किया था
0: जी जी,
1: इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, और ये गाना सारे श्रोताओं के लिए डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है, विकास जी की तरफ से सभी श्रोताओं के लिए शोले फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: आदरणीय मधु दीदी, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा से। दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बलमा।
0: बलमा जी, इसका कौन सा गीत है?
1: इसका शीर्षक गीत सुनना चाहता हूँ
0: जी। तो आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको अपने मित्रों के नाम लेने हो तो ले लीजिए
1: जी। हमें बहुत याद करते हैं श्री राजेंद्र कुमार जी, मैं उन्हें इस गीत में समर्पित करता हूँ। और राकेश कुमार जी हैं, हमारी भतीजी नीलम प्रजापति हैं, कौशल सिंह हैं, श्री जी हैं, और साथ में लोकेन वर्मा, राजू यादव, इन सभी दोस्तों के साथ में आकाशवाणी प्रयागराज सुन रहे सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: तो आपको सुनवा रहे हैं बलमा फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे हेलो अनुरोध, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे
2: गुड आफ्टरनून। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम लालिमा अनेजा डैंग विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's economic strength and policy dynamism is driving nation towards Vikasit Bharat, calls upon Indian companies to aspire to lead the world. India backs UN resolution on equal area world map, reiterates Jammu and Kashmir and Ladakh must be depicted as per Indian official map as sovereignty and territorial integrity are non-negotiable. 10 people dead, several hospitalized after consuming suspected spurious liquor in Sagar district of Madhya Pradesh. Iran strikes 3 US tankers and vessels in Strait of Hormuz. Flood situation worsens in Bihar and Uttar Pradesh after heavy rainfall. IMD forecasts heavy rain over Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. In China, Masters Badminton, Indian pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Chinese pair in title clash this afternoon. Prime Minister Narendra Modi has called upon Indians to dream big and lead from the front, saying that if Indian talent can lead the world's top companies, Indian enterprises can also lead the world. Mr. Modi made these remarks while addressing the gathering at the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, in New Delhi. Encouraging the ambitious spirit of the 21st century youth, the Prime Minister celebrated their drive to build unicorns, innovate in drone technology and create cutting-edge AI solutions.
3: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
2: The Prime Minister also highlighted that the world now praises India's policy dynamism and its status as the fastest growing major economy. He asserted that achieving a 7.8% quarterly growth amid the West Asia war and global trade hurdles demonstrates India's intrinsic capability.
3: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
2: The Prime Minister also celebrated the success of the Make in India initiative in transforming the nation from a massive importer to a leading exporter. During his address, he shared that smartphone exports now exceed 2.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर

0: वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
1: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
3: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार

0: बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
3: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष फरहतनाज।
1: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
4: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के 5वें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजनियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक

0: नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। लोकगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनेंगे बीना रानी श्रीवास्तव के स्वर में देवी गीत।

लीजिए लोकगीत कार्यक्रम में अब सुनते हैं पचरा लोकगीत मैया की मदरिया। कलाकार हैं राजा राम यादव और साथी।

लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सभा के आरंभ में ग्रामीण अंचल के बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: लड़कनों जय हिंद। देखा हो चुन्नू मुन्नू भाई, आज इतवार का दिन बाटे और हम कहे चली चुन्नू मुन्नू से मिल आई और कुछ ऐसन बातें हैं जोन तुम्हें बताए जरूरी बा। देखा हो जब तू भाई मेला या बाजारे जात है न तो तुम्हें दुकान ऐसन मिलत थी कि जहाँ भाई समोसा कचौड़ी पकौड़ी और तमाम फास्ट फूड भैया ठेलन पे दिखाई जात है। तो चुन्नू मुन्नू को भाई जीव ललचियाई जात है कि ये बहुत बढ़िया चीज़ हो, ये का खावा जाए। तो देखा हम ये बतावत है कि वो

तोहरे सेहत बदे बहुत खतरनाक होत है, वो कहीं कहीं से नुकसान कर सकत है। एकरे खाती हम ई कहब कि जौन फास्ट फूड बाय ऐसे भैया बचाएं, काहे से कि देखा जौन घर में बना खाना होत है न वो बड़ा पौष्टिक होत है और निरोगी भी होत है। और दूसरी बात ये है न कि जौन घर के बना खाना खावे न वो भैया देखा घर वाले बढ़िया तरीके से साफ सुथरा कई के बनवत हैं और ओका खाए से शरीर में अन्न लागत है और तोहार भाई खेले कूदे के पढ़े लिखे के समय बाय। यह अवस्था में अगर भाई फास्ट फूड की तरफ जाब्या तो निश्चित रूप से वो कहीं कहीं से नुकसान करी और पढ़ाई लिखाई में कहीं कहीं बाधा उत्पन्न करी। तो घरे वाले बदे भाई जिदियावा न करा कि हमें यह चाही, घरे वाले भाई जौन बढ़िया बढ़िया बनाए खियावत हैं वही में खा, वो तोहरे बदे बहुत अच्छा है और कारगर भी है। और एक बात और कहब कि देखा हो रोज पढ़े जात हो गया तो स्कूले में जौन भैया मास्टर भैया बहनी हैं वो लोग जौन भी पढ़ाई पढ़ावत हैं ओका मन लगाए के खूब बढ़िया तरीके से पढ़ा, और जौन समझ में नहीं आवे न हो तो ओका भाई अपने घरे आए के जौन बड़ बड़कवा भैया बहनी हैं जौन भाई पढ़ा लिखा तमाम मने भैया हैं उनसे जानकारी लेके सीखा और वह बतावें ओका सीख के ओका रटी डारा ओका पढ़ी डारा। ऐसे भाई जौन स्कूले के काम है उस समय से तोहार पूरा भी हो जाई। तो देखा जौन बड़ बड़कवा हैं घर के चाहे भैया हुए चाहे बहनी हुए चाहे दादा बाबा हुए भाई वह लोग के पास एक बढ़िया अनुभव भी है और बढ़िया जानकारी भी है। तो उनसे भाई हमें तुम्हें सीखे के जरूरत है, उनके बात माना उनके कहना माना। तो ऐसा न करा कि भाई उनके कहना न माना, उनके कहा मन बात वो तुम्हें बढ़िया बढ़िया खिस्सा कहानी के माध्यम से अच्छी अच्छी चीज़ बताई हैं जौने से कि तुम्हारे जीवन में भाई ओकर काम समय समय पे लागत रहत है। तो कहानी और चुटकुला के माध्यम से भी देखा चुन्नू मुन्नू को बहुत बड़ी सीख मिल जात है। तो ये जरूर ध्यान दें कि अपन जौन बड़ बड़कवा हैं उनके कहना माने और समय से भैया सवेरे उठ के बढ़िया तरीके से हाथ मुंह धोई के दतुइन मंजन कई के और बढ़िया पौष्टिक नाश्ता घर के बना हुआ ओका कई के भैया स्कूले जाएं और स्कूले जाए के बढ़िया बढ़िया चीज़ सीखें और आपस में लड़िकन से प्रेम भाव बनाए के रहें। ऐसे भाई देखा एक चुन्नू मुन्नू के अंदर एक बदलाव भी आवत है और कई घर के लड़का भैया पढ़े लिखे आवत हैं तो उनके तौर तरीका थोड़ा सा अलग अलग मिलत है। तो कोनो लड़का भाई देखा तौर तरीका बढ़िया नहीं बाटे तो उस सीख लेत है लड़कन के देखा देखी। तो चुन्नू मुन्नू भी भाई देखा जौन बढ़िया तरीके से लड़का रहत हुए उनके देखी देखा भी उनके जौन अच्छाई बाय ओका भाई अपने अंदर उतारे के जरूरत बाटे और पढ़ाई लिखाई खेल कूद भाई चुन्नू मुन्नू समय से जरूर करत रहें। और एक बात और चुन्नू मुन्नू से हम कहब कि देखा बरसात के समय चलत बाटे तो बरसात के समय में चुन्नू मुन्नू भाई अगर खेले जात हैं तो कहीं ऐसन जगह न खेले जाएं जहां भाई झाड़ झंखाड़ होए, काहे से कि यह समय में तमाम जौन जहरीला कीट किरौना हैं उनके भी प्रकोप बढ़ जात है, वो बाहर निकल आवत हैं तो ऐसे कहीं कहीं उन्हें उनके बदे नुकसान न हो जाए। तो ई कुल जरूर ध्यान दें, समय से घरे अपन पढ़ लिख के चला आवें, घर में अपन साफ सफाई से रहें। और जौन कहिया थे कि जब चुन्नू मुन्नू खाना खाए बैठा थे न तो देखा हाथ धोई के बढ़िया तरीके से हाथ मुंह धोई के, और जो अगर गंदगी भाई नह में बाटे नखूने में देखा हो कहियो कहियो देखे में होता है कि माटी भर गई बाय तो गंदगी हो गई बाय तो एका साफ कर लें और समय समय पे अगर नह बढ़ गई बाटे तो ओका भाई अपने घर वाले से कटवा लें। तो देखा ई कुल तो चुन्नू मुन्नू जरूर सुन के सीखें और हम तो कहब सीखें का अपने जीवन में उतारें और अपने भाई मेल में जौन हेली मेली जौन भाई उनके मित्र संघाती और सहपाठी हैं उन्हें भी अच्छी अच्छी बात बतावें। और हम तो कहब कि चुन्नू मुन्नू देखा हो ये बात तो हमार सुनते हैं मुला, अब यह सोचत हुई है कि

0: अपने बतिया बताई हैं कि कुछ बतैबो करी हैं। तो देखा आज एक ठी बाल कहानी बाय हो चुन्नू मुन्नू तोहरे बदे समर प्रताप सिंह भैया सुनावत हैं, तो एका सुन लिया ओकरे बाद बात बत कही होत रही।
1: आज की हमारी कहानी शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं हार मानूंगा नहीं, कविता पर आधारित है जिसका शीर्षक है हार मानूंगा नहीं। नगर की सीमा पर बसा हुआ था सुंदरपुर, नक्शे में उसका नाम ढूंढना कठिन था, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के संघर्ष इतने गहरे थे कि अगर जिंदगी का नक्शा बनाया जाए तो सुंदरपुर सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इसी गांव में एक साधारण किसान परिवार में रामदीन के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम आस्तिक था। आस्तिक बचपन से ही होनहार था, जैसे कि कहा गया है कि होनहार बीरवान के होत हुए चीकने पात। आस्तिक बचपन से ही अलग था, वह खिलौनों से ज़्यादा सवालों में रुचि रखता था। आसमान नीला क्यों है, पक्षी आसमान में कैसे उड़ लेते हैं, जैसे अनेक आश्चर्यजनक सवालों से वह अपने गुरुजनों को चौंका देता था। लेकिन केवल सवाल पूछने से पेट नहीं भरता, यह बात उसे जल्द ही समझ में आ गई। आस्तिक के पास विरासत में कोई धन नहीं था, बल्कि मेहनत की आदत व माँ की दुआएं थी। आस्तिक की माँ कैलसिया, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी किंतु सिलाई व कढ़ाई कला में निपुण थी, वह अक्सर बेटे से कहती, बेटा गरीबी कोई पाप नहीं है किंतु सपने देखना छोड़ देना सबसे बड़ा अपराध है। आस्तिक का बचपन अभावों में बीता, स्कूल जाने के लिए उसे रोज 2 मील पैदल चलना पड़ता था, पैर में ठीक से जूते भी नहीं थे, किताबें या तो पुरानी थीं या तो उधार की थीं, किंतु मन में सपने नए नए थे। कुछ बच्चे रास्ते से ही घर लौट जाते थे किंतु आस्तिक कभी भी नहीं लौटा, वह जान गया था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, अर्थात जो आधे रास्ते से लौटते हैं वे मंजिल की शिकायत नहीं कर सकते हैं। 8वीं कक्षा में एक दिन शिक्षक ने कहा, सभी लोग साइंस का प्रोजेक्ट बनाकर लाएंगे। आस्तिक रात दिन मेहनत कर मिट्टी और कागज से मॉड्यूल बनाता रहा। नियत समय पर जब स्कूल में अपना प्रोजेक्ट दिखाया तो सभी सहपाठी हंस पड़े, आस्तिक का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन तभी उसे आत्मप्रेरणा मिली और उसका चेहरा खिल उठा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने सोचा, एक दिन यही लोग जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मेरी मेहनत पर मेरी सफलता पर तालियां बजाएंगे और मेरे पीछे पीछे चलेंगे। 10वीं की पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था, घर की आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी, पिताजी बीमार हो गए थे जिसके कारण खेतों में काम कम हुआ जिसके फलस्वरूप अनाज भी कम पैदा हुआ। स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई पर माँ कैलसिया ने कहा, बेटा आस्तिक हालात ठीक नहीं हैं पर यह समय भी बीत जाएगा, तू पढ़ाई मत छोड़ना, मैं और ज़्यादा सिलाई कर लूँगी। आस्तिक ने उसी रात निर्णय लिया कि वह हार नहीं मानेगा। आस्तिक ने अपने लिए कड़े नियम बनाए, प्रतिदिन सुबह शाम कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई करना, बेकार की बातों से दूरी बनाया, हर पल कुछ नया सीखना, खुद पर विश्वास रखना, खाली समय में पिता के कामों में हाथ बटाना आदि अब उसकी यही दिनचर्या थी। कई बार आंखें जलती, नींद आती, नींद किताबों पर गिर जाती, मन करता सब

0: को छोड़ दूं, किंतु माँ के हाथों की सिलाई व कही गई बातें याद आ जाती, जिसमें दर्द था पर शिकायत नहीं। आगे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ा। शहर आस्तिक के लिए किसी नए ग्रह की तरह था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागती जिंदगी और ठंडी निगाहें। किराए के छोटे से कमरे में वह रहता था, जहां सपने तो बड़े थे किंतु जगह ही कम थी। कॉलेज में अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, आस्तिक कुछ कम समझ पाता था। कई बार शिक्षक के सवालों पर चुप रह जाता। दोस्त बनते कम, मजाक ज़्यादा उड़ाते, लेकिन उसने तय किया कि अपने मौन को मेहनत से तोड़ूंगा, किंतु हार नहीं मानूंगा। कॉलेज में नए शिक्षक शर्मा सर ने आस्तिक के आंखों में छिपे हुए सपने को भांप लिया। एक दिन आस्तिक को बुलाकर कहा, बेटा तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, थोड़ा अंग्रेजी में मेहनत करो, तुम बहुत आगे निकल जाओगे। शर्मा सर का सानिध्य मिलते ही आस्तिक के सपनों में जैसे नए पंख लग गए हों। शर्मा सर ने उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में बताया व पढ़ने का तरीका भी सिखाया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आस्तिक ने एक बड़ी परीक्षा दी, किंतु दुर्भाग्यवश वह असफल रहा। परिणाम देखकर उसका मन टूट गया। कुछ दिनों तक वह चुपचाप रहा, बंद कमरे में रोया, पर हार नहीं मानी, खुद को संभाला। असफलता अंत नहीं होती, सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। उसने अपनी कमियों को पहचाना, अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, समय प्रबंधन का गुर सीखा, अपनी रणनीति बदली, पुनः परीक्षा में बैठा। दूसरी बार परीक्षा का परिणाम आया, वह चयनित हो गया। वह खुशी से फूला न समा रहा था, क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर चुका था। समय के साथ आस्तिक ने सिर्फ अपनी सफलता ही नहीं सोची, बल्कि सुंदरपुर के लोगों के लिए भी नौकरी के साथ साथ उसने समाज सेवा शुरू की। गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए एक छोटी सी निःशुल्क लाइब्रेरी खुलवा दी। उसका एक सपना था, प्रत्येक बच्चा पढ़े व अपना सपना जिए। आज सुंदरपुर के लोग गर्व से उसका नाम लेते हैं। कई छात्रों के लिए आस्तिक मिसाल बन चुका था। वह सुंदरपुर का हर छात्र आस्तिक को अपना आदर्श मानता है। कहानी का सारांश यह है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां हमें नहीं, हम परिस्थितियों को बदलते हैं। असफलता पथ प्रदर्शक है, दुश्मन नहीं, अर्थात असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। सपने
1: हाँ, चुन्नु मुन्नु देखा हो, ये बाल कहानी समर प्रताप सिंह भैया कितना बढ़िया से सुनावत रहने का। तो हम कहब कि चुन्नु मुन्नु एका सुनिके गुने, अगर कोनो काम में असफल होते हैं तो भाई निराश होए की जरूरत नहीं है। बार बार प्रयास करे से निश्चित रूप से सफलता मिलत है। और देखा यह कहानी का यह सीख बने कि भाई देखा घबराए के जरूरत नहीं होत, धैर्य रखब जरूरी है, समय के साथ सब बढ़िया हो जात है। तो निश्चित रूप से धैर्य रखें और कोनो भी काम करत रहें। तो देखा विदा लेव के बेला भाई चुन्नु मुन्नु से। तो लड़कनो जय हिंद।
2: अभी ग्रामीण अंचल के बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: युवा साथी, सुने अपना कार्यक्रम युव वाणी।

0: पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
1: युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युव वाणी।

कभी कभी जिंदगी हमें ये दो रास्तों के बीच लेकर खड़ा कर देती है। एक रास्ता जो जाना पहचाना है, जहां अपने लोग हैं, अपनी मिट्टी है, अपनी भाषा है, और दूसरा रास्ता वो रास्ता जो अनजान है, लेकिन जिसके उस पार नए अवसर, नई चुनौतियां और एक नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। और शायद युवा होना भी कुछ ऐसा ही है, सवालों से भरा हुआ, सपनों से भरा हुआ, और उन सपनों को पूरा करने के लिए सीमाओं से आगे जाने का साहस रखने वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या द्विवेदी और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट यूथ शो युववाणी। आज की हमारी चर्चा भी युवाओं के सपनों और उनके भविष्य से जुड़े एक बेहद खास सवाल को लेकर आई है। विदेश में पढ़ाई और नौकरी, अवसर या प्रतिभा पलायन। आज बहुत से युवा बेहतर शिक्षा, बेहतर रिसर्च फैसिलिटीज, अच्छे करियर ऑप्शंस, इंटरनेशनल एक्सपोजर और आर्थिक विकास की संभावनाओं के लिए विदेश की ओर रुख करते हैं, यानी फॉरेन स्टडीज या फॉरेन में जॉब करने के लिए। किसी के हाथ में एडमिशन लेटर है, किसी के पास नौकरी का ऑफर है, कोई स्कॉलरशिप लेकर जा रहा है, तो कोई अपने सपनों के यूनिवर्सिटी कैंपस की तस्वीरें देखकर भविष्य की कल्पना कर रहा है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है दोस्तों। अगर देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा बड़ी संख्या में बाहर जाकर बसने लगे, तो क्या यह ब्रेन जो है वो ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन नहीं हो जाएगा? मतलब हमारे देश की जो क्वालिटी है, हमारे देश का जो नॉलेज है, हमारे देश के जो युवा जो इतने टैलेंटेड हैं, वो दूसरी कंट्री के लिए सर्व करेंगे? कहीं ये हमारी प्रतिभा, हमारे देश की प्रतिभा का पलायन तो नहीं? या फिर हमें इसे एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए। क्या दुनिया में ये कहीं भी जाकर सीखना या बढ़ना और फिर उस ज्ञान को अपने देश के लिए काम में लगाना आज के ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा भी हो सकता है? या ये भी कि जो हमारे देश से जो युवा हैं, जो लोग हैं, जो देश दूसरे देश में जाकर नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे एक अच्छे पायदान पर पहुँच रहे हैं, तो इससे क्या देश की जो एक छवि है वो निखर रही है, मजबूत हो रही है? बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। दरअसल सवाल इतना सीधा है कि इसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, क्योंकि विदेश जाना अपने आप में प्रतिभा पलायन नहीं है। असली सवाल ये है कि प्रतिभा कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, और उसके ज्ञान, कौशल, अनुभव का लाभ आखिर किस समाज को मिल रहा है। विदेश में पढ़ाई युवाओं को सिर्फ एक डिग्री नहीं देती, कई बार वहाँ बेहतर लेबोरेटरीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज, इंटरनेशनल फैसिलिटीज और वहाँ की फैकल्टीज, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च और अलग अलग देशों के लोगों के साथ काम करने का अवसर उन्हें मिलता है। एक विद्यार्थी जब अलग कल्चर और एजुकेशन सिस्टम को देखता है, तो उसका नज़रिया भी व्यापक हो जाता है। उसे समझ आता है कि समस्या को हल करने के लिए सिर्फ एक नहीं, कई सारे तरीके होते हैं, और यही ग्लोबल एक्सपोजर आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, दुनिया तेज़ी से बदल रही है और इस तेज़ दुनिया से इंटरकनेक्टेड होना भी बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी की कोई सीमा नहीं है। रिसर्च एक देश में होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल

और दूसरे देश में भी हो सकता है। कंपनीज कई देशों में काम कर रही हैं, एक ही कंपनीज के ऑफिस कई देशों में फैले हुए हैं, तो ऐसे में युवाओं का इंटरनेशनल एक्सपोजर अपने आप में ही एक वैल्यूएबल एसेट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल तब उठता है जब पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी संख्या में युवा वापस लौटने के बजाय स्थायी रूप से उसी देश में यानी विदेश में बस जाते हैं। तब देश को अपनी स्किल प्रोफेशनल की कमी का बहुत तेजी से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और महसूस भी होता है। खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, रिसर्च और हाईली स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स जो होते हैं उनमें ट्रेंड लोगों का बाहर जाना देश के लिए एक चुनौती बन सकता है। क्योंकि सोचिए, देश का वो युवा जिसके पास इंटेलिजेंस है, जिसके पास टेक्नोलॉजी की समझ है, जिसके पास एक क्षमता है जो देश को बहुत आगे तक लेके जा सकती है, जब वही दूसरे देश में जाता है, वहाँ की नॉलेज लेता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर को समझता है, वहाँ के नॉलेज को गेन करता है, लेकिन वापस आके अपने देश में लगाने की बजाय वो वहीं पे सेटल होकर उनके लिए काम करने लगता है, तो देश का एक तरीके से प्रतिभा पलायन ही होता है। इसे हम सभी सामान्य रूप से ब्रेन ड्रेन कहते हैं। जब किसी देश के हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड लोग बेहतर अवसर की तलाश में दूसरे देश में जाकर काम करते और स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं, यानी हमारा जो ब्रेन है, जो युवा है, जिसके पास सबसे ज़्यादा दिमाग है, वो बाहर जाकर कहीं अपने दिमाग को लगाने लग रहा है, अपनी प्रतिभा को दिखाने लग रहा है, तो जो भारत का ब्रेन है, वो ड्रेन होने लग रहा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन आज दुनिया में एक और शब्द तेजी से महत्वपूर्ण हुआ है, ब्रेन गेन, यानी ब्रेन सर्कुलेशन, यानी प्रतिभा सिर्फ बाहर नहीं जा रही, बल्कि नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट और कनेक्शंस के माध्यम से अपने देश से भी जुड़ सकती है। यानी ऐसे समझते हैं कि कोई एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति स्कॉलरशिप में बाहर गया, उसने पढ़ाई की, उसने बहुत सारी डिग्रीज हासिल की, उसने वहाँ पे जॉब पाई, वो उसके ऊंचे पायदान पे पहुंच गया और वही फिर भारत के लिए आके काम करने लग गया। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ ना दोस्तों, कि हमारे देश से निकला हुआ कोई एक ऐसा व्यक्ति एक बहुत ऊंचे पायदान पे पहुंचता है और फिर अपने देश के लिए काम करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हमारे सामने हैं, टेक्नो वर्ल्ड्स में भी हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में हम देखने को मिल रहा है। रिसर्च सेक्टर में भी हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो ऐसा करते हैं, दूसरे देश में पढ़ाई अर्जित करते हैं और फिर अपने देश में आके उस प्रतिभा को निखारते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारे देश की वो आधार हैं जिससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए कोई युवा विदेश में पढ़ाई करके वहीं काम करता है, लेकिन भारत के किसी स्टार्टअप में वो निवेश कर रहा है। जैसे आजकल हम बहुत सारे स्टार्टअप्स देखते हैं जो फॉरेन में स्टडीज़ करके लोग आते हैं, अच्छी नॉलेज लेके आते हैं और फिर भारत में एक स्टार्टअप खोलते हैं। खुद तो रोज़गार पाते ही हैं, अपनी एक नई दुनिया बनाते हैं, नया रोज़गार बनाते हैं और उसके साथ लाखों लोगों को भी जोड़ते हैं, लाखों लोगों को काम देते हैं। तो ये भी एक तरीके से एक सेक्टर को डेवलप करना हुआ। किसी भारतीय स्टूडेंट को मेंटोर करना होता है, अपने रिसर्च कोलैबोरेशन को भारत के संस्थानों से जोड़ता है या कुछ वर्षों बाद वापस लौट कर यहाँ काम करता है, तो क्या ये इसे केवल पलायन कहेंगे? शायद नहीं। यही कारण है कि आज की चर्चा हमें और ज़्यादा विशेष लगनी चाहिए। विदेश जाना और देश छोड़ना, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं दोस्तों। विदेश जाने का मतलब ये होता है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे सीख रहे हैं, वहाँ को या तो घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ का एक्सपोजर ले रहे हैं। लेकिन देश छोड़ना, इसका अर्थ ये हो जाता है कि हम अपने देश को पूरी तरीके से छोड़ कर, उसे त्याग कर हम दूसरे देश को अपनाने जा रहे हैं, उसकी नेशनैलिटी को लेने जा रहे हैं, जबकि ऐसा करना गलत होता है। ऐसा करना अपने ही देश के प्रतिभा को कम करना होता है, लेकिन विदेश जाना ये बिल्कुल भी अपने देश की प्रतिभा को कम करना नहीं है। एक बहुत खूबसूरत सा विचार है दोस्तों, सपनों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अपनी जड़ों की कोई कीमत भी नहीं होती। युवा अगर दुनिया को देखने जाए, सीखे, आगे बढ़े, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि उस यात्रा के बाद वे अपनी सीख को अपने देश के लिए इस्तेमाल करें, ये अहम मुद्दा है, ये अहम पॉइंट है। तो आप बाहर जाएं, वहाँ

की स्किल सीखे, वहाँ के लोगों को समझे, वहाँ के कल्चर को समझे, वहाँ की चीज़ों को आप बेहतर रूप से अपने अंदर आत्मसात करें, लेकिन उसे फिर लेकर अपने भारत में आएं और यहाँ पे विकसित करें, यहाँ के चीज़ों को और डेवलप करने की कोशिश करें, यहाँ नए नए स्टार्टअप्स खोलें, नए नए सेक्टर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे हमारा देश आर्थिक, सामाजिक और कई सारे जो कमज़ोर पॉइंट्स हैं उसमें मजबूत हो सके। कहावत है, दूर के ढोल सुहावने, विदेश की चमक बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। हर युवा का एक बार सपना ज़रूर होगा कि एक बार वो वर्ल्ड टूर करे, या विदेश में जाके रिसर्च करे, या फिर वहाँ जाके वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, और ऐसा होता भी है। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में लोग जाते हैं और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो स्टूडेंट्स को काफ़ी आकर्षित ऑफर्स देती हैं, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें एक स्कॉलरशिप भी देती हैं कि वो हमारे यहाँ आएँ, स्पेशली इंडियंस, क्योंकि कहते हैं इंडियंस का जो ब्रेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है, उनके पास सीखने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए इंडियंस के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा ही अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी कंट्रीज़ देते हैं कि वो हमारे यहाँ आएँ, उस कला को समझें, उसको पढ़ें और उस पर रिसर्च करें। तो हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन किसी भी देश में जाकर उसे वास्तविकता से समझना ज़रूरी है। वहाँ पे जाके उस पढ़ाई को करना एक अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ जाकर उसी कल्चर को अपना समझने लगना ये बिल्कुल गलत है। वहाँ की ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, टैक्सेशन, वीज़ा रूल्स, हेल्थ केयर, वर्क कल्चर, जॉब मार्केट, लोनलीनेस और कल्चर एडजस्टमेंट बिल्कुल अलग है, और भारत का बिल्कुल अलग। मैंने एक वीडियो देखा था दोस्तों कि एक विदेशी भारत आया था, उसे बहुत समय तक खाने पीने के लिए, मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसका वॉलेट चोरी हो गया था, लेकिन भारत का जो एक कल्चर है, जगह जगह पे भंडारे करना, इस तरीके से करके उसने लगभग 15 दिन अपना पेट भरा। यहाँ के कल्चर में ये हमारे लोगों की इतनी खूबसूरत बात है कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देते, हम लोगों के पास इतना भोजन तो हमेशा रहता है कि हम किसी का पेट भर सके। ये भारत की सभ्यता है और यहाँ के रहने वाले लोग इसे अच्छी तरीके से समझते हैं, उन्हें ये चीज़ें पता है, लेकिन यही जब लोग दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को समझने में कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को भूलने लगते हैं। ये बहुत गलत चीज़ होती है दोस्तों। आपका देश आपका अपना है, वहाँ की प्रतिभाएं आपकी अपनी हैं और आपके लोग अपने हैं। अगर आप कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नया डिसीजन लेते हैं, करियर ऑप्शन चुनते हैं, तो आप उसे सीखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे अपने देश की उन्नति, अपने देश की प्रगति, अपने देश की सीमाओं का विस्तार करने के लिए, अपने देश का एक विकास करने के लिए प्रयोग करें, ना कि उसके ब्रेन ड्रेन के लिए। हमारा देश हमारी जान है, हम कहते हैं ना वंदे मातरम, तो उस वंदे मातरम को सार्थक करने का सबसे ये अहम चीज़ हो जाएगी कि अगर हम कहीं जाते हैं, किसी देश के कल्चर को समझते हैं, उसकी चीज़ों को सीखते हैं, तो भारत आए और वहाँ पे इस चीज़ों को हम स्थापित करें और वहाँ के लोगों को ये चीज़ें सिखाएं, तभी वास्तविक में विदेश यात्रा, आपकी विदेश जाकर वहाँ के कुछ सीखने का जो एक उद्देश्य होगा वो सार्थक सिद्ध होगा। तो दोस्तों आज है संडे, अपने प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, कुछ म्यूजिक का तड़का लगाना होगा और देना होगा आपको एक म्यूजिकल यू टर्न।

0: दोस्तों, अभी हमने बहुत प्यारा सा गाना सुना और अभी इतने प्यारे से गाने के बाद हमारे प्रोग्राम में तो अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों। तो जैसा कि आज संडे, आप सभी को पता है, और हम अपने प्रोग्राम में लेकर आते हैं बहुत खास खास चीज़ें अपने लिसनर्स के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं हेलो युवा। हेलो युवा हमारी एक बेहद खास दोस्त अंजलि श्रीवास्तव पेश कर रही हैं। आइए सुनते हैं कॉलर साथियों से उनकी की गई बातचीत को।
1: हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं हेलो युवा फोन इन प्रोग्राम, जहां बातें होती हैं आपकी, आपके एक्सपीरियंसेस की और आपके थॉट्स की, जो बनती हैं हमारे चर्चा का हिस्सा। आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में ना, कभी पढ़ाई के स्ट्रेस, कभी जॉब का स्ट्रेस, कभी करियर की चिंता, कभी सोशल मीडिया में कंपैरिजन, तो कभी फेलियर्स का डर, ये सब हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में स्ट्रेस को संभालना, खुद पर ट्रस्ट करते रहना, मुश्किल टाइम में पॉजिटिव रहना और डिजिटल दुनिया के साथ बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इन्हीं टॉपिक्स पर आज हम खुलकर बात करेंगे आपसे, अपने लिसनर्स से, और जानना चाहेंगे आपके ओपिनियंस के बारे में इन टॉपिक्स पर। तो दोस्तों, आज का स्टेज है आपका, अपनी राय दीजिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए और अपने सुझाव हमारे साथ साझा कीजिए। हो सकता है आपकी एक बात किसी दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाए, तो फोन उठाइए और जुड़ जाइए हेलो युवा फोन इन प्रोग्राम के साथ। हेलो, आपने फोन मिलाया है हेलो युवा फोन इन प्रोग्राम में, अपना नाम बताइए।
2: जी, मेरा नाम मयंक है।
1: अच्छा मयंक, तो आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं या आप जॉब कर रहे हैं?
2: जी, मैं एक्चुअली जॉब कर रहा हूँ और मैं वीडियो एडिटर हूँ दिल्ली में।
1: ओके, तो वीडियो एडिटिंग में तो मयंक पूरे दिन कांस्टेंट स्क्रीन इंटरेक्शन आपका रहता होगा, और जब घर पे भी जाते हो

0: होंगे, रिलैक्स करते होंगे, तो हाथ में जब फोन आता है उसमें भी स्क्रीन टाइम आपका रहता होगा, तो कहीं ना कहीं वो बर्नआउट हो जाता होगा ना पूरे दिन में। उससे कोप अप करने के लिए क्या करते हैं आप?
1: जी ऐसा बर्नआउट तो होता है क्योंकि आप पहले पूरे दिन स्क्रीन देखो ऑफिस में, अगर आप फोन भी चलाओ तो आपको स्क्रीन इरिटेट करती है। तो कोप अप करने के लिए ऐसा बहुत वक्त होता नहीं है कि आप कोप अप करने के लिए बहुत चीजें कर पाओ कि बहुत टाइम रहे आपके पास। तो यूजुअली व्हाट आई डू एंड व्हाट यू कैन डू इज टू, कि जब आप खाना खा रहे हो या खाना खाने के बाद ट्राई करें खाना खाते टाइम डोंट यूज योर फोन, सब कुछ देखिए मत, जस्ट एंजॉय योर मील एंड इफ पॉसिबल खाना खाने के बाद सिर्फ आधे घंटे के लिए एक छोटे से वॉक कर लीजिए इन अ गुड एनवायरनमेंट विदाउट योर फोन, विदाउट लिसनिंग टू म्यूजिक और एनीथिंग, बिकॉज वो आधे घंटे कैन रियली लाइटन अप योर मूड और आपका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो काफी हद तक कम कर सकता है। दैट्स व्हाट आई डू, क्योंकि मेरे पास बहुत वक्त होता नहीं है, तो जितना वक्त होता है उतने वक्त में आई डू दिस टू कोप अप विद दैट स्ट्रेस और स्क्रीन टाइम।
0: और कई बार तो ऐसा भी होता होगा ना मैं कि चीजें आपके मुताबिक या आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती होंगी, तो उस टाइम पे आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं?
1: देखिए कई बार क्या, अगर आप एक जिंदगी जी रहे हैं तो अक्सर ही ऐसा होगा कि चीजें आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं जाएंगी, और उन मोमेंट्स आपको जरूर लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं सब कुछ प्लान किया, सब कुछ सोचा हुआ था बट ऐसा क्यों हो रहा है। बट एट दोज मोमेंट्स आपको कुछ तो याद दिलाना होगा कि ये जिंदगी है और जिंदगी आपको सिखाने के लिए ही है। अगर सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक ही चलेगा तो आप सीखोगे कैसे, है ना? तो आप खुद को ये याद दिलाओ कि ठीक है ये वैसा नहीं है भले ही, बट ये मुझे सिखा क्या रहा है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इससे मेरी जिंदगी कैसे इंप्रूव हो सकती है, मैं तो खुद को यही याद दिलाता हूँ और आप भी कर सकते हैं।
0: ओके, तो मयंक आपके इस पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपको कौन सा गाना सुनना है मयंक?
1: मुझे वेकअप किट का एक सारा सॉन्ग बहुत पसंद है, अगर वो पॉसिबल हो तो।
0: ओके, हमारे तरफ से ये गाना आपके लिए।

0: हेलो, आपने फोन मिलाया है हेलो युवा फोन इन प्रोग्राम में। अपना नाम बताइए।
1: जी, मेरा नाम शीतांशी त्रिपाठी है।
0: ओके, चितांशी, आप अभी अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं? एज इन आप स्टूडेंट हैं या जॉब कर रही हैं?
1: नहीं, हम अभी स्टूडेंट हैं।

0: मेरा अभी मास्टर्स खत्म हुआ है और आगे PhD के लिए तैयारी कर रहे हैं।
1: ओके, तो आप स्टूडेंट हैं जैसा कि आपने कहा, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेलियर्स का भी सामना करते हैं। तो आपने कभी कोई ऐसा बहुत बड़ा फेलियर फेस किया हो और उससे आपने क्या सीखा? कोई आपका एक्सपीरियंस ऐसा जो आप शेयर करना चाहेंगी?
0: जी, बहुत बड़ा तो नहीं पर फेलियर ही हाँ। जैसे कि मैंने भी बताया कि हम PhD के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इंडिया में एक एग्जाम देना होता है, NET JRF। तो वो एग्जाम अभी मेरा क्लियर नहीं हो पाया है और इस बार भी मेरी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है। तो कह सकते हैं कि हाँ, अभी इससे डील करना एक बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम के बाद भी उतने अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती। स्टूडेंट लाइफ में 100 चीजें होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, की इंसान डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर।
1: तो ऐसे समय में आप खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं या पुश करती हैं कि ट्राई करते रहना है इवन आफ्टर फेलियर्स?
0: मेरे लिए सबसे बड़ा ऐसे समय में जो मुझे इंस्पायर कर दे वो होता है कि जो लोग ऑलरेडी वो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं उनसे बात करना या उन्हें सोशल मीडिया पे देखना, वो एक सबसे बड़ी चीज होती है जो मेरे अंदर ये ले आती है कि मुझे करना है। यही मुझे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है।
1: ओके, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये एग्जाम दे रहे होंगे या कोई और एग्जाम भी दे रहे होंगे, तो उनको कैसे मोटिवेशन मिले उसके लिए आपने उनको पुश किया है। तो जयदांशी, आपको कोई एक ऐसा गाना जो आपको बहुत मन पसंद हो और आप वो सुनना चाहती हूँ, बताइए।
0: सुर मूवी का एक गाना है, दिल में जागी धड़कन ऐसी।
1: हमारे तरफ से ये गीत आपके लिए।

0: हेलो, आपने फोन मिलाया है हेलो युवा फोन इन प्रोग्राम में। अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम साहिल सिंह है।
0: ओके साहिल, तो व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ?
1: सो आई जस्ट कंप्लीटेड माय मास्टर्स एंड राइट नाउ आई एम एम्प्लॉयड। आई रिसेंटली जॉइन माय कंपनी एज अ डेटा साइंटिस्ट।
0: साउंड्स समथिंग वेरी यूनिक एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग टू। सो मुझे ऐसा लगता है साहिल कि आपने अपनी लाइफ में कई बार ऐसे लोगों से सुना होगा ना कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो

0: एवरी अदर पर्सन इज सेइंग बी पॉजिटिव. सो क्या आपको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग सच में हमारे डिसीजंस और परफॉर्मेंस को इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकती है?
1: डेफिनेटली आई वुड थिंक सो. लाइक जब आप पॉजिटिव रहते हो फ्रॉम इनसाइड, नॉट एट अ सुपरफिशियल लेवल, तो आपकी जो खुद में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है, जो आपके थॉट्स हैं वो क्लियर होते हैं, सेल्फ एफिकेसी आती है, आप परसिस्टेंस होते हो, तो समहाउ आपका जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट होता है. सो देयर इज अ चेंज, सो डेफिनेटली इट हेल्प्स.
0: ओके, ऑप्टिमिस्टिक रहना और रियलिटी को भी जानना, उनके बीच में बैलेंस बनाना कितना जरूरी है आपके अकॉर्डिंग?
1: सो बेसिकली ऑलवेज आपको वो लाइन टू ड्रॉ करके चलनी पड़ेगी. लाइक बीइंग ऑप्टिमिस्टिक और ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने में ज्यादा फर्क नहीं होता है. सो जब भी आप सोचते हो, आप दोनों एस्पेक्ट से सोचो, जो आपकी लाइफ की रियलिटी है उसको ऑलवेज देखो, एंड देन बीइंग ऑप्टिमिस्टिक. ऐसा नहीं, लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप बस कहीं से मोरल वैल्यूज का कुछ सोच रहे हो, बस सोचे जा रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट.
0: ओके, तो साहिल थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स. और हम अक्सर अपने लिसनर्स को उनकी पसंद का गाना भी सुनाते हैं, कोई ऐसा गाना जो आपको सुनना हो?
1: ओके, सो कर हर मैदान फतेह.
0: तो साहिल हमारे तरफ से ये गाना आपके लिए.

0: दोस्तों, आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लाइफ में स्ट्रेस, चैलेंजेस और फेलियर्स बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही हमारी असली ताकत है। और इसी टाइम में पॉजिटिव थिंकिंग को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स पॉजिटिव थिंकिंग से ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने थॉट्स शेयर करे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हमारे साथ। और उम्मीद है कि आज का हेलो युवा फोन इन प्रोग्राम आपको बहुत कुछ नया सोचने पे और जीवन में आगे बढ़ते रहने के, पॉजिटिव थिंकिंग लाने के काम आया होगा। इसी के साथ मैं अंजलि श्रीवास्तव लेती हूँ आपसे विदा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिल

0: जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो दोस्तों, संदेश से पहले हम सुन रहे थे हेलो युवा, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंजलि श्रीवास्तव। और अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में आगे, और अब वक्त है हमारे सेगमेंट प्रेरणा पुंज का, जहां हम उन शख्सियत के बारे में बातें करते हैं जिनकी जिंदगी हमें बहुत कुछ अलग करने, अपने सपनों पर विश्वास रखने और अपनी पहचान को दुनिया तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। आज के हमारे जो प्रेरणा पुंज है, एक ऐसी आवाज के नाम है जिसे सुनते ही संगीत की दुनिया का पूरा दौर याद आ जाता है, फ्रेडी मर्करी। फ्रेडी मर्करी का जन्म 5 सितंबर 1946 को जंजीबार के स्टोन टाउन में हुआ था। उनका असली नाम था फरोख बुलसारा। आगे चलकर यही फरोख बुलसारा दुनिया के महानतम रॉक परफॉर्मेंस में से एक बन गए, मर्करी फ्रेडी। वह लेजेंडरी रॉक बैंड क्वीन के लीड वोकैलिस्ट थे और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉइस, मंचीय प्रतिभा अच्छे तरीके से दिखाने के लिए और बेहतरीन सॉन्ग राइटिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। फ्रेडी की आवाज़ में कुछ एक ऐसा जादू सा था कि लोग उन्हें सुनते नहीं, उन्हें महसूस करते थे। वो कानों तक नहीं उनकी आवाज़ पहुंचती थी, सीधा दिल तक उतर जाती थी। बोहेमियन रैप्सोडी, वी आर द चैम्पियंस, समबडी टू लव एंड डोंट स्टॉप मी नाउ जैसे गीत दुनिया भर में सुने जाते हैं। खास बात ये है फ्रेडी मर्करी की कि सिर्फ ये गाते नहीं थे, वो मंच में उस व्यक्तित्व को ऐसे प्रेजेंट करते थे कि लोग उस सॉन्ग को फील करने लगते थे। उनका परफॉर्मेंस ऐसा होता था कि हजारों लोगों की भीड़ एक पल में सिर्फ उनकी आवाज़ और ऊर्जा का हिस्सा बन जाती थी। उनकी कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाती है दोस्तों, अपनी अलग पहचान से डरना नहीं चाहिए। दुनिया आपको कई बार ये बताएगी कि आपको ऐसा होना चाहिए, आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, क्या क्या आपके अंदर खूबी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया कैसी हो, वो आपको क्या सिखा रही है, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी प्रतिभा, अपने जुनून और अपने उद्देश्य की ओर काम करते। और फ्रेडी मर्करी जो हमारे सामने ऐसे व्यक्तित्व हैं, ये उसका एकदम बखूबी उदाहरण है। उन्होंने कोई सीमा तय नहीं की, उन्होंने म्यूज़िक को हर देश, हर दुनिया तक पहुंचाया, और यही उन्हें सबसे अलग और सबसे विशेष संगीतकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। फ्रेडी मर्करी का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। 24 नवंबर 1991 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। यही शायद किसी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसके जाने के बाद भी उसकी कला को लोग उनके भीतर जिंदा रहे और उन्हें सुने। कभी कभी दुनिया आपको समझने का वक्त नहीं देती, इतनी ज़्यादा समय नहीं देती, लेकिन आपकी जो प्रतिभा होती है, आपके जो हुनर होती है, वो कम समय में ही दुनिया में इतना बखूबी छाप छोड़ देती है कि सदियों तक लोग आपको याद रखते हैं। और ऐसे ही थे हमारे फ्रेडी मर्करी। तो अब अपने प्रोग्राम को अंतिम पड़ाव में पहुंचाने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, अब हमारा प्रोग्राम समाप्त होने को है, लेकिन चलते चलते हम अपने श्रोताओं से पूछते हैं एक सवाल। और कल का सवाल था कि भारत की वो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और इसका उत्तर है गोदावरी नदी। तो धन्यवाद श्रोताओं हमसे जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आज का जो हमारा सवाल है वो है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आप अपने सुझाव, अपने जवाब हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे yuvvaniald@gmail.com पर, और व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। इसी के साथ मैं दिव्या लेती हूँ आपसे विदा अपने प्रोग्राम से। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
2: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। 1 इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित फोर्समेंट, 2 प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, 3 डिमांड और हार्म रिडक्शन और 4 क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। इनकी कीमत करीब 1,89,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्यनिकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की

0: भारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंक प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वे बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे शोभनाथ से लोक भाषा कविता पाठ और साथ ही विकास श्रीवास्तव से लोकगीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 7:30 पर और रात 8:15 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रमा सेन के स्वर में भजन और गीत सुनिएगा। श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी आई है में। प्रस्तुति होगी नेहा गुप्ता की। 8:30 पर कार्यक्रम आज इतवार है में सुनिएगा सूरज कपूर की लिखी झलकी, हाय स्वीटी हाय डार्लिंग। तो ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम।

कुमार से की गई बातचीत, विषय होगा प्राकृतिक खेती, एक आवश्यक जानकारी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश की वार्ता होगी, युवाओं में बढ़ता रक्तचाप। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर पंडित रामकृष्ण का क्लेरियोनेट वादन। दोपहर 12:15 पर गुरुप्रसाद शर्मा का वायलिन वादन होगा। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा 8:45 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:11:30 पर, रात 8:00 और 10:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर मीरा तिवारी और शाम 7:45 पर आशुतोष श्रीवास्तव के स्वर में भजन और गीत सुनिएगा। वॉयस ऑफ प्रयागराज का समय होगा 10:05।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में 10:30 पर कलाकार होंगे हरिश्चंद्र पांडे और विनीता तिवारी। कार्यक्रम एक ही कलाकार से दिन में 11 बजे सुनिएगा। अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद सुनिएगा 12:30 पर, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 100 बजे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी संस्कृति द्विवेदी की वार्ता, फैशन टेक्नोलॉजी में कैरियर की संभावनाएं, साथ ही जायका और निखार होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा 2:30 पर। शाम 5 बजे नन्हे मुन्नू का कार्यक्रम नन्ही दुनिया होगा और 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम। शाम 7:30 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र कुमार की वार्ता होगी समकालीन कथा, साहित्य में लालित्य की कमी, और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा होगा 9:30 पर। तो ये थे हमारे कल के मुख्य कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने को हैं। आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवा राज्ये वार्ताहर सम्मेलने 39,000 यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं कर्तुं रूपरेखां प्राकटयत्। तेन मादक पदार्थ विरोधी त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अभियानस्य आह्वानं कृतम्। गृहमन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनेन 100 मादक सञ्जालानि खण्डयितुं, 100 अपराधिनः भारतम् आनेतुं तथा 100 अवैधिक प्रयोगशालाः विनष्टं कर्तुं उच्चलक्ष्यं विनिर्धारितम्। नवदेहल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स महाविद्यालयस्य 100 वर्षे सम्पूर्णे सति आयोजिते शताब्दी समारोहे प्रधानमन्त्री मोदी मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन जेन्जी युवा उद्यमिनः प्रोत्साहयितुं उच्चलक्ष्यधारणस्य मन्त्रो दत्तः। तेन प्रोदीरितं यत् भारतीय मेधा जागतिक व्यापार जगत् नूतनां दिशं दर्शयति। एआई प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन च देशः आर्थिक समृद्धिं प्राप्नोति।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: आर्थिक दृढ़ताम प्रतिपादयन प्रधानमंत्री अवोचत यत् पश्चिम एशिया संकटावधौ अपि भारतेन 7.8% यावत् अभूतपूर्व संवृद्धि मानमर्जितम्। अनेन भारतस्य आन्तरिक शक्तेः परिचयः लभ्यते। तेन प्रख्यापितं यत् वैश्विक संकटेषु भारतस्य दृढ नीति संचालनमद्य जागतिक स्तरे श्लाघनीयं वर्तते।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि मेक इन इंडिया अभियानम अभूतपूर्वम परिवर्तनम साधयति इति प्रधानमंत्री अवोचत। अनेन अभियानेन भारतम अद्य प्रमुख निर्यातक राष्ट्रम अभवत्। असौ न्यगादीत यत् स्मार्टफोन क्षेत्रे 2.25 लाख कोटि रूप्यकाणां निर्यातं सम्प्राप्तम्। रक्षा उत्पादने च 2 लाख कोटि रूप्यकाणां नूतन कीर्तिमानं स्थापितम्। भारतस्य भौगोलिक अखण्डतां संप्रभुतां रेखांकयन् विदेश मन्त्रालयः संयुक्त राष्ट्रस्य मानचित्र प्रस्तावे स्वपक्षम् उपस्थापितवान्। मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन प्रोक्तं यत् भारतेन यूएन प्रस्तावस्य समर्थनं कुर्वता स्पष्टं कृतं यत् भारतस्य राष्ट्रीय सीमासु किमपि भ्रामकं प्रदर्शनं असह्यमस्ति। तेन प्रोक्तं यत् अयं प्रस्तावः कस्यापि देशस्य सीमायाः अनुमोदनं नैव करोति, अपि तु केवलं समान क्षेत्रफल प्रदर्शनस्य नीतिं पोषयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवदेहल्याम् अद्य महती दुर्घटना अभवत् यत्र सत्यनिकेतन क्षेत्रे एकं 5-स्तरीयं भवनं ध्वस्तम् अभवत्। सूचनां प्राप्य देहली अग्निशमन दलेन 18 वाहनानि प्रेष्य आपदुद्धार कार्यम् आरब्धम्। ततः एव 4 जनाः उद्धृत्य चिकित्सालयं प्रति नीताः, तेषु एकः मृत्युमुपगतः, अन्ये च गभीरावस्थायां सन्ति। उपराज्यपालः तरंजीत सिंह संधुः, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता च पीडितानां सहाय्याय त्वरित निर्देशान् अयच्छताम्। सहैव सुरक्षादृष्ट्या पार्श्वस्थम् एकम् अपरं भवनमपि रिक्तं कारितम्। सागरमण्डले विषाक्तमद्यपानेन भीषणत्रासः

पंचो राम राम। ए भैया देखा हो, आज हम पंचैती अकेले चला आए भागत। काहे से कि देखे तो राम जतन भैया कहे, भैया चला चला घनश्याम भैया से कहे तो, लेकिन सब अपने भैया घरैतिन के साथ ही खेती किसानी काम में लाग रहन। कहन तू आज मोती अकेले चला जा। तो हम भैया देखा हो आपन लोटा डोरी उठाए और घर इतिन से भाई कहे कि जौन छतवा बहु हो दम, मान ले बूनी पानी आवे तो हम ओका भैया लेके अकेले पंचैती भागत चला आए। तो कहे कि ई बात है हो पंच भैया कि देखा बरसात का मौसम चलत बाय, और यह बरसात के मौसम में भाई देखा हो तमाम कचड़ा ऐसन हो जात है, और जौन भाई कताऊ रिया कूड़ा करकट भाई घरे के हर वहर पड़ा बने, वो बरसाते में भैया सारी के बज बजाए लागत है।

तो ऐसे तमाम मच्छर माखी कीड़ा और मकोड़ा का प्रकोप भैया देखे में आवत बने। तो हम कहब कि भाई देखा यह समय तो जरूरत यह बात के बाय कि घरे दुआरे के आगे पीछे भाई साफ सफाई बढ़िया तरीके से किए रहें और साथे साथे जहाँ पशु बांधत हैं वहाँ भाई एकदम बढ़िया तरीके से साफ सफाई करें ताकि मच्छर और माछी का प्रकोप भैया न हो पावे। एकरे बदे चाहे भाई धुआं सुलगाए दिया ताकि मच्छर का प्रकोप न होए। और हम तो कहब कि भाई जब गोबर अगर वहाँ बांटे तो बढ़िया साफ सफाई के कई के राखी जरूर डार दें, ऐसे जोन भाई गीलापन रहत है वो भैया दूर हो जाते है और पशुअन के बैठे में आसानी भी रहत है। अब बात एक चीज ही कावत है न कि देखा हम तो है किसान मनई और हम तो भैया धरती के सीना चीर के देश के पेट भरित हो। तो यह समय में ये देखा जाए कि धान के फसल भाई हर भैया बहनी के खेते में लहलहात हुई और हम देखा तावत है मेड़े डाँडे ने कि भैया जेकर भी धान के फसल बाय न वो बढ़िया लहलहात बाय। मुला हमार तोहार ये फर्ज बनत है न कि समय समय पे जाय के रोज देखें कि अगर धाने के फसल में कोनो रोग बिरामी के प्रकोप होत बन तो निश्चित रूप से ओकर उपचार कर लें ताकि फसल के भाई पैदावार बढ़िया होए। और दूसरी बात यो कह पाए कि देखा हम तो खेती किसानी जब करी थे न तो वह हमें अगर वैज्ञानिक तौर तरीका के अपनावा जाए न तो भैया जोन खेती में लागत खर्च भैया बढ़त रहत है न तो वो कम हो जात है। तो एकरे बदे हमें तुम्हें जरूरत यह बात के बाय कि जवन भी नया संसाधन बाय ओकर प्रयोग अगर खेती किसानी में करब तो निश्चित रूप से लागत खर्च कम होई और पैदावार भी बढ़ी और बचत भी बढ़ी। तो देखे में आवत है कि हम तो भाई परंपरागत तरीके से पहले सिंचाई करत रहे भाई इंजन बाय भाई 500 मीटर दूर और भाई खेत हमार वहाँ में बरहा से पानी जात बाय। तो पानी भाई बरहा से जाए में कट पुट जाए और यहर वहर पानी भाई बर्बाद होत रहा। तो अब भैया हम तो कहब कि सिंचाई के जोन तरीका बाय ओका बदले के जरूरत सामने आ चुका बाय। और बदले बदे भाई देखा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ने कि तमाम तौर तरीका बतावा के बाटे और भाई देखा यह योजना के लाभ हमें तुम्हें उठावे के चाहे जाए के और जोन सिंचाई के तरीका तो जोन इजात हमारे वैज्ञानिक भैया बहनी किए हैं न तो भैया एक टपक सिंचाई है और एक स्प्रिंकलर वाला जोन है भैया घूम घूम पानी एकदम फुहारा टाइप बरसत हो तो उसे पौधन के हर अंश पे भैया हर जगह पानी का छिड़काव भी हो जाता है और उनके जड़ तक पानी जितना ज़रूरत है वो पहुंच भी जाता है। तो यह कुल के जोन भाई सावधानी बार तौर तरीका बाटे और यह जोन वैज्ञानिक विधि से भैया बहनी खेती करत हैं तो उन्हें भैया लागत खर्च में कमी का एहसास भी होत बाय। काहे से कि हम भैया देखा राम जतन भैया के साथे मिलके ने बढ़िया तरीके से ये का अपनाई के बढ़िया खेती कई के भैया बचत भी करत है और देश के पेट भी भरत है। तो देखा हम कहब कि अपने जो पंचायती में हम भैया समय समय पे बढ़िया बढ़िया जानकारी देत रही थे तो वो कुछ अनुभव किसी अनुभवशील किसान भैया बहनी हैं जोन की बढ़िया तरीके से खेती करत हैं और आपन अनुभव आई के हमारे पंचायती में बांटत हैं तो वो अनुभव का बा इहो हम तुम्हें सुनाई थे भाई। तो आज अपने किसान चर्चा में मेरी खेती मेरी बात तो पंचम लाल से रानू भैया बातचीत किए हैं ये सुनवाई भी और साथे साथे भाई आज लोक भाषा कविता पाठ के भी दिन बाय तो शोभनाथ भैया के भैया लोक भाषा कविता पाठ भी सुनवाई और झम्मा तरीके से हम कहब कि भाई देखा हो गौनई भी होई और तो कहत्या पहले विकास श्रीवास्तव के गाई गौनई बाटे ओका सुन लिया जात भाई जीव हरियर होइया तो आगे बतकही होत रही।

0: हाँ भैया देखा हो कितना बढ़िया रोपनी गीत विकास श्रीवास्तव भैया का रही देखा सुना गए। और जोन कहत रहे न कि किसान चर्चा में आज मेरी खेती मेरी बात के दिन है भाई, तो पंचम लाल से रानू भैया बतकही किए हैं तो एका सुन लिया आगे फिर बात बतकही होत रही।
1: देखा अपने पंचायती पे समय समय पे किसान भैया बहनी हरे आवत रहे थे जो अपन प्रोग्राम किसान चर्चा चलत है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में पंचम लाल मऊआइमा प्रयागराज से आए हैं और खेती किसानी के बारे में बताई हैं कि कौन खेती से कैसे कैसे कितना लाभ हो सकत है, कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो किसान भैया बहनी हरन के, और कौन कौन चीज के विशेष ध्यान देवे के चाहिए। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताओ कि कितना खेत है।
0: भैया हमारे पास खेत जोन बा 11 बीघा एक है और 4-5 बीघा बाग बगीचा है,
1: अच्छा
0: लेकिन 11 बीघा माँ खेती करी थे।
1: हाँ।
0: लेकिन अब खेती करे तरीका यह है आधुनिक ढंग के खेती के लिए सबसे पहले तो भैया माटी की जांच करा ला। अगर
1: अच्छा
0: माटी की सेहत बढ़िया बा
1: हाँ
0: तो समझ ले जोन खेती बाड़ी के जो भी अन्न पैदा किया जाएगा वो भी बढ़िया होता।
1: अच्छा
0: अब
1: अच्छा
0: माटी की जांच करावे के लिए भैया ऐसा कहीं जाता कि एक जोने खेते का माटी यानी जांच
1: लिहा
0: करके
1: जाता
0: भेजे के
1: हाँ
0: बाद
1: हाँ
0: लिया जाता तो करे चारों कोना के एक लाठा छोड़ के करीब
1: अच्छा
0: एक एक लाठा छोड़ के मिट्टी खुरपी से 9 इंची के हल्का से गड्ढा बना करके
1: हाँ
0: और एक फिर करे मध्य भाग बीचे वाले भागे से
1: हाँ हाँ
0: वो से फिर वो उतने मट्टी लीन जाता
1: अच्छा
0: ओत के मिट्टी ले आई के जैसे
1: हाँ
0: 5 किलो ले हुई के मिट्टी।
1: हाँ हाँ
0: अब वो 5 किलो मिट्टी के पहले अधियाई थे,
1: हाँ
0: अधियाए फिर अधियाए फिर
1: अच्छा
0: अधियाई से अधियाते अधियाते अगर
1: हाँ
0: एक पौवा मिट्टी बच गई भैया
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ओका एक झिल्ली में पैक किन जाता ओका लिखा जाता ये उत्तर के या दक्षिण के गाठा के फलाने गाठा काटे मिट्टी
1: हाँ
0: उसको ले
1: हाँ
0: जाते हैं कृषि रक्षा इकाई में
1: अच्छा
0: हमारे
1: अच्छा
0: यहाँ करीब में
1: हाँ हाँ
0: है मऊआमा में उन्हीं के यहाँ ले जाते हैं
1: अच्छा
0: उनको
1: ब्लैक में
0: ब्लॉक में ले जाए
1: हाँ
0: थे
1: हाँ हाँ
0: तो उनका दे दे तो आसानी से ले जाती जांच कराए के दे दे दे भैया।
1: अच्छा
0: अच्छा
1: पंचम भैया ये बताओ है का का लगाए हैं ने समय।
0: भैया ये समझ जैसे हम धान लगाए
1: हाँ
0: धान
1: हाँ
0: हमारे करीब 6-7-8 बीघा तक धान लग चुका है और
1: अच्छा
0: बाकी बजरी बोए हैं
1: अच्छा अच्छा
0: और बजरी 2 बीघा बोए हैं 1 बीघा बजरी भैया तो वो खाए वाली बजरिया
1: अच्छा अच्छा
0: और 1 बीघा चारा के लिए गए हमारे पास 7-8 भैंस गाय सब हैं
1: अच्छा अच्छा
0: बकरी भी अलग से है इस तरह से
1: हाँ हाँ
0: है तो उनका सबको चारा के लिए ज़्यादा होती है। लेकिन अभी जैसे धान लगाए हैं
1: हाँ
0: भैया एक
1: हाँ
0: चीज़ आपको धान के बारे में बताइए आपका
1: हाँ हाँ
0: धान जैसे अब लगाए दिए हैं तो अभी शुरुआत हुआ ये करीब 70-75 दिन के बाद जब हो जाएगा
1: हाँ हाँ
0: तो इसमें ध्यान ये दे के पड़ जाता है इसमें 4 गांठ बनती है
1: अच्छा अच्छा
0: शुरू से 1-2-3-4 गांठ हुई जब 4 गांठ के बाद बिल्कुल बंद हो जाती है गांठ इसकी।
1: हाँ हाँ
0: जब वो चौथी गांठ के आगे बढ़ेगा तभी इसमें जो है उसका फूल आएगा
1: अच्छा
0: फूल फल का जो भी हिस्सा बनेगा वो
1: हाँ
0: भी
1: हाँ
0: चलेगा
1: हाँ हाँ हाँ
0: वो चलेगा आखिरी तक उस तरह चलेगा। इसमें सावधानी भैया बहुत बरतने की पड़ता
1: अच्छा का
0: है
1: का सावधानी बरते के पड़े थे
0: सावधानी
1: मतलब।
0: भैया हमारी कि एक एक खाद पानी
1: हाँ हाँ
0: जब ये इसमें फूल आवे लगा था फूल आ गया
1: हाँ हाँ
0: तो एक सावधानी यह है कि का फूल आवे के पहले पहले का हल्की सिंचाई कर दिए खारी में ऐसे हल्का हल्का लगे नहीं
1: अच्छा
0: तो अगर फूल आ रहा है
1: हाँ
0: तो वो तब सिंचाई करते हैं तो इसका फूल मर ऐसे जाता है
1: अच्छा
0: बचा
1: मतलब
0: नहीं
1: कहे कि
0: होता।
1: मतलब यह है कि हल्का सा पानी चटाई
0: हल्का ही
1: दे। हाँ
0: पानी दीजिए इसमें अगर आप ध्यान दें तो फूल आते समय
1: हाँ
0: फूल में एक जो दो बूसी नहीं होती धान की
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: दोनों बूसी अलग अलग रहती है
1: अच्छा
0: और इसके मध्य भाग में एक इसे मोर के पंखे की तरह से इसका एक जो है
1: कनखा निकला
0: कंखा
1: रहता।
0: रहता है वो वही उसका जो है वो मूल तत्व तो बनता है।
1: अच्छा अच्छा
0: उस पीरियड में भैया अगर आप
1: हाँ हाँ
0: सावधानी नहीं बरते अब खेत में अगर गए धान जो है 12 बजे दिन में फूल आता है जी
1: हाँ हाँ
0: 12 बजे अगर आ गया तो आपको खेत में जाना नहीं है अगर
1: अच्छा
0: आप जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है धान जो है आपको पटपट टाइप हो जाता है
1: अच्छा
0: और वो माने उसकी उपलब्धि आपको नहीं मिल पाती
1: अच्छा ये
0: भैया।
1: बताओ पंचम भैया हम ही कहते रहे कि कैसे ये पता चले कि धाने में कौन कौन रोग लगा है। किसान भैया बहनी हरिन के सबसे ज्यादा दिक्कत ही रहते हैं।
0: भैया सुने

0: ये माना
1: हाँ
0: कि धान में सबसे पहले तो इसे कीड़ी हो जाती है,
1: हाँ हाँ
0: उसके गांठी के नीचे ऐसे सूड़ी टाइप का, सूड़ी ऐसा होती है वो लग जाती है,
1: अच्छा
0: और कभी कभी इसकी पत्तियां जो है पीली पड़ जाती, पत्ती गिरना शुरू कर जाती है। उसमें समझ लें कि अगर मिट्टी की जांच कराए यहाँ
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: जवन खाद पांच का है वो का वही के हिसाब से दवाई है, नहीं निश्चित धान में जो ना है कुछ न कुछ कीड़ा मकोड़ा लग जावे
1: अच्छा, तो
0: करेगा।
1: यानी मिट्टी जांच बहुत
0: हाँ
1: फायदेमंद
0: मिट्टी जांच
1: रहती।
0: करावे की बहुत जरूरी है
1: अच्छा,
0: भैया।
1: ये बताओ हो पंचम भैया, सब्जी भी के खेती
0: सब
1: किए हैं?
0: हाँ भैया, सब्जी की खेती नेनुआ है,
1: अच्छा
0: नेनुआ है करीब 1-7 बिस्सा नेनुआ इतने जो ना तर रोई।
1: अच्छा
0: तो अभी समय जिसको हम लोग चढ़ाते हैं इसका बांस वोत गाड़ करके
1: हाँ, धागे बांध के।
0: बांध करके चढ़ाते हैं।
1: अच्छा
0: और एक नेनुआ भैया एक चीज बता दी,
1: हाँ
0: जितने बढ़िया इसे खाद पान देंगे उसके
1: हाँ
0: पेड़ के वो
1: अच्छा
0: उतने बढ़ता है।
1: अच्छा
0: बढ़ने के बाद भैया मुझे एक सावधानी बहुत बढ़िया नेनुआ में ये होता कि
1: हाँ
0: जैसे नेनुआ भैया 12 बजे माने दिन में फूल आ,
1: अच्छा
0: और तरोई जो है वो रात में फूल आती है, नेनुआ दिन में। तो
1: अच्छा
0: जैसे सूरज निकलता है वैसे आपके नेनुआ फूल आता है,
1: अच्छा
0: और जैसे सूरज बंद हो जाता है वैसे भैया तरोई फूल आता है,
1: अच्छा
0: रात
1: अच्छा
0: में अपना वो अपना विकास करती है, फूलाते
1: हाँ
0: हैं आगे बढ़ते हैं। इसी खेती किए हैं 14-15 बच्चा, जब इसके छोटे छोटे गवाह हैं चढ़ा रहे हैं इसको।
1: अच्छा,
0: हाँ एक तो वो चढ़े तो अभी समय ले 1 महीना 15 दिन तक भैया।
1: बागो बगीचा है हो पंचम
0: बाग
1: भैया?
0: बगीचा भैया है, बाग बगीचा है, आम है, महुआ है, जामुन है, ये सब अपने ही उससे लगाए हैं,
1: अच्छा,
0: या अपने ही उम्र के अनुसार ये
1: हाँ
0: सारे पेड़ पौधे 3-4 बीघा में लगे
1: हाँ
0: हुए हैं, इसकी
1: अच्छा
0: देखभाल करते रहते हैं।
1: अच्छा तो ये बेचबो करते हैं बाजार में
0: अब
1: कि खाली खाए पिए अभी तक?
0: पहले तो भैया आप बताइए, देखें हमारे यहाँ जो प्रधानी नहीं होती गांव
1: हाँ हाँ
0: की,
1: हाँ हाँ
0: 52 से हमारे पिताजी प्रधान थे,
1: अच्छा,
0: और आज भी लगातार करीब करीब उसका गैप नहीं हुआ चले आते, तो हम लोगों के आदमी आते रहते हैं, भैया कोई ले गया, भैया हमारे ये है वो अक्सर दे दिया जाता, बेचना बहुत कम होता है जी इसके लिए। तो भैया
1: ये बताओ पंचम भैया, देखें साग सब्जी बोए हैं और साथे साथे धान के खेती की हैं, खाद के कैसे प्रयोग करते
0: देखें
1: हैं आप? कौन कौन
0: खाद
1: खाद
0: खाद
1: आप
0: भैया
1: प्रयोग
0: देखें
1: करते
0: ये
1: हैं?
0: जो आजकल चली ना डाई यूरिया पोटास ये सब जितना है इसका उपयोग बहुत कम करते हैं,
1: अच्छा
0: हम पूरा जैविक खेती का काम करते हैं।
1: अच्छा
0: जैविक में जैसे अभी कि इस धान जैसे नहीं बोए
1: हाँ
0: आपने
1: हाँ हाँ
0: लगाए हैं, तो इसमें वही हमारे यहाँ टमाटर खेती हम लोग ज़्यादा करते हैं,
1: अच्छा
0: टमाटर और आलू की।
1: हाँ
0: तो इसमें टमाटर के खेत में जो भी धान है वो अच्छा होता है,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: उसके बाद मूंग मूंग बोए थे, उड़द बोए थे, तो उस खेत में धान है
1: अच्छा
0: वो उसके लिए खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना जीवांश मिल जाता। फिर खाद कंपोस्ट वाली भी डालते हैं,
1: अच्छा
0: एक खाद की और रचना कार्बनिक खाद बनाते हैं भैया,
1: अच्छा वो कैसे बनाओ थे भैया?
0: कार्बनिक खाद भैया जैसे है ना गड्ढा 4 बाई करीब 11-12 का ऐसे करके खोद
1: अच्छा
0: करके
1: अच्छा हाँ
0: गड्ढे गहराई 3 फुट करते हैं।
1: हाँ हाँ
0: तीन
1: हाँ
0: फुट इसलिए करते हैं कि 3 फुट तक ही में ऐसे कीटाणु मिलते हैं जो खाद बनाते हैं।
1: अच्छा
0: तो उसमें जैसे अब घर का माने औरतें हैं ना वो सब वो छीलन फीलन साग सब्जी
1: हाँ,
0: का
1: खरपतवार जो निकलता है।
0: खरपतवार बहारन बटोरन सब देहात के है ना, बहारन बटोरन का नाम होता
1: हाँ
0: रहता है, तो उसको डालते रहते हैं। सावधानी भी है उसमें, कभी कभी ये होती है कि उसको देखते रहना पड़ता है, कभी कभी उसमें जैसे चूल्हे से नहीं खाना बनता
1: हाँ
0: तो
1: राख
0: माँ राख निकलती, तो
1: हाँ
0: भैया रखियो मिलावट पड़ जाता, मट्टी मिलावट पड़ जाता,
1: हाँ हाँ
0: ये सब तमाम जौन बा मिला के तब वोकर जीवांश करीब 6 महीना लेता है जी, छः
1: अच्छा
0: महीने में वो कार्बनिक खाद बन जाती है, उसके लिए
1: हाँ
0: फसल के लिए बहुत रामबाण
1: बहुत
0: है भैया।
1: हाँ,
0: और जैसे और बकरी का भी इस तरह से करते हैं, बकरी
1: हाँ
0: 11-12 जिलाए भैया, और
1: अच्छा
0: बकरी की देखें अब कहानी है कि नहीं वृक्ष पौधा जो भी लगाते हैं वो बकरी खाद देते हैं, उसमें बकरी की खाद से उसकी पूर्ति हो जाती है
1: अच्छा
0: भैया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ये बताओ हरी खाद का भी प्रयोग करते
0: हरी
1: हैं?
0: खाद अब सनई तो कम बोई जाती
1: हाँ
0: रैचा
1: दहीचा,
0: में, रैचा है उस रैचा बोए थे भैया, वो ज्यादा बढ़ नहीं पाया,
1: हाँ
0: लगाना
1: हाँ
0: शुरू हो गया धान में, तो उसको पटवा चिपाटा उठा चला के सरा के उसको
1: अच्छा धान लगाए दिए
0: धान
1: हैं।
0: लगाए
1: अच्छा
0: ऐसे।
1: बहुत अच्छा। के अच्छा ये बताओ मैं पंचम भैया, सिंचाई के क्या व्यवस्था।

0: है।
1: सिंचाई का अपन भैया एक तीन पंपिंग सेट निजी है,
0: अच्छा
1: तीन अपना पर्सनल है। और
0: हाँ
1: ये आज से नहीं है,
0: हाँ हाँ
1: सन 66 से मेरे पास लगातार जो है ये
0: अच्छा
1: अपने ही साधन से सींचते उसते।
0: अच्छा
1: खेती तभी बढ़िया हो पाती भैया,
0: हाँ
1: देख
0: हाँ
1: गुजारा
0: देखें पानी के
1: गुजारा।
0: जो
1: हाँ भैया
0: व्यवस्था
1: ना, ये
0: जरूर
1: गुजारा
0: होता।
1: परिवार का होता है ना
0: अच्छा ये
1: भैया।
0: बताओ सिंचाई में का चीज़ का बहुत ध्यान देवे के चाहिए।
1: सिंचाई में भैया सबसे पहले तो ये जो ध्यान देने की बात आए, अपने
0: हाँ
1: खेत का समतलीकरण नहीं होता
0: हाँ हाँ
1: बराबर।
0: हाँ बराबर
1: जब
0: कराए
1: तक
0: थे।
1: आप बराबर नहीं कराओगे आप फसल अच्छी नहीं ले सकते हो।
0: अच्छा
1: कहीं कहीं पौधा बूढ़ जाता है, कहीं कहीं ऊपर हो
0: हाँ, कतो
1: जाता
0: उच
1: है।
0: खाल रहता
1: समतलीकरण
0: था।
1: कराइए तब सिंचाई का माने उसमें पानी भी कम लगेगा
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: फसल भी अच्छा अपना करेगी।
0: अच्छा। कुछ किसान भैया बहनी हरिन कि पानी ज़्यादा बोर देते हैं जो
1: तो
0: उनमें से पानी का भी नुकसान होता और साथे साथे खेती का भी नुकसान होता।
1: और भैया वैसे आजकल खेती करे का जब तक आप वैज्ञानिक खेती ना करवा
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: अगर फायदा ना लेगा इससे।
0: अच्छा। ये बताओ भैया पशुपालन भी करत हुई हैं।
1: पशुपालन भैया बताए कि हमारे पास 5-6 भैंसे, गाय
0: अच्छा
1: अलग से,
0: हाँ
1: बकरी अलग
0: हाँ
1: से,
0: हाँ
1: और ये भी मेरा पैतृक एक तरह से है।
0: अच्छा
1: और कम से कम नहीं तो ये मेरी जानिश में 70-75 साल से मेरे यहाँ। भैया सही बता रहे हैं कि मेरे यहाँ 4-6 भैंस हमेशा लगती
0: अच्छा
1: है।
0: खूटा खाली नारहन का
1: खूटा
0: भाव।
1: खाली नहीं रहता जी, ये तमाम भैंस हो अच्छी सच्ची भैंस रखना और
0: हाँ
1: दूध करना, उसका दूध बिचवाते हैं जी।
0: अच्छा तो भाई दूध हो
1: हाँ
0: जब भाई से इतना आए हैं तो दूध हो
1: हाँ
0: चौधरी।
1: दूध बिचवाते हैं, दही
0: अच्छा
1: वगैरह, आप पहुँचे कोई पहुँचा, और जो आदमी उदमी कर रहे हैं सब उनको खिलाना पिलाना, तो
0: हाँ
1: खेती तब खेती बढ़िया हो जाती भैया।
0: हाँ हाँ
1: और
0: हाँ
1: आदमी मिल जाते तो
0: अच्छा घेऊ हो तो ही हैं।
1: आप घी भी होता है, लेकिन ये कि परिवार लंबा है, सब
0: अच्छा
1: खाते पीते रहते हैं, बहू बिटिया सब जो भी है उसमें कोनो रोक टोक नहीं। खाओ काम करो
0: हाँ हाँ
1: डेवलप करो अपना
0: हाँ
1: आप करो
0: अच्छा
1: विकास करो
0: पंचम भैया एक बात हम और
1: भैया।
0: पूछे चाहते रहे हैं
1: बताओ
0: कि
1: भैया।
0: देखें सरकार यह समय समय समय पे मोटा अनाज के बड़ा कम से प्रोत्साहन देता है।
1: नहीं भैया आप सुने सुने भाई,
0: हाँ
1: वो का श्री अन्न
0: श्री अन्न
1: हमारे
0: कहते
1: माने
0: हाँ
1: प्रधानमंत्री जी
0: प्रधानमंत्री
1: जो
0: जी
1: है
0: कहते
1: अभी,
0: तो।
1: नहीं कोदो बोए हैं जी, करीब 5-6 बीघा कोदो
0: अच्छा
1: और मकरा की बियल डाले हैं जी।
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: मकरा की बियल अब अभी थोड़ी छोटी है हो
0: हाँ हाँ
1: जाएगी, तो उसको
0: हाँ
1: जो है अब
0: हाँ
1: लगवाएंगे मकरा को।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा अच्छा तो हम ही कहते रहे हो पंचम भैया
1: भैया।
0: जिसे मोटा अनाज जौन होता है तो ओके अपने बिदा रखते थे कि बाजारे में बेचबो करा
1: हाँ
0: थे।
1: नहीं बेचते नहीं जी, खाते खूब हैं बजरी, जैसे बताए भैया कि 1 बीघा बजरी अपने खुद के लिए जो है वो खाने के लिए,
0: हाँ हाँ
1: और
0: हाँ
1: ये है अनाज ये सब खाते हैं जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: बताते
0: ये
1: हैं
0: बताओ पंचम भैया का मिश्रित खेती भी आप करते थे जैसे किसान
1: सुने।
0: भैया बनी हरे हैं कि एक।
1: नहीं मिश्रित खेती में जैसे हम आलू करते हैं,
0: हाँ हाँ हाँ
1: आलू में जैसे सरसों लेते हैं,
0: अच्छा
1: मटर लेते हैं,
0: हाँ हाँ
1: आलू
0: हाँ
1: लेते हैं,
0: अच्छा
1: इस तरह से खेती मिश्रित खेती करते हैं।
0: अच्छा ये समय मिश्रित खेती में
1: मिश्रित
0: जैसे
1: खेती में इस समय हमारे पास मिश्रित खेती का कोई इस समय नहीं
0: अच्छा ना बोए
1: नहीं
0: हैं
1: इस समय नहीं
0: कुछ किसान
1: बोए।
0: भैया बनी हरे मक्का में उर्दी बोई देते हैं
1: हाँ वो कोई
0: और।
1: बहुत ही भैया, लेकिन हम नहीं इस तरह से।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: जैसा और सब्जी वगैरह मसलई खेती कर लेते हैं भैया।
0: अच्छा
1: हाँ हाँ जैसे लहसुन हुआ,
0: हाँ हाँ हाँ
1: धनिया हुआ,
0: हाँ
1: प्याज हुआ,
0: हाँ
1: इसकी खेती करते हैं
0: अच्छा
1: भैया।
0: अच्छा
1: आप लहसुन की खेती करने के तरीके बता दिए भैया। जैसे नहीं आलू वालू मेड़ी नहीं बनाते हैं
0: हाँ हाँ
1: तो हम
0: हाँ
1: करीब लहसुन की खेती ज़्यादा करते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ तो
0: अच्छा
1: लहसुन की खेती करते हैं, लहसुन खेती में खाद पान जो भी है वही बकरी
0: अच्छा
1: खाद
0: जोन
1: डालते हैं
0: बकरी
1: भैया।
0: के काम से लेड़ी
1: डालते
0: होता
1: हैं
0: है ये
1: तो
0: सब खाद
1: लहसुन के,
0: होता है।
1: हाँ लहसुन का खेती करेंगे भैया। एक चीज़ बता दी अपने
0: हाँ
1: हम किसान भाई इनके कि
0: हाँ
1: लहसुन जैसे हरा उसका थोड़ा 6 महीने का पौधा होता है ये,
0: हाँ हाँ
1: और थोड़ा उसका डंठल जब हरा रहता है तभी खोदा जाता है। वो
0: अच्छा
1: कहीं जान ले कि लहसुन खोदे के बाद जो
0: हाँ
1: उन्हें दिन से आप खोदवा 27 दिन का भैया लहसुन बाढ़ता है। अगर 1 किलो का पौड़ा है वो मैं
0: हाँ
1: 300 ग्राम 250 ग्राम बाढ़ता है खोदने के बाद। 27 दिन के बाद जब 28 दिन लगेगा भैया लहसुन बंद हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बढ़ेगा। खोदने के बाद
0: हाँ हाँ
1: लहसुन
0: हाँ
1: अच्छा होता है
0: अच्छा
1: भैया।
0: अच्छा
1: इस तरह से प्याज भी इस तरह से अगर बढ़िया उसको लाना है प्याज करना है
0: हाँ हाँ
1: तो प्याज में भैया वो जो परत नहीं हो प्याज खाती तो जय पाती आप कई पौधा भैया तो
0: हाँ
1: ये परत होए हो माँ।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: एक पहले आउट ना हुई।
0: अच्छा अच्छा आप काम से हमारे प्रोग्राम में आए हैं और आपकी बातन से किसान भैया बहनी हरे लाभ ली हैं और एकर फायदा उठाई हैं आपके बहुत बहुत।

0: धन्यवाद।
1: हाँ भैया, देखा हो मेरी खेती मेरी बात के तहत पंचमलाल से रानू भैया कितना फरियाए फरियाए जानकारी लिहन, और उतने फरियाए फरियाए भैया पंचम भैया बतैबो केहन। हम तो कहब कि किसान भैया बहनी एका सुन के ऐसे लाभ उठावें ताकि अपने खेती किसानी के कामे में अच्छा कुछ कई के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो अब देखा हो अपने पंचायती में भाई खेती किसानी के साथे साथे तमाम ऐसन बात बत कही या गौनई भैया तमाम चीज़ सुनवावा जात है। तो वही में भाई एक लोक भाषा कविता पाठ भी समय समय पे पंच भैयन के सुनवावा जात है। तो शोभनाथ भैया के भैया लोक भाषा कविता पाठ भाई औत्य एका सुन लिया जात, ओकरे बाद आगे बात बत कही करत रहब।
2: धरती के हरियर बनाई, धरती के

हमसे बचाए जमाना, धूप घाम से बचाए जमाना, जीवन सब के बनाए सुहाना, पाई के शीतल छाई

जाती सब सुख पई हई, आवे वाला कल मुसकई हई। अंगना मानी मियाँ लगाई, अंगना मानी।

हाथ पकड़ी के हाथे सैया, हाथ पकड़ी के हाथे सैया, दुआरा बैठे पीपल छैया। हाथ पकड़ी के हाथे छैया, दुआरा बैठे पीपल सैया। बाबूजी के गाढ़ी कमाई, बाबूजी के गाढ़ी कमाई के चला सखी पेड़वा लगाई, धरती के हरियर बनाई के चला सखी पेड़वा लगाई, धरती के सुघर बनाई के चला सखी पेड़वा लगाई, धरती के हरियर बनाई के चला सखी पेड़वा लगाई। चांदी कै कर धनिया दियाई दिहा, चांदी

देखी सहेली सब जरी जई हैं, गौवा के लोग वन बतियाई हैं। हमरो कई तू कदरिया बढ़ाई दिया, हमरो कई तू कदरिया बढ़ाई दिया, चांदी कै कर धनिया दियाई दिया। जब जब डोली

चुप के रनिया, जब जब डोली हैं हमरी कनिया, हमका कई हैं रूप के रनिया। सुन के बतियाई सैया लजाई दिया, सुन के बतियाई सैया लजाई दिया। चांदी कै कर धनिया दियाई दिया, चांदी कै कर धनिया दियाई दिया। लाली वोठवा काने झुमका, पायल बा।

नाचत मोर कमरिया नचाई दिहा, नाचत मोर कमरिया नचाई दिहा, चांदी कै कर धनिया दियाई दिहा, चांदी कै कर धनिया दियाई दिहा, सुनवा कई दुई नथुनिया दियाई दिहा, चांदी कै कर धनिया दियाई दिहा। कभी अगर मैं रूठूं तो क्या तुम मुझे मनाओगी, कभी अगर मैं रूठूं तो क्या तुम मुझे मनाओगी, जीवन के अंतिम सांसों तक क्या तुम मुझको चाहोगी। कभी अगर मैं रूठूं तो क्या तुम मुझे मनाओगी, जीवन के अंतिम सांसों तक क्या ऐसे मुझको चाहोगी। हृदय के अंतिम छोरों तक क्या ऐसे मुझे बसाओगी, हृदय के अंतिम छोरों तक क्या ऐसे मुझे बसाओगी। कभी अगर जो हारा तो क्या तुम साथ निभाओगी, कभी अगर मैं रूठूं तो क्या तुम मुझे मनाओगी, जीवन के अंतिम सांसों तक क्या ऐसे मुझको चाहोगी। बंधन सातों याद तुम्हें हो, वचन कहें जो

0: याद तुम्हें हो, बंधन सातों याद तुम्हें हो, वचन कहें जो याद तुम्हें हो, कभी अगर मैं भूल भी जाऊं क्या तुम याद दिलाओगी, कभी अगर मैं भूल भी जाऊं क्या तुम याद दिलाओगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी। एक दूजे को समझा लेंगे कम थोड़ा या ज़्यादा हो, एक दूजे को समझा लेंगे कम थोड़ा या ज़्यादा हो, कभी कोई ना वादा हो बस संग रहने का इरादा हो। रख कंधे पर हाथ मेरे क्या तुम गले लगाओगी, रख कंधे पर हाथ मेरे क्या तुम गले लगाओगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी। कुछ पल तुम जो साथ चले हो हर पल साथ चलोगी क्या, कुछ पल तुम जो साथ चले हो हर पल साथ चलोगी क्या, जीवन की आपाधापी में मुझसे बात करोगी क्या। कभी गिरूं मैं ठोकर खाकर, कभी गिरूं मैं ठोकर खाकर क्या तुम मुझे उठाओगी, कभी गिरूं मैं ठोकर खाकर क्या तुम मुझे उठाओगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी। धूप में ठंडी छाँव हो तुम, दुख में सुख का भाव हो तुम, धूप में ठंडी छाँव हो तुम, दुख में सुख का भाव हो तुम, सुंदर फूलों के बागों का एक सुगंधित गांव हो तुम, घर आंगन को तुम ऐसे ही हर पल क्या महकाओगी, घर आंगन को तुम ऐसे ही हर पल क्या महकाओगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी। बिखर गए हो रूप भले पर, बिखर गए हो रूप भले पर मुझको सुंदर दिखती हो, बिखर गए हो रूप भले पर मुझको सुंदर दिखती हो, कभी प्रेम तो कभी वेदना इन आँखों में लिखती हो। मेरी लिखी हुई कविता को क्या तुम लय में लाओगी, मेरी लिखी हुई कविता को क्या तुम लय में लाओगी, कभी अगर मैं रूठ भी जाऊं क्या तुम मुझे मनाओगी, कभी अगर मैं रूठ भी जाऊं क्या तुम मुझे मनाओगी, जीवन के अंतिम सांसों तक क्या ऐसे मुझको चाहोगी, जीवन के अंतिम सांसों तक क्या ऐसे मुझको चाहोगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी।
1: हाँ भैया, देखा ये लोक भाषा कविता पाठ रहा। और शोभनाथ भैया कितना फरियाए फरियाए के भाई देखा अपने समाज का चित्रण कई गेन कि समाज में भाई प्रेम और भाई भाईचारा का अगर भाव बना रहे तो निश्चित रूप से दुनिया आगे बढ़त रही और समाज में एकता अखंडता विद्यमान रहता है। तो यह कुल के जरूर ध्यान मनई रखें कि समाज में मिलजुल के रहे, प्रेम भाईचारा से रहे और एक दूसरे के प्रति भाई सद्भाव बनाए रखा है। और दूसर भाई इनके कविताई के माध्यम से देखा अपने जौन पर्यावरण और प्रकृति के भाई हरियाली बनी रहे, एकरे बदे पेड़ पौधा मनई लगावत रहे। और इस समय तो बहुत बढ़िया चलत बाय, बरसात भी होत बाय, तो जहाँ भी खाली जमीन होए और हमारे किसान भैया बहनी अगर गड्ढा पहले से खोद के तैयार किए रहा हुई हैं तो पेड़ जरूर लगाए दें। ऐसे भाई उन्हें पेड़ में पेड़ के बढ़वार में भी सुविधा हुई, काहे से कि समय समय पे बरसात होत बाय, पानी उन्हें मिलत रही। तो बस इतने है कि ओकर देखभाल करत रहें। कही जात है कि भाई जितना महत्व मनैन के बाय, लड़िका गदेला के बाय, उसे ज़्यादा महत्व कहीं न कहीं पेड़ पौधा के बाय और अपने हरियाली पर्यावरण के बाय। तो अगर पर्यावरण सुरक्षित रही बचा रही तो हमार तोहार जीवन भैया निरोगी काया हमेशा बरकरार रही। और एक फायदा हमें तुम्हें जरूर मिलत है कि जितना ज़्यादा पेड़ पौधा धरती पर रही हैं बन रही, उतने ज़्यादा भाई अपन पर्यावरण भैया बढ़िया बना रही। और बरसात जौन कहिया थन कि वर्षा भैया आकर्षित करथिन पेड़ पौधा, तो ऐसे समय समय पे बरसात के जब आवश्यकता पड़ी पेड़ पौधा बदे और अपने फसलन बदे तो समय समय पे बरसात भी होत रहत है। तो तमाम फायदा है भैया पेड़ पौधा लगावे के। और पेड़ पौधा से भाई देखा जोन इमारती लकड़ी अपन मिलथिन है यहू के भाई प्रयोग बाद में मनई के आवत है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ही है न कि पेड़ पौधा से भाई जब लाग रहत है मनई दोपहरिया में मान लग खेते में काम करत बाय,

तो भैया छहाएं बदे देखा वो पेड़े पौधा का आसरा खोजत है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमें तुम्हें सोचे के परी, सचेत हुए के परी कि हम तू भाई देखा तमाम जंगल जौन पेड़ पौधा वाला रहन ओका भैया काट के कहीं न कहीं खेत के रूप में बदल दिए, या भाई तमाम ऐसन फैक्ट्री लग गईन जहाँ तमाम पेड़ पौधा रहन तो ओकरे भरण के लिए ओकरे भाई पूर्ति के लिए हमार तुहारी फर्ज बनत है कि हम तू आपन पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाई के ओकर संरक्षण करी ताकि आपन पर्यावरण भैया जैसे पहले बना रहा बढ़िया वैसे बना रहे। अब बात आवत है कि बरसात के मौसम में जौन आपन पशु हैं लरुआ है तो उनके भाई समय समय पे शुद्ध और ताज़ा पानी पियावत रहें और जहाँ उन्हें वो बांधत हैं तो वहाँ भैया साफ़ सुथरा रहे, कोनो प्रकार के गंदगी न रहे ताकि भाई वो अनबोलता जानवर हैं उन्हें इनाई भैया बोल के न बताए पाई हैं कि हमरे प्यास लाग बा हमरे भूख लाग बाए, तो उन्हें समय समय पे चारा दाना पानी आपन देत रहें। और एक बात और कहब, हम भाई देखा किसान मनई है और कहे बिना रहू ना जात, एकरे नाते ये जरूर सचेत करब कि जे भी किसान भैया बहनी अपने खेते में सब्जियन के खेती किए हुई हैं खास कह के भैया खास कर लता वाली सब्जी, तो देखा बरसात के मौसम में खेते में पानी लग जाता है तो ओकर गवा जौन है हो कि गवा पानी में भैया सराय लागत है, तो सबसे पहले काम करें कि वह हमें नाली बनाए दें ताकि बरसात के पानी अपन बहरे चला जाए। और हम तो मेड़ टाइप अगर बनाए दी हैं तो जोन ओकर पौधा है जहाँ जड़ है वह पानी न लागी, और पानी भैया न लागी तो पौधा अपन बढ़िया तरीके से फलत फूलत रही, और जोन सब्जी वाली खेती हैं तो बढ़िया तरीके से ताज़ी सब्जी उन्हें मिलत रही। और चलत चलावत हम किसान भैया बहनिन से अरदास करब कि जोन हमारी कार्यक्रम जात है पंचायत घर वाला तो यह में बढ़िया बढ़िया जानकारी दिया जाता है, उन्हें कौन और जानकारी की जरूरत है कौने विषय पे बातचीत करी कि ताकि उनके खातिर लाभदायक हो तो अपन प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। और एक फ़ोन नंबर बाट है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है भैया अपने रेडियो के, तो यह व्हाट्सएप नंबर पे अपन प्रतिक्रिया व्यक्त करें, तो व्हाट्सएप नंबर है 800-49-26-250। एक बार और भैया बता दी 800-49-26-250। तो अब देखा चले कि बेला भाई तो अब राम जोहारी किया जाए, तो पंचो राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, ये आपको जानकारी दे दे हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। रात 10 बजे सुनिएगा रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 7:30 पर और रात 8:15 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रमा सेन के स्वर में भजन और गीत सुनिएगा। श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी आई है में। प्रस्तुति होगी नेहा गुप्ता की। 8:30 पर कार्यक्रम आज इतवार है। इस कार्यक्रम में सुनिएगा सूरज कपूर की लिखी झलकी हाय स्वीटी हाय डार्लिंग। और रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा होगा। तो ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर अजय कुमार से की गई बातचीत, प्राकृतिक खेती एक आवश्यक जानकारी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश की वार्ता होगी युवाओं में बढ़ता रक्तचाप। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर और रात 10:30 पर पंडित रामकृष्ण का क्लेरियोनेट।

कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज 8:45 पर सुनिएगा, फिल्म संगीत 9 बजे, दिन में 11:30 पर, रात 8 बजे और रात 10 बजे सुनिएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर मीरा तिवारी और शाम 7:45 पर आशुतोष श्रीवास्तव के स्वर में भजन और गीत सुनिएगा। वॉयस ऑफ प्रयागराज 10:05 पर, लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में 10:30 पर कलाकार होंगे हरिश्चंद्र पांडे और विनीता तिवारी। कार्यक्रम एक ही कलाकार से 11 बजे।

12:30 पर कार्यक्रम सुनिएगा आपकी पसंद। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 12:15 गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी संस्कृति द्विवेदी की वार्ता, फैशन टेक्नोलॉजी में कैरियर की संभावनाएं, साथ ही जायका और निखार होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा 2:30 पर। शाम 5:00 नन्हे मुन्नू का कार्यक्रम नन्ही दुनिया होगा और 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम। शाम 7:30 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र कुमार की वार्ता होगी समकालीन कथा, साहित्य में लालित्य की कमी, और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा सुनिएगा 9:30 पर। तो ये थे हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। 800 परिवारों में बांटी राहत सामग्री। प्रदेश में नदियां उफान पर। भारी बारिश से 5 लोगों की मौत। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नियुक्त किया गया उपराज्यपाल। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी जनसंख्या गणना। 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना का विकल्प भी रहेगा उपलब्ध। और प्रदेश में अलग अलग दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत, कई घायल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया तथा बाढ़ प्रभावित 800 परिवारों को राहत सामग्री, आश्रयहीन परिवारों को आवास के लिए भूमि आवंटन प्रमाण पत्र और राहत राशि प्रदान की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में पूरी मजबूती और संवेदनशीलता के साथ आपके साथ खड़ी है।
1: आज आपदा की इस घड़ी में आप सबको राहत सामग्री के साथ साथ मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता तो प्रधानमंत्री आवास, और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे दो।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट में एसडीआरएफ और पीएसी की अतिरिक्त कंपनियों को बाढ़ नियंत्रण, राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। श्री योगी ने कहा कि फसल नुकसान का सर्वे भी करवाया जाएगा और आकलन के आधार पर राहत राशि मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को राहत शिविरों में भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा की समुचित और प्रभावी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इस दौरान श्री योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। प्रदेश में बैराजों से पानी छोड़े जाने और भारी बारिश से राज्य के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और कई नदियां अब भी उफान पर हैं। भारी बारिश से कानपुर में मकान गिरने से 4, बदायूं में

0: एक व्यक्ति की मौत हो गई। शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। वहीं प्रशासन ने गर्रा और खखरा नदियों के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। श्रावस्ती जिले की जमुनहा तहसील अंतर्गत वीरपुर लौकहिया में राप्ती नदी के तेज बहाव से आसपास की जमीनें जलमग्न हो गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फर्रुखाबाद में खतरे के निशान के नज़दीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल बनाया गया है। वो अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में जनसंख्या की गणना आगामी 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: यूपी, उत्तराखंड सहित 4 राज्यों के मैदानी इलाकों में जनसंख्या की गणना 1 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 4 जनवरी तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा राज्यों में 2027 के शुरू में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को समय से पहले कराया जा रहा है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने इस संबंध में जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा है कि इन क्षेत्रों के लोग 16 नवम्बर से 30 नवम्बर तक स्वयं जानकारी दर्ज कराने का विकल्प अपना सकते हैं। गणना के बाद 5 जनवरी से 9 जनवरी तक संशोधन चक्र भी चलाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025 आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और मेरठ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में कराई गई। परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा के क्रम में यांत्रिक अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, सिविल अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण, केमिकल अभियंत्रण, कंप्यूटर, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फुटवेयर, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, लेदर टेक्नोलॉजी, कर्मशाला अधीक्षक, वास्तुकला, भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी और गणित शिक्षकों के पद शामिल हैं। ब्रिक्स समूह के सहभागी देशों के मुख्य न्यायाधीशों सहित 65 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल ने आज ताजमहल और आगरा किला देखा। इस प्रतिनिधिमंडल में रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया सहित 10 से ज्यादा देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए। हल्की बारिश के बीच ताजमहल पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने ताज के सौंदर्य को निहारा और डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया। ताजमहल की खूबसूरती से अभिभूत इन सदस्यों ने इसके इतिहास, निर्माण शैली और पच्चीकारी कला के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। बाद में प्रतिनिधिमंडल आगरा किला पहुंचे और वहां भी कई ऐतिहासिक स्थलों और मुगलकालीन स्थापत्य कला को देखा। मथुरा जिले में ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जनपद की 120 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। इन लाइब्रेरियों में अब तक 1,536 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ग्राम पंचायत सचिव

0: विद्यालयों में बनाई गई इन डिजिटल लाइब्रेरियों में उपयोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा साहित्य, महापुरुषों का जीवन परिचय समेत कई विषयों पर उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसी माह पुस्तकालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर और LED के बंदोबस्त के बाद ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की जाएंगी। हज 2027 के लिए चयनित आजमीन हज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस दो चरणों में कराना अनिवार्य किया गया है। पहला चरण चयन के बाद और दूसरा हज यात्रा की उड़ान से पहले कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव मोहम्मद तारिक ने बताया कि पहले चरण में आजमीन हज को सरकारी चिकित्सा केंद्र से एलोपैथिक डॉक्टर का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। इस सिलसिले में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में अलग अलग दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। संभल जिले के बहजोई इलाके में आज सुबह ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों का स्थानीय और मुख्यालय अस्पताल में उपचार चल रहा है। उधर कौशाम्बी के महेवा घाट इलाके के भटपुरवा गांव के 3 बच्चे यमुना नदी में नहाने के दौरान तेज बहाव की चपेट में आने से गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी डूबकर मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। 800 परिवारों में बांटी राहत सामग्री। प्रदेश में नदियां उफान पर, भारी बारिश से 5 लोगों की मौत। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नियुक्त किया गया उपराज्यपाल। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी जनसंख्या गणना। 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना का विकल्प भी रहेगा उपलब्ध। और प्रदेश में अलग अलग दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत, कई घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जब दिन ढलने लगता है परिंदे अपने घोंसलों की ओर लौट चलते हैं और शाम की तन्हाई धीरे धीरे गहराने लगती है, ठीक उसी वक्त हवाओं में एक बेहद सुरीला, शांत और भक्तिरस से सरोबार राग घुलने लगता है। जी हाँ, आज हमारी संगीत यात्रा का पड़ाव है राग यमन कल्याण। तो आइए सुनते हैं राग यमन कल्याण पर आधारित गाना। फिल्म का नाम है हम दोनों, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने, लिखा है साहिर ने और सुरों से सजाया है जयदेव ने।
4: अभी न जाओ छोड़ कर

श्रोताओं, इस राग का जादू पुरानी फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि 90 के दशक में भी इसने संगीत प्रेमियों को अपना दीवाना बनाया। थिरकते हुए संगीत और यमन कल्याण के मेल से बना हुआ गीत सुनिए फिल्म पाकीजा से, जिसे गाया है लता मंगेशकर जी ने और लिखा है कमाल अमरोही ने और सुरों से सजाया है गुलाम मोहम्मद ने।

श्रोताओं, राग यमन कल्याण में प्रेम और समर्पण का एक अद्भुत भाव छिपा है और इस राग को कोई उम्दा गज़ल गायक अपने सुरों से सजाता है तो रूह मचल उठती है। आइए सुनते हैं ये गज़ल जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम गीत से, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने, लिखा है इंदीवर ने और सुरों से सजाया है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं रमा सेन। आइए सुनते हैं इनसे ये भजन।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और आज की कलाकार हैं रमा सेन। अब आइए सुनते हैं इनसे ये गीत।

रमा सेन के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुने कार्यक्रम चिट्ठी आई है में। कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता से बातचीत की है वंदना राठौर ने।

0: चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना राठौर का नमस्कार। श्रोताओं, आपके खूबसूरत से संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और उन्हीं संदेशों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता जी। नेहा जी नमस्कार।
1: नमस्कार वंदना जी और सभी सुधीर श्रोताओं को नमस्कार, अभिनंदन कार्यक्रम चिट्ठी आई है में।
0: और नेहा जी, ये जो पहला संदेश मुझे दिखाई पड़ रहा है ये है ग्राम लोहड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से
1: जी।
0: और हमारे श्रोता हैं जयपाल यादव जी और ये कहते हैं कि आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं और जिस तरह के जन उपयोगी कार्यक्रम यहाँ से सुनाए जाते हैं वो हमारे मन को बहुत खुश करते हैं। साथ ही जीवन के संदर्भ में जो बातें आप लोग बताते हैं वो सुनकर तो आनंद आ जाता है। इसके लिए हम पूरी टीम को बधाई देते हैं और स्वागत अभिनंदन करते हैं आप सभी का।
1: बहुत सुंदर जयपाल जी और आपका पूरा परिवार। ये जो जीवन संबंधी बातें हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में बताई जाती हैं, सच कहूं तो हर रंग को हमारे कार्यक्रमों ने समेटा हुआ है अपने आप में। और जब ये रंग की छटाएं बिखरती हैं चहु ओर तो शायद इस तरह के पत्र हमारे केंद्र आ पहुंचते हैं। तो शुक्रिया जयपाल जी, कोशिश रहेगी कि ये जो जीवन की सुगंध है वो हर कार्यक्रम में हम समेट कर रखें और आप सभी लोगों तक पहुंचाएं।
0: और नेहा जी
1: जी,
0: व्हाट्सएप फरमाइश और फोन इन कार्यक्रम जो जी। मधु जी प्रस्तुत करती हैं तो उनका जो अंदाज है वो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आता है। तो देखिए ये हैं मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित देशमुख और प्रथमेश सर्वत कल्पना सानवी और प्रणाली देशमुख जी का है। और साथ ही साथ ये हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष, ये हमें लिख रहे हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। और एक संदेश और दिखाई पड़ रहा है सियरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से।
1: हा हा,

0: शेख जियाउर रहमान जी का ये संदेश है
1: जी।
0: और इन सभी लोगों ने कहा है कि मधु जी की जो पेशकश होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, इतने अच्छे तरीके से वो संदेशों को शामिल करती हैं, और उनकी जो कोशिश होती है कि सभी श्रोताओं के संदेश और फरमाइश जो है वो पूरी हो, तो इसके लिए हम उन्हें साधुवाद देते हैं।
1: शुक्रिया आप सभी का प्रशांत जी, शेख जियाउर रहमान जी, और महाराष्ट्र से जोधपुर से आप सभी ने पत्र लिखा है। मधु जी, इस कार्यक्रम को लेकर वो आपकी पसंद हो, हेलो फरमाइश हो, हेलो अनुरोध हो, बहुत संजीदा रहती हैं। कई बार वॉइस ऑफ प्रयाग भी सवेरे सवेरे वो प्रस्तुत करती हैं। तो ये जो कोशिश है कि सबको इस सुंदर से माला में शामिल करना है, सबको रखना है, ये जो चाहत है कि हर किसी का स्थान इस कार्यक्रम में ज़रूर हो, तभी वो शायद अपनापन पनपने लगता है ना। देखिए, अब मधु जी से आप सभी लोग डायरेक्टली ना मिले हों, लेकिन आवाज़ के ज़रिए, फरमाइश के ज़रिए जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का साधुवाद मधु जी तक ज़रूर पहुँचाएंगे।
0: और हमारी जो नियमित श्रोता हैं
1: जी
0: उर्दू कार्यक्रम की, खास तौर पर डॉक्टर अर्शिया सरफराज
1: जी,
0: वो प्रयागराज से हमसे जुड़ रही हैं, और वो कहती हैं कि 24 अगस्त को रशीद जहां की तहरीरों में हकीकत निगारी सुना कार्यक्रम, डॉक्टर अब्दुल मुहीब और डॉक्टर कहकशा इरफान की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी, जिससे रशीद जहां के मुतालिक हमारी मालूमात में इजाफा हुआ बहुत। इस बेहतरीन पेशकश के लिए निकहत सिद्दीकी और प्रदीप मिश्र, जावेद अहसन और प्रयागराज आकाशवाणी की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी ओर से।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्शिया। जब डॉक्टर कहकशा इरफान प्रस्तुतियां देती हैं हमारे केंद्र पर आकर के, तो सच कहूँ कि दोबारा जब हम सुनते हैं उन्हें, और ये जो आप बात कह रही हैं कि बहुत मालूमाती जान पड़ते हैं, ज्ञान में इजाफा होता है, अच्छी चीज़ सूचना से भरी हुई और सटीक तरीके से जब हम कोई बात सुनते हैं, तो शायद वो जो ज्ञान है वो एकदम पक्का हो जाता है, और जब समय आता है तो वो ज्ञान बिल्कुल मानस पटल पर उभर आता है और हम अपना एक अलग स्थान बना पाते हैं। तो शुक्रिया उर्दू कार्यक्रम को पसंद करने के लिए।
0: और नेहा जी, एक संदेश हमें मिल रहा है, लेकिन इनका मैं नाम खोज रही हूँ
1: जी,
0: लेकिन नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनका कहना है कि मेरे विचार से स्टार्टअप संस्कृति आज की युवाओं को नौकरी खोजने वाले से नौकरी देने वाला बनने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन केवल आइडिया होना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए सही मार्गदर्शन, पूंजी, तकनीकी ज्ञान और बाजार की समझ भी जरूरी है। यदि युवाओं को इन क्षेत्रों में उचित सहयोग मिले तो भारत की युवा शक्ति देश के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और ये मेरे विचार हैं जिसे मैं साझा कर रहा हूँ, और कृपया इसे जरूर अपने कार्यक्रम में, चिट्ठी आई में शामिल कीजिएगा।
1: बहुत शुक्रिया, और एकदम सटीक विश्लेषण किया है आपने। आपने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन देखिए बात कितनी अच्छी कही आपने। हमारे केंद्र से युववाणी कार्यक्रम में, अक्सर हिंदी कार्यक्रम में, या हम वॉइस ऑफ प्रयाग में भी इस तरह के उद्योगपतियों को, एंटरप्रेन्योरशिप को, बैंकर्स को बुलाते हैं और बातचीत करते हैं। और ये जो आपने कहा, सिर्फ आइडिया होना पर्याप्त नहीं है, अगर उसको शक्ल देनी है तो कई चीज़ों का ज्ञान होना और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो यकीन मानिए, हम अगला कार्यक्रम भी जब निर्माण करेंगे इस तरह का, तो ज़रूर इन बातों को ध्यान में रखेंगे। शुक्रिया आपका।
0: और नेहा जी, शिवा जायसवाल और नेहा श्रीवास्तव जी प्रयागराज से जुड़ रही हैं, और ये कहती हैं कि हमारा पसंदीदा कार्यक्रम तो पनघट है जो कि हमें बहुत पसंद आता है, और ख़ास तौर पर जब ये बहनें हमारी बोलती हैं कार्यक्रम जो पेश कर रही होती हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा हमारा गांव का एक माहौल पूरा तैयार हो गया है। और जो फ़ोन इन कार्यक्रम था जिसमें कि एडवोकेट नाज़िया नफीस जी आई थी, तो ये कहती हैं वो कार्यक्रम बहुत ही मालूमाती था, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ हमें अपने संबंधी यानी स्त्री संबंधी जो बातें थी या अधिकार थे उसके बारे में हमें जानने समझने का मौका मिला।
1: बहुत शुक्रिया शिवा जायसवाल जी और नेहा श्रीवास्तव जी। जरा देखिए मन न, हम सभी अपना देखें, हर बार भागने दौड़ने का नहीं करता ना, जी करता है कि थोड़ा सा ठहर जाएं, और ये जो ठहराव है हमारी उस गति को संबल प्रदान करता है जब हम मेन स्ट्रीम में शामिल होते हैं। तो दोनों का अपना महत्व है, इसीलिए तो हम लोगों ने गृहलक्ष्मी और पनघट जैसे कार्यक्रमों को शेड्यूल किया है। तो नेहा जी और

0: शिवाजी, इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया। हेलो पनघट अच्छा लगता है, तो इस बार की तरह अगली बार भी सितंबर के आखिरी सप्ताह में ज़रूर शेड्यूल करेंगे और कोशिश रहेगी कि जनोपयोगी जानकारी आप सभी तक पहुंचे।
1: और नेहा जी, माधुरी कुशवाहा जी कोठा पारशा प्रयागराज से हमसे जुड़ रही हैं और माधुरी जी का कहना है कि बहुत ही सुंदर, मनमोहक और जानकारी भरी प्रस्तुति थी। गुरुदत्त साहब के बारे में बहुत कुछ जानने समझने को मिला। प्यासा फिल्म की जो जानकारी आप लोगों ने दी, उस शूटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया, दिल को वो बातें छू गई कि किस तरह से ये किरदार गुरुदत्त साहब ने खुद ही निभाया था और किस तरह से वो हर एक निर्माण कार्य का एक एक उसकी इकाई से जुड़े रहते थे। और साथ ही साथ ही कहती हैं कि उसके बाद जब आप लोगों ने कागज़ के फूल की शूटिंग की बात की तो ये लगा कि सही बात है कि पूरी तरह से ये फिल्म गुरुदत्त साहब पर ही आधारित थी एक तरह से, जब हम देखते हैं इसे। और जिस तरह से बातें आप लोगों ने बताई गुरुदत्त साहब की दोस्ती की, जो कि देवानंद साहब के साथ थी, वो भी बहुत अच्छी थी। जिक्र जब आप लोगों ने कैफी आजमी साहब की नज्म का किया तो आंखें द्रवित हो गईं। कुल मिलाकर ये प्रोग्राम बहुत ही मर्म स्पर्शी था। इतना संवेदनशील यादगार प्रोग्राम बनाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम किया था उज्ज्वल जी ने, बातचीत की तुलनात्मक रूप से आज की जो पीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी की विशेषताओं के बारे में बताया और बुजुर्गों को लेकर जो संवेदनशीलता है आज के दौर में है या नहीं है उसके बारे में जो बातें की, वो थोड़ी सी चिंताजनक भी लगी और ये लगा कि नहीं, कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी होती है उनका मार्गदर्शन, उनका अनुभव कितना ज़रूरी होता है। और ये कार्यक्रम इतनी खूबसूरती के साथ में उन्होंने प्रस्तुत किया था उज्ज्वल जी ने, और जिस तरह के गीत शामिल किए थे वो बहुत ही मन को छू लेने वाले थे। और प्रेरणादायी कार्यक्रम बनाने के लिए उज्ज्वल सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया माधुरी कुशवाहा जी खसा गोई का। ये जो कार्यक्रम था गुरुदत्त साहब पर, वो सभी के दिल के बहुत करीब इसलिए पहुँच पाया कि उस पर जो हम लोगों ने रिसर्च वर्क किया था, बहुत सूक्ष्म तरीके से गुरुदत्त साहब को समझा था कि असल में वो जो बात कहते हैं कि वो फिल्में नहीं बनाते, वो ज़िंदगी को गढ़ रहे होते हैं और ज़िंदगी जिस रूप में घटित हो रही होती है बस उसको कैप्चर करते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे शेड हैं जो दिल जीत लेने वाले हैं, तो कोशिश रहेगी कि इस तरह के अंक हम आप सभी के समक्ष लाते रहें। और उज्ज्वल सिन्हा जी द्वारा जो नमस्कार प्रयागराज प्रस्तुत किया गया, अभय कांत तिवारी जी इस कार्यक्रम के इंचार्ज हैं, तो भाई आपका ये जो साधुवाद है ज़रूर हम उन तक प्रेषित करेंगे। शुक्रिया माधुरी जी आपका।
1: और अपने संदेश के साथ जुड़ रही हैं नीरा त्रिपाठी जी अशोकनगर प्रयागराज से। और नीरा जी कहती हैं कि किस्सा गोई में दो महान विभूतियाँ जो इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी उनके द्वारा जब कार्यक्रम को सुना गुरुदत्त साहब के ऊपर, तो मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। दिल को छू ले रहा था ये कार्यक्रम। गुरुदत्त साहब सच में महान कलाकार हैं। उनकी जो प्यासा थी और कागज़ के फूल के निर्माण की कहानी सुनाई तो उन स्मृतियों को हम लोग भी जीने लगे। लग रहा था कि बस ये घड़ी की सुइयां इतनी धीरे धीरे चले कि ये वक्त बस यूं ही रहे, थम सजाए गुजरे ना। और साथ ही साथ इन्हें पसंद आ रहा है नमस्कार प्रयागराज, जिसमें नीलम सिंह जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। सावन और बारिश पर जो गीत सुनवाए नीलम जी ने वो बहुत अच्छे थे। बारिश में किस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बारिश बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आती हैं, उसके बारे में सतर्क किया नीलम जी ने। और वरिष्ठ नागरिक दिवस पर नमस्कार प्रयागराज की प्रस्तुति उज्ज्वल सिन्हा जी द्वारा हुई बहुत बहुत खूबसूरत थी। बुजुर्ग किस तरह से हमारी आन बान शान है, उनका ध्यान हम सबको ही रखना चाहिए। उनकी दवा का ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, उन्हें प्यार दें और उनकी यादों को साझा करें, उनको सम्मान दें। ये सारी बातें मन को छू गईं। पूरी टीम को शुभकामनाएं।
0: शुक्रिया नीरा त्रिपाठी जी, विवेक सत्यांशु जी। सच कहूँ नीरा जी, गुरुदत्त साहब पर काम करते करते हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा। वो जो ठहराव है, ज़िंदगी को जानने समझने की कला है, और वो जो बात वो कहते रहे हैं, अगर काम करने का मन सच

0: में है तो कोई काम असंभव नहीं है। तो ये तो उनके व्यक्तित्व की खास बात रही है। तो कोशिश रहेगी कि इसी तरह से आप सभी के समक्ष हम नए नए कार्यक्रमों को लाते रहें। और उज्ज्वल सिन्हा जी, नीलम सिंह जी, मोना जी, अखिलेश जी, वंदना जी और हमारे जो प्रेमेंद्र जी हैं, बाकी के टीम मेंबर्स बहुत सुंदर काम करते हैं। तो भाई उनकी हौसला अफजाई के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का।
1: तो नेहा जी देखिए, अब समय आ गया है कि हमारे श्रोताओं ने सोशल मीडिया के ज़रिए जो अपना प्यार हम तक पहुंचाया है, हम उनके नाम ज़रूर शामिल कर लें। तो नाम शामिल हो रहा है इसमें कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से जो श्रोता है, हमारे देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। और साथ ही साथ ये हमसे जुड़ रहे हैं सीताराम कांगड़ा एकता कॉलोनी रोहतक से, बबीता बोट, निखिल तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा, संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू जी पोटिया कला दुर्ग से हमसे जुड़ रही हैं।
0: जी बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने व्हाट्सएप नंबर पे और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप सभी ने पसंद किया है। तो इसी तरह से जुड़ी हमारे केंद्र से बहुत शुक्रिया।
1: और श्रोताओं, अब समय आ गया है कि हम आपको बताएं अपना पता। तो लिखिए कार्यक्रम चिट्ठी आई है, द्वारा केंद्र निदेशक 7-9 दयानंद मार्ग, आकाशवाणी प्रयागराज। हमारा पिन कोड नंबर है 211001 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो श्रोताओं, हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: श्रोता अभी अपने पत्रों के उत्तर सुन रहे थे कार्यक्रम चिट्ठी आई में। कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता से बातचीत कर रही थी वंदना राठौर। प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

संगीत भावनाओं की वह भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कोई गीत बीती हुई यादों को जगा देता है, कोई मन को सुकून देता है, तो कोई जिंदगी के किसी अनकहे सच से हमारा परिचय करा जाता है। आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही सदाबहार गीतों के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं, जिनकी धुन में बीते दौर की मिठास है, शब्दों में जिंदगी की सच्चाई है और आवाज़ में ऐसी कशिश जो बरसों बाद भी दिल को छू जाती है। पहला गीत हम आपके सामने लेके आ रहे हैं फिल्म ठोकर से, मैं ढूंढता हूँ जिनको। आवाज़ है मुकेश की, बोल साजन दहलवी के, और गीत है श्याम जी घनश्याम जी का।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना है फिल्म अनाड़ी का, बोल हैं शैलेंद्र के और गीत है शंकर जयकिशन का, आवाज़ मुकेश की।

अगला गाना आप सुनने जा रहे हैं फिल्म गाइड से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, बोल शैलेंद्र के और संगीत SD परमन का।

फिल्म संगीत के इस सफ़र में अगला गाना आप सुनने जा रहे हैं फिल्म गाइड से। आवाज़ है SG बर्मन की, बोल शैलेंद्र के और गीत SD बर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज इतवार है। आज इस कार्यक्रम में सुनिए सूरज कपूर की लिखी झलकी, हाय स्वीटी हाय डार्लिंग।

0: रेखा, डार्लिंग रेखा।
1: सुन लिया, सुबह हुई नहीं कि डार्लिंग वाली की रट लगानी शुरू कर दी।
2: आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? 9-9 बजे तक पड़े खर्राटे मारिएगा तो कर चुके आप काम।
3: अरे डार्लिंग, आज सुबह सुबह चाय की जगह ये प्रवचन किस खुशी में हो रहा है?
2: साफ कह दे रही हूँ मिस्टर पतिदेव कि अब जब घर में नौकर आएगा तभी आपको चाय नाश्ता मिलेगा, वरना चाहे होटल में खाइए चाहे यार दोस्तों के।
3: अरे भाई, मैंने कई लोगों से कह रखा है, अभी कल ही मिसेस खन्ना से कहा था कि कोई नौकरानी।
2: आपको तो नौकरानी ही चाहिए, नौकर क्यों नहीं कहा?
3: अरे मैंने सोचा खाली समय में नौकरानी से तुम्हारा मन बहलता रहेगा और
2: बखत बेबखत आप भी उससे अपना मन बहलाते रहेंगे।
3: अरे तुम बड़ी समझदार हो रेखा, हालांकि औरतों में समझ नाम की चीज बहुत कम पाई जाती है।
2: जी हाँ, औरतें अपनी समझदारी मर्दों के दिमाग में जो फिट कर देती हैं।
3: क्या बात कही है रेखा डार्लिंग, यानी कि आदमी का दिमाग ना हुआ बैंक का लॉकर हो गया।
2: तभी तो खाली रहता है और उसमें दूसरों का माल भरा रहता है।
3: सच कहती हो डियर, अब देखो ना, हम मर्दों के दिमाग से काम लेने के लिए ही तो औरतें शादी करके आदमियों के घर आती हैं, वरना औरतें बेचारी।
2: बेकार की बातें छोड़िए और उठकर तैयार होइए।
3: लेकिन चाय?
2: बिल्कुल नहीं, पहले नौकर का इंतजाम कीजिए, बाद में चाय वाय की बात।
3: अरे वो तो नौकरानी के लिए मिसेस खन्ना से।
2: मिसेस खन्ना गई चूल्हे भाड़ में, मैं आज ही मिस्टर वर्मा से नौकर के लिए कहती हूँ।
3: मिस्टर वर्मा से क्यों, मैं कहता हूँ मिसेस वर्मा से बात करो, अरे वो बड़ी अच्छी महिला है।
2: आपको दूसरे की औरत तो अच्छी लगेगी ही, काली भोंडी और गंवार तो अपनी पत्नी ही होती है।
3: अरे तभी तो कहता हूँ कि नौकरानी रखो मिसेस खन्ना से।
2: मैं कहती हूँ इस घर में नौकरानी नहीं आएगी, नहीं आएगी।
3: यही तो मैं भी कहता हूँ डार्लिंग, कि एक घर में दो दो नौकरानियाँ क्या करेंगी।
2: मैं नौकरानी हूँ तभी मैं कहूँ आजकल कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं।
3: देखा रानी, तुम तो टेस में बहाने लगी। यानी मेरा मतलब ये था कि जब किसी नौकर नौकरानी का प्रबंध नहीं होता ना, तुम मैके चली जाओ।
2: मैके चली जाऊं और आप यहाँ किसी चमक छल्लो को नौकरानी बनाकर उसके साथ रोमांस लड़ाएं।
3: औरतें हमेशा उल्टा ही सोचती रहती हैं। मैं तो ये कह रहा था कि इसी बहाने अपनी माँ से मिला होगी।
2: ओह मम्मी, आपने अच्छा याद दिलाया, मुझे मम्मी से मिले बहुत दिन हो गए हैं, मैं आज ही उन्हें चिट्ठी लिखती हूँ।
3: तुम कितनी अच्छी हो रेखा, मैं तो तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूँ। हाँ
2: मेरे जाने का इंतजाम, मैं कहाँ जा रही हूँ?
3: अरे भाई तुम ही तो भी कह रही थी कि मम्मी से मिले बहुत दिन हो गए हैं।
2: तभी तो चिट्ठी लिख रही हूँ जनाब, मैं अपनी मम्मी को यहीं बुला रही हूँ।
3: क्या तुम अपनी मम्मी यानी कि मेरी सास को यहीं बुला रही हो?
2: जी हाँ, यानी कि बुला

0: रही
1: हे
0: हूँ।
1: भगवान, कहाँ फंस गया? अब तो तुरंत ही नौकर नहीं नौकरानी का प्रबंध करना ही होगा।
2: जी
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपको मैंने पहचाना नहीं।
1: जी मुझे वर्मा ने भेजा है।
0: मिस्टर वर्मा ने?
1: जी वो नौकर के लिए।
0: नौकर के लिए? नौकर के लिए तो मैंने खुद ही उनसे कहा
1: जी
0: है।
1: हाँ जी हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन
0: आजकल नौकरों की इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि कुछ न
1: जी
0: पूछिए। बैठिए, एक एक कप चाय पी जाए, साथ में नौकर की भी बात होती रहेगी। मिस्टर वर्मा से हमारे घर जैसे ताल्लुकात हैं। अरे इधर बैठिए ना, आप तो तकल्लुफ कर रहे
1: जी
0: हैं।
1: मैं ऐसे ही ठीक हूँ। दरअसल वो नौकर।
0: बैठिए तो पहले। हाँ अब ठीक है, आपकी नजर में कोई नौकर वौकर है?
1: जी हाँ है।
0: फिर आप क्यों परेशान हो रहे
1: मैं
0: हैं?
1: परेशान नहीं हो रहा हूँ मैम साहब, मैं तो आपकी परेशानी दूर करने आया हूँ।
0: क्या मतलब?
1: मुझे मिस्टर वर्मा ने भेजा है आपके यहाँ काम करने के लिए। मेरा मतलब है नौकर।
0: क्या तुम यानी कि आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये शानदार कपड़े और
1: जी
0: ये।
1: जी दरअसल मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, और 8 जमात तक गांव के स्कूल में पढ़ा भी हूँ।
0: यानी तुम वाकई नौकर हो?
1: जी
0: तो पहले क्यों नहीं बताया? गेट अप, यहाँ सोफे पर क्यों बैठे
1: जी
0: हो?
1: जी वो आप ही ने तो कहा था
0: तुम्हारा नाम क्या है?
1: डार्लिंग।
0: क्या कहा तुमने?
1: जी वो आप ही ने तो नाम पूछा था
0: हाँ मगर तुमने क्या बका?
1: डार्लिंग।
0: व्हाट? फिर वही? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे पड़ रही है? मैं तुम्हारा नाम पूछ रही हूँ और तुम
1: तो वही तो बता रहा हूं, और आप
0: तो क्या तुम्हारा नाम?
1: डार्लिंग है।
0: ओह, तो तुम्हारा नाम कुछ और नहीं हो सकता है?
1: मुश्किल है
0: क्यों?
1: जी, दरअसल पहले मेरा नाम प्यारे था, लेकिन जिन गोरे साहब के यहाँ पहले काम करता था उन्हें यह नाम पसंद नहीं आया, सो एक दिन बोले तुम्हारा नाम प्यारे हमको माफिक नहीं पड़ता, हम इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करेगा और आज से हम तुमको डार्लिंग बोलेगा। बस मैम साहब, तब से मैं डार्लिंग हो गया।
0: अब तुम फिर से प्यारे बन जाओ।
1: ये नहीं हो सकता,
0: क्यों?
1: क्योंकि जब कोई हमें डार्लिंग कहकर पुकारता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: मगर डार्लिंग तो मैं अपने हस्बैंड यानी तुम्हारे साहब को कहती
1: अब
0: हूँ।
1: मुझे भी कहिएगा
0: ठीक है, तो डार्लिंग तुम क्या क्या काम करते
1: जो
0: हो?
1: आप कहें,
0: वैसे यहाँ काम ज्यादा नहीं
1: कोई
0: है।
1: हर्ज नहीं, जितना है उतना ही करूंगा,
0: तुम्हारे साहब महीने में 10 दिन बाहर रहते
1: उनका
0: हैं।
1: काम भी मैं कर दिया करूंगा।
0: नहीं, तुम्हें सिर्फ अपना ही काम करना है।
1: बिल्कुल ठीक मैम साहब
0: तो आज से काम शुरू?
1: जी।
0: नहीं आज से नहीं, कल से। आज तो मैं एक सहेली के यहाँ पार्टी में जा रही हूँ, रात भर वहीं रहूंगी। कल से आना, समझे?
1: बिल्कुल समझ गया।
3: सुधीर बाबू का मकान यही है ना?
4: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और मैं ही सुधीर हूँ।
3: जी नमस्ते।
4: नमस्ते, बैठिए बैठिए, मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: जी मुझे मिसेस खन्ना ने भेजा है।
4: आई सी, अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। हाँ, अब फरमाइए।
3: वो आपने उनसे नौकरानी के लिए कहा था ना?
4: जी हाँ कहा तो था, लेकिन देखिए ना आजकल नौकरानी मिलती कहाँ है।
3: आप ठीक कहते हैं,
4: मैं
3: लेकिन
4: समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, आप भी शायद नौकरानी की तलाश में होंगी।
3: नौकरानी की तलाश में नहीं, नौकरी की तलाश में।
4: ओहो समझा। देखिए अभी तो मेरे ऑफिस में कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन जल्दी ही एक स्टेनो की वैकेंसी होने वाली है। अरे आप आराम से बैठिए ना।
3: ओफो, आप गलत समझ रहे हैं, मैं नौकरानी का काम करने आई हूँ।
4: आप नौकरानी,
3: हाँ
4: यानी कि आप क्या मजाक कर रही
3: आप इसे
4: हैं?
3: मजाक क्यों समझ रहे हैं?
4: इतनी कीमती साड़ी।
3: जी, जहां मैं पहले काम करती थी ना, वहां के मालिक ने खुश होकर ये साड़ी दी थी। पहली बार अपने मालिक के पास आई हूं ना, इसीलिए नई साड़ी पहनी है।
4: लेकिन नौकरानियां इतनी सुंदर तो होती नहीं।
3: आपको सुंदर लड़कियां पसंद नहीं है
4: नहीं
3: क्या?
4: नहीं नहीं मुझे तो मेरा मतलब है कि सुंदर लड़कियां बहुत पसंद है जी, बहुत पसंद है। क्या नाम है तुम्हारा?
3: स्वीटी
4: क्या कहा? अरे
3: स्वीटी स्वीटी,
4: अरे धीरे बोलो, धीरे धीरे धीरे, अगर रेखा आ गई और सुन लिया तो हम लोगों की खैर नहीं। हाँ स्वीटी वीटी बाद में होगा, पहले अपना नाम बताओ।
3: यही तो नाम है मेरा, यानी स्वीटी। आपको ये नाम पसंद नहीं है
4: नहीं
3: क्या?
4: नहीं बड़ा प्यारा नाम है। तुम काम क्या क्या करती हो?
3: सब कुछ।
4: खाना बना सकती हो?
3: हाँ मेरे हाथ का
4: अच्छा
3: खाना खाने के बाद तो आप मेम साहब के हाथ का खाना भी भूल जाएंगे।
4: वंडरफुल वंडरफुल। देखो तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। हाँ सारा काम। अरे कहने को मैं मालिक हूं, पर हुक्म मालकिन का चलता है।
3: वो डांटती तो नहीं है?
4: चिंता ना करो स्वीटी, डांट तो हम मर्दों को पड़ती है। वैसे एक बात बता दूं, तुम्हारी मेम साहब मुझसे झगड़ा करके साल में 4-6 महीने अपनी माँ के यहाँ रह आती हैं।
3: मैं उनकी कमी पूरी कर दूंगी।
4: यानी कि

0: नहीं, तुम अपना काम करोगी और मैं जो कहूंगा वो।
1: ठीक है, जो आप कहेंगे वही करूंगी। डार्लिंग, ओ डार्लिंग।
2: आया मैम साहब। जी मैम साहब।
1: सब काम कर दिया?
2: हाँ मैम साहब।
1: सफाई हो गई?
2: जी मैम साहब, फ्रिज की पूरी सफाई कर दी।
1: क्या मतलब?
2: आपने सफाई करने को कहा था ना, सो उसके अंदर रखी मिठाई खाकर प्लेट अच्छी तरह साफ कर दी और दूध पीकर भगोना साफ करके किचन में रख दिया।
1: ये सब करने को तुमसे किसने कहा
2: जी,
1: था?
2: जी
1: के बच्चे, यही तुम 8वीं तक पढ़े हो?
2: जी, नकल करके पास हुआ था।
1: अब शाम को मेहमान आएंगे तो उन्हें क्या मैं अपना सर खिलाऊंगी? और अरे ये कपड़े कहाँ से लाया तू?
2: वो मैम साहब, अपने कपड़ों की सफाई कर दी मैंने, पहनने को कुछ नहीं था सो साहब का कमीज पैंट पहन लिया।
1: हे भगवान, किस बुद्धू के पल्ले पड़ी मैं।
2: साहब बुद्धू हैं क्या?
1: शट अप, जाओ पहले किचन बंद करो, फिर बाजार चलना
2: जी
1: है।
2: जी मैम साहब।
1: बाप रे, मर खपकर एक नौकर मिला और वो भी ऐसा। लेकिन फटकारने से काम नहीं चलेगा, अगर छोड़ गया तो। डार्लिंग जरा इधर आना।
3: डार्लिंग, लगता है रेखा ने मुझे कहीं से देख लिया। आज तो बड़ी खुश मालूम होती है।
4: मैं आ गया।
3: ये कौन है? अरे उसने पुकारा डार्लिंग और इसने कहा आ गया। मामला कुछ समझ में नहीं आया, जरा कान लगाकर सुनो तो।
1: देखो डार्लिंग, अभी हम लोगों को बाजार चलना है, साहब के आने का टाइम हो रहा है, हम लोगों को जल्दी करना चाहिए।
4: मैं तैयार हूँ।
1: ऐसा करो डार्लिंग, तुम पीछे के दरवाजे से निकलकर महिला ब्रदर्स के बाहर मिलो, मैं मेन गेट में ताला लगाकर मिसेस वर्मा से मिलती हुई आती हूँ।
3: डार्लिंग को पीछे के दरवाजे से भेज दिया? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं कोई उल्लू का पट्टा हूँ जो समझू ना। अरे देख लूंगा दोनों को मैं।
1: अरे आप आप यहाँ क्यों खड़े हैं?
3: क्यों, तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गई?
1: चौंक इसलिए गई श्रीमान जी कि आप अपने ही घर के दरवाजे पर अजनबी की तरह खड़े हुए हैं।
3: मुझे लग रहा है कि मैं वाकई अजनबी हूँ या कोई सपना देख रहा हूँ।
1: आज आप बड़े साहित्यिक डायलॉग बोल रहे हैं। अच्छा आप अंदर चलिए, मेज पर आपके लिए नाश्ता लगा दिया है, चाय खुद बनाकर पी लीजिएगा, मैं अभी आती हूँ।
3: अरे तुम चली कहाँ?
1: लौट कर बताऊंगी। डार्लिंग वहाँ मेरा इंतजार कर रहा होगा।
3: यानी कि इस कदर खुल्लम खुल्ला इश्क, मेरे सामने अपने उल्लू के पट्टे डार्लिंग से मिलने गई। देख लूंगा, समझ लूंगा, डाइवोर्स कर दूंगा। ऐसे समझती है कोई दूसरी मिलेगी ही नहीं है।
1: तो ये मुई स्वीटी है जिसके इश्क में जनाब मजनू बने घूमते हैं। चुड़ैल ने साड़ी भी मेरी पहन रखी है, अभी समझती हूँ। लेकिन पहले दोनों की बातें तो सुन लो।
3: देखो स्वीटी, रेखा के आने के पहले ही सारा काम हो जाना चाहिए।
1: मैं तैयार हूँ।
3: हाँ अरे देखो ना, तुम्हारे आते ही घर की दशा बदल गई स्वीटी। काश तुम कुछ दिन पहले आ गई होती ना तो
1: क्या होता,
3: तो ये घर स्वर्ग बन जाता स्वीटी।
1: आप तो हर घर तारीफ। तारीफ तो मैं करती हूँ तेरी आकर। तो ये लक्षण है आपके, दिन दहाड़े घर में किसी लड़की को। पहले मुझे तलाक दे लेते, फिर
3: पहले मेरी बात तो सुनो।
1: बहुत सुन चुकी आपकी बातें और स्टूडेंट स्वीटी की भी।
5: मैं
1: की बच्ची, रखते मेरी साड़ी और निकल यहाँ से।
5: मैं अब आपके यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगी मालिक। मेम साहब।
1: मालिक? मेम साहब?
3: अरे वही तो मैं कहना चाह रहा था रेखा, ये नौकरानी है, मिसेस खन्ना ने इसे यहाँ भेजा है और इसका नाम स्वीटी है।
1: तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
3: अरे तुमने बताने का मौका ही मुझे कब दिया?
1: मुझसे गलती हुई स्वीटी रानी, मैं गलत समझी थी, मुझे माफ कर दो ना।
5: मैं अब आपके यहाँ ये नौकरी नहीं करूँ।
1: अरे नहीं नहीं, ऐसा कसम ना करना, तुम जैसे चाहो काम करो, तुम ये साड़ी भी पहने रहो। अरे डार्लिंग आ गए तुम।
3: डार्लिंग? अच्छा तो आप हैं रेखा के डार्लिंग और मेरी कमीज पैंट झाड़े हुए हैं। अरे अरे अरे, वो क्या लगा रखी है, उतार मेरे कपड़े। और रेखा रानी, अभी इतनी हाय तोबा मचा रखी थी स्वीटी के लिए और ये मेरे जीते जी मेरे सामने। अरे ना, मैं कह रहा हूँ पागलपन की एक्टिंग मत करो। हाँ मैं आज ही डाइवोर्स की एप्लीकेशन मूव करता हूँ, फिर रहना मजे में अपने डार्लिंग के साथ। अरे
1: बकवास, आपको नौकरानी मिली स्वीटी और मुझे नौकर मिला डार्लिंग।
3: क्या नौकर? यानी कि क्या इसका भी नाम है डार्लिंग?
2: जी हाँ।
1: समझे जनाब, इसे मिस्टर वर्मा ने भेजा था, आप यहाँ ये दोनों ही काम करेंगे। बाप रे, इनके नामों ने भी खूब गुल खिलाया। हाय स्वीटी।
2: हाय डार्लिंग।

अभी आप सुन रहे थे सूरज कपूर की लिखी झलकी हाय स्वीटी हाय डार्लिंग। भाग लेने वाले कलाकार थे शिपालोक, अंजलि सिंह, सैयद इकबाल, अहमद, सीमा श्रीवास्तव। प्रस्तुति थी विनोद रस्तोगी की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और

0: एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
1: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
5: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था

0: में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉ. यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक सैन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
4: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

0: Men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched their maiden title at the China Masters in Shenzhen today. The Indian duo defeated China's He Ji Ting and Ring Xiang Yu 11-21, 21-13, 21-17 in the summit clash to secure country's first ever title at the tournament. The victory marks the duo's 10th career title on the BWF World Tour. It is also the Indian pair's second title of the season. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives. Calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China's Masters. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं अब्दुल वाहिद। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में एक कसीर मंजिला इमारत मुनदिम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और 11 अफराद को बचा लिया गया है। बहुत से अफराद के बारे में अंदेशा है कि ये मलबे में दबे रह गए हैं। बचाव कार्रवाई जारी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारत को 2029 तक नशीले मादों से पाक बनाने के एक 3 साल खाके का ऐलान किया है। उन्होंने मंशियात के नेटवर्क्स के खात्मे के लिए 4 नुकात पर मुश्तमिल हिकमत अमली तैयार की है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो नशीले मादों के गलत इस्तेमाल से दूर रहें और एक सेहतमंद और बाउसूल ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने सोशल मीडिया के तामीरी इस्तेमाल पर जोर दिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत के बढ़ते हुए स्टार्टअप इको निज़ाम को मेट्रोपॉलिटन मरकजों से आगे तक वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने मजबूत तर साइंस, स्टार्टअप्स और सनअती राबतों पर जोर दिया है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी ने शेंजेन में पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। आज दोपहर नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक कसीर मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और बहुत से लोग मलबे में दब गए। दिल्ली की वज़ीरे आला रेखा गुप्ता ने जाय हादसा का दौरा करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि अभी तक 11 अफराद को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये इमारत पुरानी थी और इसकी तजदीद और तामीर का काम जारी था। मोहतरमा गुप्ता ने कहा है कि इस हादसे के कसूरवार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा, ख्वाह वो इमारत का मालिक हो या कोई अफसर।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: वज़ीर आला ने कहा कि सभी एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही हैं और हर एक की तवज्जह लोगों को महफूज तरीके से बचाने पर है। उन्होंने ये भी कहा कि राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू जाय हादसा पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतल्लिका एजेंसियों को मुकम्मल तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी ताकि तेज तर बचाव कोशिशों को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ज़रूरतमंदों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाई जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने

0: इमारत मुनहदिम होने के इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुक्काम जाय हादसा पर काम कर रहे हैं और मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। वज़ीरे आज़म ने मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। इसी दौरान वज़ीरे दाखिला अमित शाह ने वज़ीरे आला रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और NDRF के डायरेक्टर जनरल से बातचीत करके सूरत हाल का जायज़ा लिया है। वज़ीरे दाखिला ने यह भी कहा कि मकामी इंतजामिया और NDRF करीबी तालमेल के साथ बचाव कार्रवाई अंजाम दे रही हैं और जख्मियों को सभी तरह की जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। NDRF के IG NS बुंदेला ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि NDRF की दो टीमें जो अमले के 70 अफराद पर मुश्तमिल हैं जाय हादसा पर काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये टीमें फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और मकामी लोगों के साथ मिलकर अपना काम अंजाम दे रही हैं।
1: दो टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग

0: अमले के 70 अफराद पर मुश्तमिल हैं, जाए हादसा पर काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये टीमें फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और मकामी लोगों के साथ मिलकर अपना काम अंजाम दे रही हैं।
1: दो टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी तक 6 अफराद को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने बताया कि मकामी तफ्तीश के दौरान पता चला है कि यह इमारत 40 से 50 साल पुरानी थी और हादसे के वक्त इमारत के तहखाने में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज भारत को 2029 तक नशीले मादों से पाक बनाने का एक 3 साला खाका जारी किया। उन्होंने नशीले मादों की रोकथाम की तालमेल के साथ अंजाम दी जाने वाली कौमी सतह की एक मुहिम के लिए कहा। जनाब शाह गोवा के अपने 3 रोज़ा दौरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2019 से कानून लागू करने, एजेंसियों के माबेन एक दूसरे को सुराख फराहम करने, माली तहकीकत और बाज़ आबादकारी के इकदाम को मुस्तहकम बनाया है। 2014 से 2024 तक की मुद्दत में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज़्यादा नशीले मादे जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 1,89,000 करोड़ रुपए है, जबकि 48,66,000 किलोग्राम नशीले मादों को ख़त्म किया गया।
2: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26,00,000 किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: जनाब शाह ने कहा कि इस खाके के 4 सुतून हैं: सुराग रसानी और कार्रवाई पर मबनी कानून का नफाज, पेशगी मालूमात और मसनूई तौर पर तैयार किए गए नशीले मादे, मांग और नुकसान में कमी, ने सलाहियत साजी और तालमेल।
2: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: हुकूमत ने अगले 3 साल में नशीले मादों के बैन अल-अक़वामी और बैन रियासती सतह के 100 नेटवर्क्स को ख़त्म करने, नशीले मादों के कारोबार में मुलविस 100 फरार अफराद को भारत लाने और नशीले मादों से मुतालिक 100 खुफिया लेबोरेटरीज को तबाह करने का मकसद तय किया है। बाद में वजीर आला रेखा गुप्ता ने सत्यनिकेतन इमारत इन्हदाम की जगह से बचाए गए और तिब्बी इलाज के लिए लाए गए अफराद से मुलाकात के लिए एम्स के ट्रोमा सेंटर का दौरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी तलबा का इलाज जारी है। उन्होंने डॉक्टरों की टीम को हिदायत दी कि वो हर ज़रूरी मेडिकल इमदाद को यकीनी बनाएं। मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार मुतासरीन के कुनबों के साथ भी रबते में है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो सेहतमंद और उसूल पसंदाना जिंदगी गुजारें, नशीले मादों से दूर रहें और नशा मुक्त भारत की तामीर में ताउन दें। उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया को तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करें और इसे हद से ज्यादा वक्त न दें। वो आज गुवाहाटी में सेहत उलूम की श्रीमंत शंकरा देव यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद के सालाना जलसे से खिताब कर रहे थे।
3: And restrict your social media usage. Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: नायब सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि तालीमी इदारों को चाहिए कि वो तलबा को उनकी पेशा वाराना जिंदगी से आगे बढ़कर तैयार करें और जमहूरियत और समाज के लिए जिम्मेदार शहरी बनाने पर तवज्जो दें। آج گوہاٹی میں گیتا نگر کالج کی گولڈن جوبلی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوالٹی تعلیم، تحقیق اور کردار سازی ملک کی ترقی کے لیے لازمی ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ نے اعلیٰ تعلیم میں خواتین

0: की बढ़ती हुई हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए इसे खुशाइन तब्दीली और नारी शक्ति का इजहार करार दिया। नायब सदर जमहूरिया आज से आसाम के दो रोज़ा दौरे पर हैं। साइंस टेक्नोलॉजी और ज़मीनी उलूम के मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के तेज़ी से वसी होते हुए स्टार्टअप इको निज़ाम को मेट्रोपोलिटन मरकजों से आगे ले जाने और साइंस स्टार्टअप्स और सनत के माबेन मजबूत तर राबते तश्कील देने के लिए कहा है ताकि मुल्क में तैयार की गई टेक्नोलॉजीज़ के लेबोरेटरीज से लेकर मार्केट प्लेस तक के सफर में तेजी लाई जा सके। कोलकाता में आज छठे राइस कॉन्क्लेव 2026 के इफ्तिताही जलसे से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बात की जरूरत बढ़ती जा रही है कि दूसरे और तीसरे दर्जों के शहरों की इख्तराई सलाहियतों को तस्लीम किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत के 50 से 60% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स का ताल्लुक मेट्रो शहरों से नहीं है। उन्होंने कहा कि इनमें से 15% से ज्यादा कारोबार दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के नौजवान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई नदियों में अब भी तुगयानी है और 24 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। कानपुर में 4 अफराद हलाक हुए हैं और बदायूं में शदीद बारिश के सबब हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। इंतजामिया ने गारा और खागरा नदियों के किनारे और नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। श्रावती ज़िले में राप्ती नदी के पानी की सतह में इजाफे के सबब कटाव हुआ है और आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में सैलाब से मुतासिर इलाकों का फजाई सर्वे किया और रामघाट का ज़मीनी मुआयदा भी किया। उन्होंने सैलाब से मुतासिर 800 कुनबों को इमदादी सामान फराहम किया और बेघर हुए कुनबों को मुतबादिल ज़मीन के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। वज़ीर आला ने लोगों को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: सैलाब ने बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। गंगा, गंडक और कोसी समेत तमाम बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। गंगा में बढ़ती हुई पानी की सतह के पेश नज़र नशीबी इलाकों में खसूसी निगरानी रखी जा रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज गिद्धों के तई बेदारी पैदा करने से मुतालिक बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर पंचकुला में एक कौमी वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में जनाब भूपेंद्र यादव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत किसी मखसूस नस्ल के जानवर के तहफ़ुज़ तक महदूद रहने के बजाय एक जामे और इको निज़ाम पर मबनी मॉडल के माहौलियाती तहफ़ुज़ के नुक़्ते नज़र पर तवज्जो मरकूज कर रही है। कोयले की वजारत ने मीडिया की उन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें पंजाब के हरारती प्लांट्स में बिजली की पैदावार की कमी की वजह मरकज़ की तरफ से कोयले की नाकाफी सप्लाई करार दी गई थी। वजारत ने वजाहत की कि पंजाब के बिजली प्लांट्स को कोयले की वाफर दस्तियाबी कराई गई थी। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया ने गुज़िश्ता रोज़ उनकी तकर्री को मंजूरी दी थी। जस्टिस त्रिपाठी इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 7 कलीदी ओपेक प्लस मुल्कों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने आज वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग का इनेकाद किया जिसका मकसद आलमी मार्केट के हालात और मजमुई तौर पर खाके का जायज़ा लेना था। उन्होंने अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार से मुतालिक अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की। ये मीटिंग ईरान और अबनाए हुरमुज के आसपास तनाज़े में मुलविस मुल्कों समेत तेल बरामदाद में लगातार रखना अंदाजी के पस मंज़र में मुनक़िद की गई। बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स का डबल्स का खिताब जीत लिया है। शिंजेन में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने चीन की ही जिंगटिंग और रिन जियांग यू की जोड़ी को 11-21, 21-13 और 21-17 से शिकस्त दी। चाइना मास्टर्स में भारत की पहली खिताबी जीत है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक कसीर मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और 11 अफराद को बचा लिया गया है। बहुत से अफराद के बारे में अंदेशा है कि ये मलबे में दबे रह गए हैं। बचाव कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत को 2029 तक नशीले मादों से पाक बनाने के एक 3 साला खाके का ऐलान किया है। उन्होंने मंशियात के नेटवर्क के खात्मे के लिए 4 नुकात पर मुश्तमिल हिकमत अमली तैयार की है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो नशीले मादों के गलत इस्तेमाल से दूर रहें और एक सेहतमंद और बाउसूल ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने सोशल मीडिया के तामीरी इस्तेमाल पर भी जोर दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत के बढ़

0: ते हुए स्टार्टअप इको निज़ाम को मेट्रोपॉलिटन मरकजों से आगे तक वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने मजबूत तर साइंस, स्टार्टअप्स और सनअती रावतों पर जोर दिया है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी ने शिनजिन में पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीता है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। इश्क की दुनिया भी अजीब दुनिया है। यहाँ कभी किसी की याद सुकून देती है तो कभी वही याद दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। और सच तो ये है कि मोहब्बत में इंसान अपने दिल का मालिक कहाँ रह जाता है। कभी किसी की याद में मुस्कुराता है तो कभी उसी याद में तन्हा बैठकर अपने आप से बातें करने लगता है। तेरी यादों का सफर आज भी जारी है, दिल की दुनिया में वही एक बेकरारी है। गालिब की शायरी और सबसे बड़ी खूबी यही है कि सदियां गुजर गई मगर उनके अल्फाज आज भी हमारे अपने एहसास लगते हैं। और जब इन्हीं अल्फाज को तलत महबूब की मखमली दर्द में डूबी हुई आवाज मिलती है तो गजल का असर और भी गहरा हो जाता है। फिल्म मिर्जा गालिब के अब सुनिए तलत महबूब की आवाज में गालिब की ये यादगार गजल।

फिल्म जहां आरा का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज दोनों मिलकर प्रेम की उसी नाजुक और खामोश दुनिया को हमारे सामने लाती है। तो आइए महसूस करते हैं मोहब्बत की उस खामोशी को, जहां शब्द कम और एहसास ज्यादा हैं।

मोहब्बत में हर बात जुबां से कही जाए ये ज़रूरी नहीं, कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। खामोशियों की अपनी एक जुबां होती है, हर बात कहने की ज़रूरत कहाँ।

एहसास जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं, कभी ये खामोश निगाहों में दिखाई देता है, कभी किसी की याद में और कभी किसी की आवाज में। मोहब्बत नाम है जिसका, वही तो जिंदगी है। जो दिल में उतर जाए वही सबसे हंसी है। और जब इश्क के जज्बात दिल की सरहदें पार करने लगें तो आवाज में भी एक अलग सी गर्मी महसूस होती है। दिल में छुपी बात हर लफ्जों में ढल जाए, मोहब्बत की कहानी फिर मुकम्मल हो जाए। इन्हीं नर्म, नाजुक और जज्बाती एहसासों को अपनी आवाज में ढालते हैं मोहम्मद रफ़ी, और उनकी आवाज में मोहब्बत सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं आप गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। इंतजार मोहब्बत का शायद सबसे खामोश मगर सबसे खूबसूरत एहसास है, जिसे हमसे मिलना हो उसके आने की आहट का इंतजार, और जिसे भूलना चाहें उसकी याद का बार बार लौट कर आना। इंतजार में भी एक अलग ही मजा है, कोई दिल के पास ना होकर भी दिल में बसा है। कभी किसी की याद आंखों में ठहर जाती है और कभी की किसी की तस्वीर दिल में उतर जाती है। वो सामने नहीं फिर भी नजर में रहता है, कोई तो है जो मेरी हर खबर में रहता है।

श्रोताओं, कभी कभी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा भी अपने भीतर बहुत कुछ छुपाए होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है मगर आंखों में कोई अनकही कहानी। मोहब्बत में दर्द भी अजीब होता है। इंसान अपने आंसू छुपाकर मुस्कुरा तो देता है मगर दिल से निकला सवाल फिर भी सामने वाले तक पहुंच ही जाता है। हंसते हुए चेहरे को देखकर खुश मत होना। कुछ दर्द मुस्कान के पीछे भी चलते हैं। जो कह नहीं पाते अपनी जुबान से, वही दर्द अक्सर आंखों से निकलते हैं। और इसी अनकहे दर्द, इसी खामोश सवाल को आवाज देते हैं गजल सम्राट जगजीत सिंह। फिल्म अर्थ की ये गजल

श्रोताओं, जिंदगी अपने आप में एक खूबसूरत सफ़र है। इस सफ़र में बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से रिश्ते बनते हैं, लेकिन हर मुलाकात मोहब्बत में बदल जाए ये ज़रूरी नहीं। कभी किसी का मिलना जिंदगी को यादगार बना देता है और कभी किसी की जुदाई पूरी उम्र याद रहती है। कुछ लोग जिंदगी में यूं ही नहीं आते, आकर फिर उम्र भर दिल से नहीं जाते। मोहब्बत भी शायद एक खूबसूरत संयोग है। किसी को मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है और किसी को ना मिले तो उसकी तलाश ही जिंदगी का हिस्सा बन जाती है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर 10 बजने को है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रसारण में अब हम आपके लिए श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा। वी विल नाउ ब्रिंग यू द कर्नाटक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत।
0: श्री एनआर प्रशांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक हैं, जो संगीत क्षेत्र में अपने अभिनव और शोध आधारित असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री एनआर प्रशांत की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ बेंगलुरु में विद्वान आरके पद्मनाभ के मार्गदर्शन में हुआ। श्री तिट्टे कृष्णयंगार जैसी महान विभूतियों से प्रेरित होकर आपने विदुषी नीला रामगोपाल के सानिध्य में अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। तत्पश्चात प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन जी के आदरणीय मार्गदर्शन में आपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बारीकियों की गहरी समझ प्राप्त की। आपने मैसूरू विश्वविद्यालय से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी। आप वर्तमान में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी संगीतमय यात्रा की एक विशेष और अद्वितीय उपलब्धि एक राग संगीत सभाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना है। वर्ष 2001 में आपको सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित एवं नियुक्त किया गया था।
1: श्री एनआर प्रशांत इज अ डिस्टिंग्विश्ड वोकलिस्ट इन कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक रेनाउंड फॉर हिज इनोवेटिव एंड रिसर्च ओरिएंटेड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड। श्री एनआर प्रशांत म्यूजिकल जर्नी कमेंस्ड in Bengaluru under the guidance of Vidwan R.K. Padmanabha. Inspired by stalwarts like Shri Tite Krishna Iyengar, he pursued his advanced training under the tutelage of Vidushi Neela Ramgopal. Subsequently, under the revered mentorship of Professor R. Vishweshwaran, he gained a deep understanding of the subtle nuances of Carnatic classical music. He earned a degree in engineering in instrumentation technology from the University of Mysore. He is currently a prestigious A-grade artist of Akashvani. A distinct and unique highlight of his musical journey is the successful presentation of the Ekaraga concert series. In the year 2001, he was invited and appointed as a senior faculty member at the Singapore Indian Fine Arts Society.
0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ही इज अकंपनीड ऑन द वायलिन बाय सीवी श्रुति, ऑन द मृदंगम बाय ए राधेश एंड ऑन द घटम बाय शरद कौशिक।
0: श्री एनआर प्रशांत अपने कार्यक्रम का आरंभ स्वाति तिरुनाल की रचना से कर रहे हैं नरसिंह मामवा, जो राग आरभी खंड चापताल में निबद्ध हैं।
1: श्री एनआर प्रशांत बिगिन्स हिज कॉन्सर्ट विद द कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल नरसिंह मामवा इन राग आरभी सेट टू खंड चापताल।

0: लीजिए अब आप सुनिए मैसूर वासुदेवाचार्य के कृति देवी रमे मामवाब्दि तनये, जो राग वसंत तथा आदिताल में निबद्ध हैं।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य देवी रमे मामवाब्दि तनये इन द राग वसंता सेट टू आदिताल।

0: श्री एनआर प्रशांत अपने गायन को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार की एक रचना परम पावन रामा, जो राग पूर्वी कल्याणी आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल, श्री एनआर प्रशांत विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार परम पावन रामा इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदिताल।

0: ये था तनि आवर्तनम, जिसे मृदंगम पर ए राधेश, घटम पर शरद कौशिक ने प्रस्तुत किया।
1: That was तनि आवर्तनम played on the मृदंगम by ए राधेश and on the घटम by शरद कौशिक।
0: श्री एन आर प्रशांत अपने गायन का समापन रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार की एक तिल्लाना से कर रहे हैं, जो राग पूर्ण चंद्रिका आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: श्री एन आर प्रशांत concludes his vocal recital with a tillana of Ramanathapuram Srinivasa Iyengar in the rag Purnachandrika set to Aditaal.

0: इसके साथ ही रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: विद दैट वी कंक्लूड द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। He was accompanied on the violin by C.V. Shruti, on the mridangam by A. Radhesh, and on the ghatam by Sharad Kaushik.
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के मैसूर केंद्र पर की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded at the studios of Akashvani Mysuru, and the broadcast came to you from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली।

0: का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023

0: 21-13, 21-17 in the summit clash to secure country's first ever title at the tournament. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 5:51 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।